एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का ये मीरा चैनल है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 18वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 8 जून 2026। इस समय सुबह के 8:56 होने को है। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। स्वामी विवेकानंद। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, FM 102.9 MHz पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी की। और प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थमने की संभावना, पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नामांकन विधानसभा में जमा करा सकेंगे। दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस सीटों पर जीत के आधार पर अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। भाजपा ने वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। नामांकनों की कल जांच की जाएगी। 11 जून को अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे और आवश्यकता होने पर 18 जून को मतदान होगा। गौरतलब है कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए 3 सदस्य निर्वाचित होने हैं, भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा समावेशी विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व और सक्रिय नागरिक भागीदारी द्वारा निर्देशित होना चाहिए। युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए श्री बिरला ने कहा कि शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 7 से 8 सालों में बढ़कर लगभग 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। ये अर्थव्यवस्था वर्तमान में 9 अरब डॉलर की है। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में दृष्टिकोण को लेकर जो बदलाव आया है, वह बड़ी उपलब्धियों में से एक है। उन्होंने

0: कहा कि ये बदलाव छोटे शहरों से आने वाले सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर्स की बढ़ती संख्या में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसमें कहा गया है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है।
1: यावत् चतस्रः प्रदिशश्चक्षुर्यावत् समश्नुते तावत् समैत्विन्द्रियं मयि तद्धस्ति वर्चसम्।
2: चारों दिशाओं के विस्तार व नेत्रों की दृष्टि शक्ति की जागरूकता से युक्त ऐसी समृद्धि हमें प्राप्त हो जहां प्रकृति के साथ पूर्ण संतुलन में रहकर पर्यावरण का संरक्षण हो और समस्त जीवन का सतत कल्याण सुनिश्चित हो।
0: भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद सीमांत जिलों में प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। सरहदी जिले जैसलमेर की जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि सीमा से सटे क्षेत्रों में अवैध निर्माणों का सर्वे कर उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे के दौरान सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई थी।
3: मंत्री महोदय ने, सीएम महोदय ने जो बैठक ली थी उसमें पांचों जिले जो है सीमावर्ती जिले उनके कलेक्टर एसपी के साथ बैठक थी, जिसमें बहुत क्लियर कट ये निर्देश दिए कि 0 से 15 किलोमीटर के दरमियान किसी भी तरीके का इंक्रोचमेंट है कि सबसे पहले तो उसका हमें पूरा सर्वे हमारे पास होना चाहिए, और यदि ऐसा कुछ पाया जाता है कि जो नियम विरुद्ध है तो उस पे कार्रवाई करने के लिए दिवाली पर्व से पहले इसमें निर्देश दिए गए। निर्देश क्लियर है कि एंक्रोचमेंट हटने की कार्रवाई करनी है और उससे पहले एक सर्वे का कहा गया है, तो सर्वे के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को हमने यहां से पाबंद कर दिया गया है कि सबसे पहले सर्वे है, सर्वे स्टेट के साथ शेयर किया जाएगा और जैसे स्टेट से निर्देश मिलेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 मई को होने वाली नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। देश विदेश के 566 शहरों में एक पारी में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक ये परीक्षा ली जाएगी। NTA की जानकारी के अनुसार पंजीकृत उम्मीदवार अब अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राजधानी में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को देखते हुए जयपुर पुलिस और जिला प्रशासन सतर्क मोड पर है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। विभिन्न संगठनों की ओर से संभावित विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ. राजीव पचार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार कमिश्नरेट क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरह की रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, लाठी, डंडा लेकर चलने पर रोक रहेगी। प्रशासन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भड़काऊ, भ्रामक या सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित करने वाली सामग्री के प्रसारण पर भी नजर बनाए हुए है। इस बीच आज जिला प्रशासन ने एहतियातन जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में आज रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थम जाने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज से 11 जून तक तापमान में बढ़ोतरी होने और पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का पूर्वानुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इस बीच पिछले

0: 24 घंटों में प्रदेश के 11 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बीकानेर सहित प्रदेश के कुछ शहरों में हल्की बारिश हुई। अजमेर में भी कई जगह पश्चिमी विक्षोभ के चलते देर रात धूल भरी आंधी के बाद मूसलाधार बारिश हुई।
1: कल दिन भर की गर्मी और उमस के बाद देर रात करीब 2 बजे से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं और तेज मूसलाधार बारिश ने गर्मी से कुछ राहत दी। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि शहर में कई जगह पेड़ और सोलर पैनलों की प्लेटें होर्डिंग उड़ गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। हालांकि आज सूर्योदय के साथ ही उमस फिर बढ़ने लगी है। नीलिमा दहदीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: जयपुर विद्युत वितरण निगम ने बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए भरतपुर में कल विशेष अभियान चलाकर करीब 14 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता के निर्देशन में जिला मुख्यालय सहित उच्चैन, छोकरवाड़ा, वैर, बयाना और रूपवास में ये कार्रवाई की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, शिक्षित, कुशल और प्रौद्योगिकी से संपन्न युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी ताकत। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी की। और प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां आज से थमने की संभावना। पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर।

रेखा भारद्वाज की आवाज में डेढ़ इश्किया फिल्म का गीत भी आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे विशाल भारद्वाज। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक बहुत छोटा सा एक और ब्रेक लिया जाए।

आज अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है। शिल्पा शेट्टी अपनी खूबसूरती, फिटनेस और बेहतरीन अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाली लोकप्रिय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जी को जन्मदिन की विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको फिर से याद दिला दें, रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पर।

अमेरिकन फिल्म का गीत अलका याग्निक सोनू निगम की आवाजों में आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा था और नदीम श्रमण ने धुन बनाई थी।

0: अभी आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम श्रोता अभी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से। श्रोताओं आइए एक बार फिर रुख करते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर।

ये है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर कर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्ते, और आज की फनकार हैं खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा डिंपल कपाड़िया।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम।
2: हाँ, मुझे भी कुछ कहना है। सबसे पहले तो ये कहना है कि आज है डिंपल कपाड़िया का जन्मदिन। उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे।

0: 8 जून सन 1957 को एक गुजराती परिवार में जन्मी डिंपल कापाड़िया को सिर्फ 16 साल की उम्र में फिल्म बॉबी में हीरोइन का टाइटल रोल प्ले करने का मौका मिल गया और इस फिल्म ने डिंपल को रातों रात स्टार बना दिया।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो

जिस तरह रातों रात उन्हें शोहरत मिली, उसी तरह अचानक ही डिंपल ने इस चमक दमक और स्टारडम को नमस्ते कह दिया और उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी करके फिल्मों को अलविदा कह दिया।

राजेश खन्ना के साथ अपने वैवाहिक जीवन में डिंपल को दो बेटियां मिली, ट्विंकल और रिंकी। लेकिन डिंपल का वैवाहिक जीवन ज्यादा लंबा नहीं चल सका।

डिंपल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन थे, लेकिन फिर भी डिंपल को अपनी दोनों बेटियों के साथ एक अच्छे जीवन के लिए कोई ना कोई फैसला तो करना ही था। सो स्वाभिमानी डिंपल ने खुद अपने ही बलबूते पर कुछ करने की ठानी और उनके इस फैसले का स्वागत किया फिल्म इंडस्ट्री ने, निर्देशक रमेश सिप्पी ने और उनकी पहली फिल्म के को स्टार ऋषि कपूर ने। 1985 में उनकी कमबैक फिल्म आई सागर।

इस फिल्म के बाद डिंपल कपाड़िया ने अपनी उपस्थिति को फिल्म इंडस्ट्री में मजबूती से दर्ज किया और हर तरह की फिल्में स्वीकार करने लगी। यानी उस दौर में भी डिंपल

डिंपल को 1973 में बॉबी और 1985 में फिल्म सागर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड और 1991 में फिल्म दृष्टि के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अवार्ड मिला। और फिर 1993 में डिंपल ने साबित कर दिया कि उनके अंदर कितनी सशक्त अभिनेत्री छिपी है। फिल्म आई रुदाली।

डिंपल की उल्लेखनीय फिल्में हैं क्रांतिवीर, गर्दिश, दिल आशना है, अजूबा, अर्जुन, आज की औरत, काश, जख्मी औरत, लावा, राम लखन।

0: डिंपल कपाड़िया ने हीरोइन के रूप में अपनी अदाकारी और अपनी खूबसूरती से जो जादू अपने दर्शकों पर चलाया उससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन 2009 से उन्होंने जो पारी शुरू की चरित्र अभिनेत्री के रूप में, वो भी कम दमदार नहीं है। लक बाई चांस, तुम मिलो तो सही, दबंग, पटियाला हाउस और कॉकटेल। तो ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था डिंपल कपाड़िया पर। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: है, आसन करने के लिए शौच अत्यावश्यक है। इसका अर्थ है कि शरीर एवं मस्तिष्क स्वच्छ होने चाहिए। इसमें वातावरण की स्वच्छता भी शामिल है। स्वच्छ शरीर एवं मन के साथ स्वच्छ एवं हवादार स्थान पर ही योग साधना की जानी चाहिए। आसनों को प्रातः सूर्योदय से और सूर्यास्त के बाद 2 घंटे के भीतर करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि सायंकाल में आसन कर सकते हैं, किंतु सर्वाधिक लाभ के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम है। आसन खाली पेट किए जाने चाहिए। भोजन के उपरांत कम से कम 3 से 4 घंटे और नाश्ते के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटे का अंतराल रखना चाहिए। आसन समतल स्थान पर किए जाने चाहिए। आसपास कोई कुर्सी, टेबल या अन्य कोई ऐसा सामान जिनसे लगने का डर हो, नहीं होना चाहिए। आराम से आसन करने के लिए जमीन पर बिछाने के लिए दरी, योगा मैट, चद्दर बिछा लेना चाहिए। स्नान करने के उपरांत आसन करना आसान होता है, क्योंकि स्नान करने से पूरे शरीर में रक्त प्रवाह एक समान हो जाता है और इससे आसन करने में सुविधा होती है। आसन करने के लिए ढीले, हल्के व आरामदेह वस्त्र धारण करने चाहिए। आसन करने से पहले चश्मा और कलाई घड़ी जैसी बेल्ट आदि उतार देने चाहिए। अच्छे परिणाम के लिए हल्का, सुपाच्य व सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। तैलीय, मसालेदार, धूम्रपान, मदिरापान आदि से बचना चाहिए।
1: योग आसन करने के दौरान और बाद में किस तरह की सावधानी रखने की आवश्यकता रहती है, आइए जानते हैं।
0: योगाभ्यास करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। योगाभ्यास के दौरान जब तक कहा न जाए तब तक नाक से ही सांस लेना चाहिए। शरीर की गति के साथ सांस का तालमेल बनाने का प्रयास करें। आसन धीरे धीरे करना चाहिए एवं चरणबद्ध तरीके से अंतिम मुद्रा तक पहुंचना चाहिए, शांत मन से, बिना झटका दिए हुए। योगाभ्यास के बाद शवासन किया जाना चाहिए। यह थकावट दूर करता है एवं व्यायाम से मिली ऊर्जा को संचित करता है। जिनकी हड्डी टूटी हो, किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर हुआ हो अथवा पेट के अल्सर, क्षय रोग, हर्निया, उच्च रक्तचाप आदि गंभीर रोगों से ग्रसित हो, उन्हें योग विशेषज्ञों व डॉक्टर की सलाह से योगाभ्यास करने चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार शरीर को अनावश्यक कष्ट देने से बचकर इन्हें करना चाहिए, तभी हम इनका भरपूर लाभ ले सकते हैं। कुछ बातें जो योगाभ्यास के पश्चात हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है कि योगाभ्यास करने के तुरंत बाद स्नान ना करें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योगवाणी, भाग संख्या थी 5। विषय था योग आसन से पहले सावधानी बरते। वार्ताकार थी आशा पवार। FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का ये मेरा चैनल है। सवेरे के 10:05 हुए हैं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से। श्रोताओं, लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं काजल फिल्म से आशा भोसले को।

ये गीत आपने सुना, फिल्म का नाम था काजल। आइए अब सुनते हैं राहत फतेह अली खां को इस गीत में। फिल्म का नाम है वीर।

वीर फिल्म का नगमा श्रोताओं हमने आप तक पहुंचाया राहत फतेह अली खां की आवाज में। आइए अब सुनते हैं फिजा फिल्म से आशा भोसले को।

श्रोताओं, फिल्म फिजा का नगमा अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। अगला गीत हमने चुना है आशिकी 2 फिल्म से।

पलक मुछाल और अरिजीत सिंह को अभी आपने सुना फिल्म आशिकी 2 में। आइए कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं भूमि फिल्म से राहत फतेह अली खां को।

राहत फतेह अली खां की आवाज में गाए इस आखिरी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक। फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। सवेरे के 10:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब लेकर हाजिर है कार्यक्रम महिला जगत।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। 1000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0% जीएसटी है, जबकि 1000 से 2499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ दो ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सुप्रभात हमारे सभी श्रोताओं, बहनों और दोस्तों को आपकी रेडियो साथी हिना की ओर से। स्वागत है।

आप सभी का आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत में। तो बताइए सखियों, कैसी चल रही है आप सबकी अभी दैनिक जिंदगी? भाई बच्चों की छुट्टियां शुरू हो चुकी है और इसी के साथ शुरू हुए हैं उनके मौज मस्ती भरे दिन, और आप भी उनकी धमाल चौकड़ी से थोड़ा परेशान भी हो गई होंगी। अगर आप चाहें तो आपकी डेली रूटीन के काम में बच्चों को भी शामिल कर सकती हैं, इससे छुट्टियों का भी सदुपयोग हो जाएगा और आपके काम की भी हेल्प हो जाएगी। बहनों, लड़का हो या लड़की, घरेलू काम हमें सभी को सिखाने चाहिए। घरेलू काम सिखाने के लिए आप सबसे पहले सुबह से शुरुआत करें। सबसे पहले बच्चे उठे तो उन्हें कहें कि वे अपना बिस्तर ठीक करें। उसके बाद नाश्ते में आप उन्हें खुद सैंडविच, दूध या जो भी वो खाना चाहे उन्हें बनाने दें। खाना खाने के बाद उन्हें अपनी प्लेट धोना और किचन काउंटर साफ करना सिखाएं। घर में पेड़ पौधे हो तो उन्हें पानी डालना, खाद डालना बताएं और गार्डनिंग करना भी सिखाएं। इससे उनकी हॉबी भी विकसित होगी। अपनी अलमारी को साफ करना और अपने कपड़ों को तह करके रखना, ये भी आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। बहनों, साथ ही आप बच्चों को हिसाब किताब कैसे रखा जाए ये भी बता सकती हैं। थोड़े बड़े बच्चे हो तो आप उन्हें घर के पास की दुकान से छोटे मोटे सामान खरीदने भेज सकती हैं, ताकि पैसों का लेन देन भी समझ सकें। बच्चों को आप काम का बोझ बनाने के बजाय एक मज़ेदार चैलेंज या गेम की तरह पेश करें। अगर बच्चे कोई भी काम पहली बार करें तो उनका उत्साह बढ़ाएं, उनकी तारीफ करें। हो सकता है शुरुआत में काम थोड़ा बिगाड़ दे, पर उन्हें डांटे नहीं बल्कि प्यार से उन्हें दोबारा सिखाए। घर के ऐसे छोटे छोटे काम कराने से न केवल आपका बोझ कम होगा बल्कि बच्चों में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। ये स्किल्स आगे चलकर उनके बहुत काम आएगी।

बहनों, ज़िंदगी चंद लम्हों के लिए होती है, तो उसे हमें हंसी खुशी के साथ बितानी चाहिए। क्यों हम इसे टेंशन और डिप्रेशन में गुजारें? तनाव भरी जिंदगी में हम माइग्रेन जैसी समस्या को खुद ही पाल लेते हैं। सखियों, माइग्रेन यानी तेज सरदर्द होता है। ये इतना असहनीय होता है कि हमारी दिनचर्या को पूरी तरह प्रभावित कर सकता है। अगर देखा जाए तो महिलाओं में सरदर्द और माइग्रेन की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि महिलाओं में हार्मोन्स का उतार चढ़ाव रहता है और आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में महिलाओं के साथ युवाओं में भी माइग्रेन की समस्या ज़्यादा होने लगी है। इसकी वजह खराब खानपान, तनाव, हार्मोनल बदलाव है और कम नींद लेना भी है। बहनों, माइग्रेन को आप हल्के में ना लें। ज़्यादा होने पर आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। बात बात पर आप पेन किलर ना लें, इसके भी दुष्प्रभाव होते हैं। माइग्रेन को रोकने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना होगा। सबसे पहले बहनों, आपको भूखा नहीं रहना है। हर थोड़ी थोड़े अंतराल में खाते रहना है, जैसे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सलाद, उनको आप अपने भोजन में शामिल करें। चाय, कॉफ़ी या प्रोसेस्ड फूड को आप सीमित करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम से भरपूर डाइट लें। अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, इसके लिए आप दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी जरूर पिए। रोजाना आप 20 से 30 मिनट योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इससे तनाव कम होता है और हार्मोन संतुलित रहते हैं। मोबाइल, लैपटॉप का उपयोग ज़रूरत होने पर ही करें। ज़्यादा इस्तेमाल से ये माइग्रेन को और बढ़ा सकते हैं, इसलिए आप अपने स्क्रीन टाइम में कमी करें। जब दर्द हल्का हो तो किसी शांत और अंधेरे कमरे में लेट जाएं। माइग्रेन में आप अदरक वाली चाय बनाकर पिए, ये मतली को कम करने में मदद करते हैं। बहनों, इसके बाद भी आपको आराम नहीं मिले तो आप तुरंत डॉक्टर से मिले। लापरवाही नहीं बरते, जान है तो जहान है।

बहनों, हम बात कर रहे थे कि तनाव लेने से हम माइग्रेन और न जाने कितनी बीमारियों को पाल लेते हैं। धीरे धीरे तनाव हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। माइग्रेन के अलावा बहनों, ब्रेन ट्यूमर के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं और समय पर सही जानकारी न होने के कारण अक्सर लोग इसके लक्षणों को सामान्य सिरदर्द समझ कर नज़रअंदाज कर देते हैं। समय रहते इसके लक्षणों को पहचानने के लिए प्रेरित करना और मरीजों व उनके परिवारों को मानसिक व सामाजिक सहायता देने के लिए हर साल 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत साल 2000 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा की गई थी। तब से लेकर आज तक यह एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। अगर आपको सुबह के समय तेज सिरदर्द हो, बिना वजह उल्टी हो, बोलने में या चलने में परेशानी हो, या दस्त कमजोर हो, या अचानक चिड़चिड़ापन आए, तो आप बिना देरी किए डॉक्टर को दिखाएं। शुरुआती चरणों में बीमारी का पता चलने से इलाज काफी आसान हो जाता है और मरीज की जान बचाने में भी मदद मिल जाती है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के साथ ही बहनों, आज विश्व महासागर दिवस भी है। हर साल 8 जून को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। यूएन द्वारा आधिकारिक तौर पर 2008 में इस दिवस को मान्यता दी गई थी। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य महासागरों के

महत्व, उनसे जुड़ी पारिस्थितिक तंत्र और समुद्र के संरक्षण के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। बहनों, महासागर को सुरक्षित और संरक्षित रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों, हम महिलाओं की जिंदगी घर के कामकाज में बच्चों को संभालने में कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता, और ऐसे में हम खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। कब उम्र ढल जाती है और कब चेहरे पर झुर्रियां जाइयां आने लग जाती है हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन बहनों, अगर हम कुछ मिनट अपने लिए निकाल ले तो काफी हद तक

अपनी बढ़ती उम्र को कुछ तो कम कर ही सकते हैं। जैसे अगर आप घर से बाहर निकले तो अच्छी क्वालिटी की सनस्क्रीन जरूर लगाएं। यह धूप की हानिकारक किरणों और टैनिंग से बचाता है। कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी स्किन किस टाइप की है, उसी के अनुरूप आप अपने प्रोडक्ट्स को चुनें। दिन में कम से कम 3 से 4 बार चेहरा धोए, अपनी स्किन के अनुसार मॉइस्चराइजर लगाए और 4 से 5 मिनट मसाज करें। इससे स्किन टाइट होगी और नमी भी बनी रहेगी। बहनों, स्किन केयर में बहुत से घरेलू नुस्खे भी हैं जिन्हें आप रोज आजमा सकती है, जैसे दही और बेसन। इसमें थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर ले और फिर 5 से 10 मिनट फेस पे लगाकर चेहरा धो ले। इससे चेहरे का रंग साफ होगा और दाग धब्बे भी दूर होंगे। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक भी काफी अच्छा रहता है। थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर फेस पे लगा ले और फिर सादे पानी से चेहरा धो ले। इस नुस्खे से स्किन में कसावट आती है और दाग धब्बे भी दूर होते हैं। बहनों, बहुत सारे ऐसे कई प्राकृतिक उपाय हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके अपनी त्वचा को हेल्दी बना सकती है। इससे आपकी त्वचा को न तो नुकसान होगा और न ही महंगे प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत पड़ेगी। सखियों, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अच्छी स्किन पाने के लिए आपको तनाव से दूर रहना है, अच्छी नींद लेनी है और पर्याप्त पानी भी पीना जरूरी है। योग और एक्सरसाइज को आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। फिर देखिएगा बहनों, आपको कुछ ही महीनों में अपनी त्वचा में बदलाव जरूर आएगा।

महिला जगत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। दिन के 11 बज चुके हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। कभी कभी इस एल्बम का गाना अनिरुद्ध झा की आवाज, इन्हीं का लिखा हुआ गाना, रिकी का संगीत।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में यह गजल। शायर हैं राजेश रेड्डी, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम खामोशी।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाजें इन्हीं का संगीत। शब्दकार आर एस हरियाणवी रतन। एल्बम का नाम तस्वीर।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। यूफोरिया की आवाज, पलाश और दीक्षांत का लिखा हुआ गाना, संगीत पलाश और डीजे का,

आवाज, गीत और संगीत अजय पोहनकर का एल्बम पिया बावरी।

आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति। कमाल खान की आवाज, संगीत साजिद वाजिद का एल्बम कल रात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की

0: उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशेष अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। इस जांच से म्यांमार से मादक पदार्थ की तस्करी और आपूर्ति करने वाले संगठित गिरोह का पता चला है। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। धड़कन फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाजों में, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।
4: दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे।
3: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है, बहुत सारी शुभकामनाएं।

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज़,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के बाकी गाने हम आपको सुनवाएंगे एक अंतराल के बाद।

यादों की महफिल, ये कार्यक्रम विविध भारती से आप सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इस फिल्म का गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में रानी मलिक का लिखा हुआ गाना। हमने आपको बताया कि आज अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, और इस कार्यक्रम के शुरुआती कुछ गाने उन्हीं की फिल्मों से लिए गए हैं।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया का भी जन्मदिन है, तो हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। उन्हीं की फिल्मों के कुछ गाने अब आपको सुनवाएंगे। ये है बॉबी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, विठल भाई पटेल का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

अब आपको सुनवाते हैं लेकिन फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के बोल, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत है।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं। बंटवारा फिल्म का ये गाना अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। हसन कमाल का लिखा हुआ गाना, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम श्रोता अभी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। दोपहर का 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नामांकन विधानसभा में जमा करा सकेंगे। दोनों प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के घोषित प्रत्याशियों ने अपने नाम पत्र दाखिल कर दिए हैं। भाजपा के उम्मीदवार सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ने आज अपने नामांकन प्रस्तुत किए। नामजदगी का पर्चा दाखिल करने के बाद दोनों नेता पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां पार्टी अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उधर कांग्रेस की ओर से नीरज डांगी पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। नामांकनों की कल जांच की जाएगी। 11 जून को अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे और आवश्यकता होने पर 18 जून को मतदान होगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नकली बीज प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार आरोपी बीज निगम के निदेशक का रिश्तेदार बताया जा रहा है। एसीबी ने बताया कि आरोपियों ने एक बीज कंपनी के जब्त बीजों को गुजरात भेजे जाने की एवज में कंपनी से 1,20,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सूचना मिलने पर एसीबी की टीम ने आरोपी को बीकानेर के लूणकरणसर से बस से उतार गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 85,00,000 रुपए की अवैध धनराशि बरामद की गई। एसीबी ने बीज निगम के निदेशक के घर छापा मारा, जहां से 1,50,000,000 रुपए की राशि भी जब्त की गई। प्रदेश भर में पीने के पानी की उपलब्धता के लिए चलाए जा रहे अभियानों के तहत 5 मई से 6 जून तक 19,000 से अधिक पेयजल समस्याओं का समाधान किया गया। इस दौरान हैंडपंप मरम्मत, पाइपलाइन लीकेज, कम दबाव के साथ पानी और अनिश्चित जलापूर्ति की शिकायतों का समाधान किया गया। इसके अलावा करीब 7,500 सुधारात्मक कार्यों के जरिए पेयजल व्यवस्था को प्रभावी बनाया गया। इस दौरान 6 जून को एक दिन में 3,000 से अधिक कार्य संपन्न करवा के लोगों को राहत दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पेयजल व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए विशेष अभियान 30 जून तक लगातार जारी रहेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राजधानी जयपुर में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज शहर के जगतपुरा और मालवीय नगर क्षेत्र में

कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन सख्त कदम उठाए हैं। जेडीए दस्ते के साथ भारी संख्या में पुलिस बल और आरएसी का जाप्ता शामिल रहा। विभिन्न संगठनों की ओर से संभावित विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। कमिश्नरेट क्षेत्र में आज रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई हैं। प्रदेश में हाल ही में आए आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त हुए विद्युत तंत्र को सुचारू करने के लिए सभी विद्युत वितरण निगम मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉ. भंवर लाल डेलू ने बताया कि सरहदी और पश्चिमी जिलों में बिजली आपूर्ति की समीक्षा के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस बीच डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों ने जैसलमेर जिले के फतेहगढ़, चांधन और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की। राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद लक्ष्य में बढ़ोतरी किए जाने से किसानों को राहत मिली है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के जिलों में किसान सरकार के इस फैसले से उत्साहित है और मंडियों में गेहूं बेचान के लिए पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर राम रतन सौकरिया ने बताया कि जिले का कुल गेहूं खरीद लक्ष्य बढ़कर 8.75 लाख मीट्रिक टन हो गया है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी से 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो अपनों के बिना अधूरी लगती है।
0: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
0: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
0: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
0: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
0: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
0: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
0: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाए जा सकते हैं?
2: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
0: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
2: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
2: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप

रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना।
1: क्यों भला?
0: क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाव बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
3: मंगला
4: हाँ?
3: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
4: ठीक है।
3: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
4: हाँ हाँ।
3: उठाकर मुझे दे।
4: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
3: हाँ।
4: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
1: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
3: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
4: अरे वाह।
3: और ये इसकी पूंछ।

0: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
1: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
0: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
1: ओ, अब बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
0: ठीक है
1: अब बना।
2: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
0: भाई अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
1: तू चिंता मत कर। अच्छा चल हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
0: ठीक है
1: चल चल चल चल चल हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
0: ठीक है
1: चल चल
3: चल। कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए, और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोचू ने, देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
2: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहाँ है कोचू और मंगला है?
6: मालिक मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था, आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोच्चू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हां, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टातिरिपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।

0: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
1: आप निश्चिंत हो जाएं, समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।
2: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है, इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। यह हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
3: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
4: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
4: जी।
2: रवि वर्मा यही करने लगे, तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेनसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेनसन,
5: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
5: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा, मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
3: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
5: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
3: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम

0: में दो हाथी तक दिए।
1: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग
5: NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम श्रोता अभी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: FM बैंड 102.9 MHz पर आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का ये मेरा चैनल है। श्रोताओं आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर।
3: कारण महासागर संकट का सामना कर रहे हैं, इसलिए उनका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें समुद्रों को स्वच्छ रखने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लेना चाहिए। जी हाँ, ये सबसे जरूरी बात है कि ऐसी चीजों का उपयोग हम कम करें या ना करें जिनसे ये जो जलाशय हैं हमारे ये प्रदूषित हो रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप घूमने के लिए जाएं तो प्लास्टिक का बहुत सारा कचरा और गंदगी वहाँ पर फेंक करके ना जाएं, क्योंकि दूसरे भी तो सैलानी वहाँ आने वाले हैं ना देखने के लिए, और वो जब देखेंगे इस गंदगी को तो उन्हें फिर कहाँ आनंद आएगा। और वैसे भी इन चीज़ों से, प्लास्टिक से या गंदगी से, वो जलाशय जब गंदे होते हैं, प्रदूषित होते हैं, तो जब हम दोबारा जाएंगे तो क्या देखेंगे, या हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो क्या देख पाएगी, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर ये गंदे हो गए तो ये हमारे दिल को बहला नहीं पाएंगे। दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदायूनी की बोल, संगीत नौशाद का।

दिल दिया दर्द लिया इस फिल्म का गाना दिलीप कुमार पर यह गाना फिल्माया गया है। एक हमारे साथी की बात है कि समुद्र, सागर या फिर महासागर मनुष्य की जीवन शैली को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। ये मात्र विशाल जलराशि का स्रोत नहीं है बल्कि असीम धैर्य, स्थिरता और जीवन चक्र को प्रतीकात्मक रूप से प्रेरित करते हैं। सागर की लहरें चाहे कितनी भी उग्र हो, सागर की गहराई उतनी ही शांत और गंभीर होती है, जो एक संदेश देती है। मनुष्य के जीवन में कितनी भी उथल पुथल हो, जीवन का उतार चढ़ाव में संयम और धैर्य रखें, मन को विचलित न होने दें। समुद्र के सामने मनुष्य का अस्तित्व उसकी एक बूंद के बराबर है। समुद्र की विशालता हमें अहंकार मुक्त होकर प्रकृति के प्रति विनम्र रहने की प्रेरणा देती है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि नीले जल में छिपे हैं कितने अनकहे राज, लहरों की जुबां पर बस प्रकृति का साज। शाम ढले जब सूरज समंदर में खो जाता है, हर कतरा तब प्रेम का दीप जलाता है। सीप की खामोशी में मोती का जन्म होता है, दर्द सहकर भी जीवन अनुपम कर्म होता है। मन के वेग को थाम लेती है ये लहरें, जैसे माँ की गोद में सो जाए सारी दहशतें। समुद्र कहता है बहते रहो, ठहरना मत, सपनों की राह में कभी बिखरना मत। प्रकृति का अटूट समर्पण यही कहता है, जो प्रेम में डूबा हो वही मोती बन पाता है। धन्यवाद आपका। और अब प्यार का सागर, इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे। आशा भोसले और मुकेश की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, रवि का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है आप बताइए हमें।

राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गाना अभी हमने आपको सुनवाया। एक साथी की ये बात है कि जब हम सागर के किनारे अपने पैर डालकर बैठे हैं तो वहां से हटने का दिल नहीं कर रहा था। दूर दूर तक पानी ही पानी, आती जाती लहर को हम देख रहे थे, मानो वो हमसे धीरे धीरे कुछ बोल रही हो, कुछ बताना चाह रही हो। हम सुनना चाहते थे उनकी बातें, कुछ सुनी। हर जाती लहर मानो हमारे सारे दुख दर्द अपने साथ दूर, बहुत दूर ले जा रही हो, और हर आती लहर हमें अनगिनत खुशियां दे रही हो। बस फिर क्या, हमारी नटखट सी परी ने कहा, नानी उठो, हम दोनों इसमें पत्थर फेंकेंगे, और हमारी बातें अधूरी रह गई। हम बहुत सारी बातें करना चाहते थे समुद्र से। एक साथी लिख रहे हैं कि सागर की आती जाती लहरें हमें ये संदेश देती है कि जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी खुशियों की लहर आती, कभी चुनौतियों की। लेकिन जैसे लहरें बार बार किनारे पर पहुंचने का प्रयास करती है, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में हिम्मत और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हार कर लौटना नहीं, बल्कि फिर से उठकर आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे सुंदर सीख है। चलिए अगला गाना अब हम आपको सुनवाते हैं, तकदीर फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज और साथ में कुछ और भी आवाजें हैं, सुलक्षणा पंडित, मीना पत्की और इला देसाई की इसमें आवाजें हैं, और आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है ये, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। सुनिए ये गीत कि जब हमारे घर के कोई व्यक्ति सात समंदर पार जाते हैं तो हम क्या उम्मीद रखते हैं, यही ना कि चाहे जो भी हो, बस आप सुरक्षित घर लौट आइए, घर लौट आइए।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सागर किनारे जो शाम होती है वो प्रकृति में सबसे मनमोहक और सुरमई सा रूप लेते हुए मनुष्य में एक कौतूहल उत्पन्न करती है, प्रतीत होती है। इस समय सागर में उठने वाली लहरें मानवीय भावनाओं जैसे प्रेम, विरह और शांति को बहुत ही मनोयोग से बयां करती है। ढलती हुई शाम को सूर्य जब लालिमा बिखेरता है और सागर में उठती लहरों से किरणें आर पार गुजरती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने सागर का 16 श्रृंगार कर दिया है। साथ ही नीला आसमां भी लालिमा बिखेरता है जो एक मनमोहक दृश्य बना देता है। एक साथी लिखने की महासागर केवल जल का विशाल भंडार नहीं है बल्कि प्रकृति की अनंत भावनाओं का प्रतीक भी है। इसकी अथाह गहराइयां हमें जीवन के रहस्यों का एहसास कराती है जबकि इसकी लहरें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। महासागर प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो अपनी सुंदरता, शक्ति और शांति से हर हृदय को छू लेता है। धन्यवाद आपका। और अब मजेदार फिल्म का गाना एसपी बालसुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

एक साथी लिखते हैं कि कुछ बातें गीतों की तरह होती है, जितना सुनो उतनी ही अच्छी लगती है, और कुछ रिश्ते लहरों की तरह जो दूर रहकर भी मन के किनारों को छूते रहते हैं। कुछ गीत भी ऐसे होते हैं जो मन के किनारों को छूते हैं। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना संकल्प फिल्म का गाना, कैफी आजमी के बोल, संगीत खय्याम का, आवाज किसकी है बताइए हमें।

0: जी हाँ, इन सागरों की गहराई को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम श्रोता अभी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। दोपहर के 2 बज चुके हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले अंग्रेजी में।

0: Bengal set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana today, marking full coverage of the scheme in the country. Delhi High Court issues notices to the Centre and CBSE on alleged discrepancies in board's on-screen marking system. Israel and Iran trade fresh missiles attacks on each other, escalating West Asia conflict. Akashwani celebrates completion of 90 years of trust and public service. And in cricket, India enforce follow-on after bundling out Afghanistan for 152 in their first innings in the one-off test at New Chandigarh. With that, we end the midday news.
1: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath main Sir Firozi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
3: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
4: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
3: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की

0: स्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
1: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में सीबीएसई द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच आने पर चर्चा होगी।
3: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से

0: कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
1: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
3: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
4: Good evening, this is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
1: Aman Yadav ke saath Saklayan Akhtar, Akashvani Samachar, Delhi.
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
5: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
6: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य

0: समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का ये मेरा चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

आज और कल फिल्म का ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और संगीत रवि का। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब अगला जो गीत आपको सुनवा रहे हैं ये बहुरानी फिल्म का गाना लता मंगेशकर ने गाया है, साहिल लुधियानवी ने लिखा है और संगीत तैयार किया श्री रामचंद्र ने।

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: रामकुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना लता मंगेशकर ने गाया है। फिल्म का नाम अकेली मत जइयो।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं ये बंदिनी फिल्म का गाना, आवाज लता मंगेशकर की, गुलजार के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

अब आपको जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं ये सुमन कल्याणपुर की आवाज में है, बीडी मिश्रा ने लिखा है, एसएन त्रिपाठी का संगीत है और फिल्म का नाम बीन का जादू।

आइए अब सुना जाए ब्लफ मास्टर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: रामकुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना बेगाना फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सपन जगमोहन का संगीत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, कैप्टन शेरू। इस फिल्म का ये गाना सुमन कल्याणपुर ने गाया है, नक्श लायलपुरी के बोल और संगीत है एस मोहिंदर का। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मेरा यानी मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: बस वही जैसे आपने पूछा क्या हाल है, तो हमेशा की तरह हम कहते हैं बहुत अच्छे हैं
1: और उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे। ये बताइए जरा कि जब आप कहीं समंदर के किनारे जाती हैं तो लहरों में खूब मौज मस्ती करती होंगी निश्चित रूप से।
2: बिल्कुल।
1: फिर वहां जाती हैं तो क्या छोड़कर आती हैं और क्या लेकर आती हैं?
2: देखिए हम जो हैं उस बात का ध्यान रखते हैं कि पहली बात तो हम अपनी सावधानी का
0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मेरा यानी मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: बस वही जैसे आपने पूछा क्या हाल है, तो हमेशा की तरह हम कहते हैं बहुत अच्छे हैं
1: और उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे। ये बताइए जरा कि जब आप कहीं समंदर के किनारे जाती हैं तो लहरों में खूब मौज मस्ती करती होंगी निश्चित रूप से।
2: बिल्कुल।
1: फिर वहां जाती हैं तो क्या छोड़ आती हैं और क्या लेकर आती हैं?
2: देखिए हम जो हैं उस बात का ध्यान रखते हैं कि पहली बात तो हम अपनी सावधानी का ज्यादा ध्यान रखते हैं। छोड़ने की बात से पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितना लहरों के बीच में जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए, तो उस हिसाब से हम जाते हैं। और रेत जो होती है ममता जी, वो अक्सर आप जहां पैर रखेंगे दूसरा पैर आगे बढ़ाएंगे तो वहां खिसकती है रेत। तो अगर आप भूल से भी किसी पत्थर पर खड़े हो जाते हैं और जब आप पैर नीचे रखेंगे तो आपका पैर बहुत अंदर तक जाएगा, तो ये सावधानी हमें
1: बिल्कुल।

0: नियमावली पढ़ ले उस जगह के बारे में, उस समंदर के बारे में। और एक बात और है जो आप भी जानती होंगी कि वहां पर ढेर सारा कचरा छोड़कर ना आए, बताइए आप क्या कहेंगे।
1: क्योंकि हम देखते हैं कि वहां पर लोग घर से या तो खाने के लिए कुछ चीजें ले जाते हैं या वहां से परचेज करके खाते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगी रहती है तो उसमें जो पॉलिथीन चीज जैसी चीज होती है या आपने दोने में कोई चीज खाई है तो वो सब वहीं पे छोड़ के चले आते हैं, तो वो वापस समुद्र में जाता है जो उसको दूषित कर देता है पानी
0: और आपको वापस देता भी है,
1: वापस पलट के वो लहरों के थ्रू वापस आता भी है।
0: तो ये कहने का मतलब है कि आप मुझे जो दोगे मैं वही वापस करूंगा, मतलब समंदर ये एक तरह से मूक भाषा में ये कहता है,
1: संदेश देता।
0: तो ये मत करिए, जब आपको मालूम है कि आपने पैर डाला पानी में और एक पॉलीथिन फंस गया और एक कचरा कागज का टुकड़ा या कुछ भी आ गया तो बहुत बुरा सा लगता है ना, आपको डर भी लगता है कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं आ गया, मछली तो नहीं आ गई।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि जैसा हम करेंगे जैसा वो उसके साथ करेंगे वो भी वापस जवाब देता है, तो हमें इन सब की खूबसूरती को अगर देखने जाना है तो आप देखिए, खाइए, पीजिए, लेकिन आप उस कचरे को या तो आप अपने साथ किसी पॉलिथीन में, पैकेट में, झोले में रख के ले आइए अपने घर में, आसपास जो आपका कचरा दान उसमें डालिए, या वहां पर भी रहते हैं कचरे के डिब्बे तो आप उसमें डालिए, वहां समुद्र के वातावरण को, उसके किनारे को, उसकी सुंदरता को नष्ट नहीं करें।
0: और बारिश के मौसम में समंदर के हर बीच पर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मुंबई में भी खासतौर से एक बीच है, अक्सा बीच जो कहा जाता है, वो थोड़ा सा गहरा है, तो वहां पर हर साल बारिश में दुर्घटनाएं घटित होती हैं और ये कहा जाता है, और उस वहां पर जो युवाओं का झुंड है अक्सर जाता है
1: जी,
0: और हर साल कुछ न कुछ हादसे होते हैं। तो प्लीज अपनी जिंदगी का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें कि कितनी अनमोल है जिंदगी। और आज विश्व सागर दिवस पर ये जो बातें हम चर्चा कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हमारे श्रोताओं के कुछ अनुभव होंगे, खट्टे मीठे अनुभव साझा करें, बजाय ये लिखने की हमने बहुत सारी बातें तो साझा कर दी है और कोई एक तरह की टिप्पणी हमारे श्रोता लिख रहे हैं, तो उसकी बजाय अपने अनुभव साझा करें, हम आप तक पहुंचाएंगे। अब क्या करें, हम
1: अब गीत सुना दीजिए।
0: चलिए सुनते हैं गाना।

0: तो ममता जी हम पहले विषय बता देते हैं कि हम बात करेंगे व्यंजन में मथुरा की दाल और आलू की कचौड़ी जो वहाँ प्रसिद्ध है उसके बारे में, और एक विषय हमारा है तपाक से बोलने की आदत। तो हमारे साथी इस पर लिखकर भेज चुके हैं और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं विविध भारती के पेज से वो भी लिखकर भेजे। और धरती की धड़कन है महासागर, विश्व महासागर दिवस पर
1: वो हमने बताई
0: दिया है। और कथा सुधा में हम आभूषण का भाग दो सुनेंगे।
1: और तपाक से बोलने की जो आदत है, कई बार लोग तपाक से बोलने के चक्कर में गलत बोल जाते हैं, तो जरा सोच समझ के बोले क्योंकि कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती, तो जब बोले तो सोच समझ के। फिलहाल ये गाना सुने।

0: आइए सुनते हैं कथा सुधा कहानी आभूषण इसका भाग दो।
1: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना,
3: शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे, पर यूरोप से लौटने पर उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से। या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। वो पहले कलकत्ते गया। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। विमल उन गिनती के 2-4 मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता

0: और महाजन हो गया। कुंवर सुरेश सिंह की नववधू मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरू स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: आइए सुनते हैं इस कहानी की दूसरी कड़ी।
0: मंगला को केवल अपनी रूपहीनता का ही रोना न था, शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि ये उसकी आशा लताओं पर पड़ने वाला तुषार था। मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी। चाहे वो कितना ही वेश बदल कर आवे, सुरेश इसी मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे, उसे बलात् निकाल देना चाहते थे, किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। वो एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी, जिसने एक ही धावे में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है, पर उसके मन का यह खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। वो मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी। वो अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा, यदि वो सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष, पर उनका यह सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था। वो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के बदलते हुए भावों को देखते थे, पर एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते हुए देखकर भी रोकने का कोई उपाय ना कर सकते थे। परिणाम क्या होगा यह सोचने का उन्हें साहस ही ना होता था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया।

0: एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी, पंखा झलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचे में भी न जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी, जो जहां था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे, जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी चार कदम टहलते, फिर हांप कर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई दी।
1: पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
2: क्या बात है।

0: की बदली,
1: चौंके। फिर क्रोध आया, मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा।
2: ये क्या बेवक्त की शहनाई है, यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूची है।
3: रूप सुहाना लगता,
2: मंगला ने बुलाया होगा और क्या। लोग नाहक ही कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है, उनके जीवन का आधार वही भोजन, निद्रा, राग रंग, आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन चुका, ये गीत कभी बंद होगा भी या नहीं। सब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं।
1: अंत को न रहा गया, जनान खाने में आकर बोले,
2: ये तुम लोगों ने क्या कांव-कांव मचा रखी है, हाँ? ये गाने बजाने का कौन सा समय है, बाहर बैठना मुश्किल हो गया।
1: सन्नाटा छा गया, जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिए और सिमट गईं। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई, पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली,
4: अरे क्या बात है, इतना क्यों बिगड़ रहे हो आखिर।
2: मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता।
4: तुम्हें सुनाता ही कौन है, क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है।
2: फजूल की मचमच,
4: तुमसे मतलब।
2: मैं अपने घर में ये कोलाहल न मचने दूंगा।
4: तो मेरा घर कहीं और है।
2: इन सबसे कह दो फिर किसी वक्त आए।
4: हाँ हाँ, इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता है ना।
2: ओहो हाँ हाँ हाँ, इसीलिए।
4: तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे। तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसी ठट्ठे की आवाज अंदर सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दखल अंदाजी क्यों करते हो भला।
2: इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूँ।
4: स्वामी हूँ, स्वामी हूँ, तुम बाहर के स्वामी हो, यहाँ इस घर में मेरा अधिकार है।
2: क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो, मुझे चिढ़ाने से क्या मिलेगा तुम्हें, हाँ?
4: अच्छी बात है, जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अब तक भ्रम में थी, आज तुमने वो भ्रम मेरा मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी था ही नहीं। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता।
2: अरे सुनो, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो, मेरा ये मतलब नहीं था। कुछ का कुछ समझ गई तुम तो।
4: मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं।
1: सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही ये और भी जली कटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले आए।

प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंसू पोंछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहु विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। ये मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है। जहां चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। यूं बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का अर्थ यह है कि मैं इसका कोई नहीं, फिर मैं इसे रोकने वाला कौन। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई, उनकी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं ताका।

0: पांव पैदल चली जा रही थी। एक बड़े तालुकेदार की औरत के लिए ये मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थीं। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: मंगला बहन, जरा अंदर आकर दम ले लो। ये क्या हुआ?
2: शीतला बहन,

0: ना कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती ना।
1: अरे तो क्या अब यहां तक नौबत आ गई है?
0: चाहती तो अब भी वहीं पड़ी रहती, उसी घर में जीवन कट जाता, पर जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं।
1: तुम्हारा मैका कहां है?
0: मैके कौन मुंह लेकर जाऊंगी मैं भला?
1: अरे तो तब कहां जाओगी?
0: ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो, शायद पहले जन्म की पिशाचिनियां ही बदसूरत औरतें होती हैं। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
2: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा,
1: इसे क्या खिलाऊंगी, आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं।
2: मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही,
1: मैं कैसी अभागिन हूं जिस प्रेम को ना पाकर ये बेचारी जीवन को त्याग रही है, उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी रख सके? इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हाँ, ना जाने वो कहां है, किस दशा में है।
2: अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।

मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण की दूसरी कड़ी आपने सुनी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली
1: और हम बात करने वाले हैं धरती की धड़कन है महासागर, क्योंकि आज है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है और महासागर वातावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य की ऊष्मा को अपने भीतर समाहित कर तापमान को नियंत्रित करते हैं। यदि महासागर ना हो तो धरती पर कहीं अत्यधिक गर्मी और कहीं असहनीय ठंड हो जाती है। वर्षा चक्र भी महासागरों के कारण ही संभव है और समुद्र से उठती जल वाष्प बादलों का रूप लेकर खेतों, जंगलों और नदियों को जीवन देती है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। महासागर जैव विविधता का अनमोल खजाना है। लाखों तरह के जीव जंतु वनस्पतियां समुद्र में निवास करती हैं और छोटी मछलियों से लेकर विशाल व्हेल तक हर जीव समुद्री जीवन की अद्भुत दुनिया का हिस्सा है। करोड़ों लोगों की आजीविका भी महासागरों पर निर्भर होती है। कितने सारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं, पूरी आजीविका उन पर टिकी होती है। आप तो यही मुंबई जहां विविध भारती का स्टूडियो स्थित है, यहां के तमाम बीच पर जाइए तो मछलियां सूखती रहती हैं, तो ये उनकी आजीविका का स्रोत है। और जरा उनके बारे में सोचिए कि जो मछुआरे कई कई दिन तक मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी सी नैया लेकर चले जाते हैं बहुत दूर तक, और कई बार तूफान आ जाता है तो उन तूफानों से लड़ते हैं। तो जब हम समंदर में सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं तो ये इन बातों का भी ख्याल रखें कि हम जब सागर हमें इतना कुछ दे रहा है तो हम भी सागर के लिए कुछ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, कि उसकी सुरक्षा साफ सफाई का ख्याल रख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और मछली तो वहां पर मिलती ही मछली पालन भी किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बहुत ही बहुमूल्य रत्न भी समुद्र से महासागरों से पाए जाते हैं।
0: तेल मिलता है जिससे जो बहुत बड़ा स्रोत है, हम सब
1: ईंधन का साधन है, और व्यापार और पर्यटन और परिवहन जैसे अनेक कार्य समुद्रों के कारण ही चलते हैं। और इसका जो इतना महत्व होने के बावजूद भी ममता जी आज महासागर संकट में है। प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यदि हम समय रहते नहीं जाग गए तो इसका प्रभाव पूरी मानव सभ्यता पर नजर आएगा।
0: बिल्कुल। हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि समंदर, नदियों और तालाब में गजब का आकर्षण छिपा है। ये सब प्रकृति के महत्वपूर्ण उपादान है। रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, समुद्र में ही नहीं नदियों, तालाब और जहां जहां पानी है वहां उठती है फेनिल हिलोरें और मन की आंतरिक सतह में एक मीठा झरना गुनगुनाने लगता है। क्या बात है, रात चांदनी की जब बात कही तो चांदनी रात में समंदर के किनारे बैठना, समंदर के किनारे सैर करना बहुत सुहाता है। हालांकि रात में समंदर का शोर डराता भी है मन को, लेकिन सुखद भी लगता है।
1: ऐसा लगता है कि वो जब उसके किनारे आप टहल रहे होंगे तो लगेगा लहरें आपको पीछे से घेर लेती है, ऐसा लगता है वो दृश्य।
0: इसी तरह की बात हमारी एक और सखी लिख रही है कि आसमानी रंग को अपने तन पर समेटे हुए सुंदरता को बिखेरता हुआ नजर आता है जो मनमोहिनी का काम करता है। उसकी अपार सुंदरता बरबस ये आकर्षित करती है। दूध सी आती शुभ्र उर्मी जब पैरों से टकराती है

0: तो ऐसा लगता है किसी ने पांव में पायल बांध दी और नूपुर बज उठते हैं, उससे निकलता संगीत मन को गहराई तक छू जाता है। क्या बात है भाई, आज तो हमारी बड़ी ललित भाषा में ये बातें लिख रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शुक्रिया अदा करते हैं
1: जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि महासागर धरती की धड़कन की तरह है जो पूरी पृथ्वी के जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। विशाल और गहरे महासागर न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि जलवायु को नियंत्रित करने, वर्षा लाने और असंख्य जीवों को जीवन देने का कार्य भी करते हैं। समुद्र की लहरों की मधुर आवाज मन को शांति देती है और हमें प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास कराती है। धरती पर जीवन का आधार माने जाने वाले महासागर मानव, पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए अनमोल धरोहर है, इसलिए हमें महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी महिमा के महत्व को समझ सके।
0: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और मंजरी जी, आपने समुद्र एक संदेश भी देता है, उस संदेश को कभी सुना है? जब हम बहुत ध्यान से समंदर की लहरों को उठती गिरते देखें तो एक संदेश होता है। हम सब ये महसूस करते हैं कि एक बार उठना और गिरना ये इंसान की भी फितरत होती है, तो जब बहुत ऊंचाई पर जाएं तो कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं, हमारे सखा है ये, इन्होंने लिखा है कि समुद्र की धड़कनों से उसकी अनंत गहराई मनुष्य को जीना सिखाती है। इतनी ऊंची लहरें मन को सुकून तो देती हैं, ये कहती हैं कि जरूरत से ज्यादा, सीमा से ज्यादा ऊंचा उठना भी एक दिन वापस आना बताती है। बहुत सी चीजें हमें देती हैं, लेकिन हम सब जाएं तो वहां स्वच्छता, साफ सफाई जरूर रखें। ये एक बात है कि ये कहा जाता है कि जब हम बहुत ऊंचाई तक ये उड़ते हैं लोग, मतलब ऊंचे ख्वाब देखते हैं और ये अपनी जड़ों को, जमीन को भूल जाते हैं, तब ये बात हम कहते हैं कि ज्यादा मत उड़ो, जब गिरोगे तो चोट ज्यादा लगेगी, है ना।
1: जब आप तो ये बात कह रही थी ममता जी, तो मेरी जो सोच थी वो चली गई थी आपके ऊपर कि आप जो साहित्य लिखती हैं, साहित्य की दृष्टि, आपकी जो कलम चलती है, तो उस नजरिए से आपने बहुत बड़ी बात कही थी इसमें कि लहरें ऊपर भी उठाती हैं और नीचे भी गिराती हैं।
0: शुक्रिया मंजरी जी। लेकिन ये जब हम किसी भी जगह जाते हैं
1: जी,
0: तो बजाय सिर्फ मौज मस्ती के गाना बजाना और खाना पीना करने के बजाय, हम प्रकृति के उन नजारों को ध्यान से देखें, अपनी आंखों से देखें, उसे महसूस करें, आत्मसात करें, तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो हम ही से जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। इसी तरह हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि महासागर प्रकृति की अनमोल देन है, वे केवल पानी का विशाल विस्तार नहीं बल्कि धरती पर जीवन को बनाए रखने वाली शक्ति है। उनकी अथाह गहराई में असंख्य जीवों का संसार बसता है और उनकी लहरें प्रकृति के निरंतर प्रवाह का संदेश देती है। महासागर हमारे मौसम को संतुलित रखते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, मानव जीवन के लिए अनेक संसाधन प्रदान करते हैं। इनकी स्वच्छता और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। यदि महासागर स्वस्थ रहेंगे तो धरती भी स्वस्थ और जीवन से भरपूर रहेगी, और इनको स्वस्थ रखने में हम सभी को ही अपना योगदान देना चाहिए।
0: उफ, इतनी सारी टिप्पणियां हैं मंजरी जी, क्या कहें, लेकिन हम बहुत लंबी लंबी टिप्पणियां हैं तो शॉर्ट में पढ़ देते हैं दो टिप्पणी एक साथ। महासागर को, एक सखा है हमारे लिख रहे हैं, महासागर को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और दिल की धड़कन, जो इस ग्रह के मौसम, जलवायु और जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी के गर्भ में एक रहस्यमय धड़कन हर 26 सेकंड में सूक्ष्म कंपन का स्रोत अटलांटिक महासागर की लहरों को ही माना जाता है। महासागर एक विशाल कार्बन सिंक है जो हमारे वायुमंडल से करीब 25% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशेषित कर लेता है। और एक हमारे श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है कि विविध भारती के सभी को नमस्कार, और एक श्रोता ने लिखा है कि महासागर न केवल पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है बल्कि ये हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है, हमारे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है और ग्रह के जलचक्र को बनाए रखता है। महासागर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के लिए आवश्यक है, ये एक जीवन रेखा है।
1: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि अक्सर ये बात कही या सुनी जाती है कि दिल सागर जैसा विशाल रखिए। सागर जो हमें अपार सहनशीलता या विशाल दृष्टिकोण और निस्वार्थ प्रेम सिखाता है। इस धरती की हर गंदगी अपने में समाकर खुद खारा यानी नमकीन बन जाता है। बदले में कड़ी धूप और गर्मी सहन करते हुए जल से बादल बनाकर बरसात द्वारा हमें मीठा पानी देता है, मतलब खुद जहर पीकर हमें अमृत देता है। जैसे मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसी का जीना है जो।
0: क्या बात है, अब देखते हैं कि आनंद बख्शी साहब ने इस गाने में समंदर के बारे में क्या लिखा है। लता मंगेशकर ने स्वर दिया।

0: बारूद फिल्म का ये गाना था और समंदर के लिए आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था।
1: देखिए ना कुछ कहने वाले हैं,
0: आपने मुझे बोले ही नहीं थे, काट दिया।
1: देखो यही तो बात होती है ना कि क्या हम
0: टपाक से मतलब ये टपाक से बोलना हुआ लेकिन कई बार जरूरी बात रह जाती है ना टपाक से बोलने पर।
1: बिल्कुल सही बात है, टपाक से इसीलिए कई बार जब ऐसा बोला ना कि टपाक से बोल दिया तो उसका अंजाम भी बहुत गलत हो जाता है।
0: नहीं, कई बार सही भी तो हो जाता है,
1: कई बार सही हो जाता है।
0: जैसे अभी हम तो टपाक से बोलने की बात पर हमें बतियाना था तो आपने तो सही किया,
1: लेकिन
0: आप घबरा गई।
1: हमें लगा कहीं टपाक बोले तो कहीं वो गलत ना असर पड़ जाए, तो ऐसा कई बार हो भी जाता है कि हम ना चाहते हुए भी बोल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ममता जी, हाँ। कि मतलब वो
0: अच्छी बात जान बोल देते हैं, कोई जानकारी होती है और वो तपाक से बोल देते हैं कि ये नहीं, ये ऐसा था।
1: बिल्कुल, और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना सोचे समझे, बस चार लोग खड़े हैं और वो लोग बात कर रहे हैं, मालूम पड़ा आपने बिना सोचे समझे कि उनकी बात

0: क्या है, मतलब है कहाँ हमें बोलना नहीं चाहिए कहाँ बोलना है, वो तपाक से बोल देते, फिर उसका असर जो तीन सुन रहे होते, चार के बीच में आपने चौथे आप में आपने बोल दिया, जो तीन सुन रहे हैं तो उनको बड़ा लगता है अरे ये क्या बात कर दी इसने, मतलब किसी का आप कटाक्ष भी कर देते हैं, तपाक से बोलने वाले कभी कभी ऐसे लोग होते हैं, तो इसका नुकसान भी होता है, लोग गलत समझ सकते हैं, कभी कभी सीधी बात सामने वालों को कठोर या बहुत ही अपमानजनक लग सकती है, और कभी कभी रिश्तों में तनाव भी आ जाता है, और हर व्यक्ति जो है वो सच सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता है ममता जी, और बिना सोच समझ कर कही गई बात रिश्तों में दूरी भी ला सकती है।
1: लेकिन हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि मुझे तो तपाक से बोलने की आदत है और मुझे पता है कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन क्या करूं जब कोई गलत करता है तो अपने को मैं रोक नहीं पाती, अपने बातों से चतुर बनने की कोशिश करता है कोई तो मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता, मैं बोल देती हूँ भाई कोई गलत बात कह रहा है तो आपको बोलना ही चाहिए तपाक से,
0: बिल्कुल,
1: तो सामने वाले की गलती भी उजागर हो जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि बड़ों ने कहा है, कुछ कहावत भी है कि कुछ भी बोलो तो पहले सोच समझ के फिर बोलो, तपाक से कुछ भी बोल जाने से हमारे मुंह से गलत निकल सकता है, किसी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, किसी को दुख पहुंच सकता है, किसी का हम अपमान कर जाएंगे, सारी हानि हमें ही होगी, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो, तपाक से मत बोलो।
0: और हमारे साथी लिखते हैं कि तपाक से बोले शब्द तीर बन जाते हैं जो दिलों को पर वार करते हैं, जबकि सोच समझ कर बोले शब्द मोती होते हैं जो कभी चुपते नहीं बल्कि सजे हार बनकर रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं। और इसी तरह हमारे साथी और लिखते हैं कि अत्यधिक उत्तेजना व अहंकार में सामने वाले को तपाक से ऐसा कोई आप शब्द कटु शब्द ना बोले जिससे संबंधों रिश्तों में मतभेद कड़वाहट हो जाए, पहले तोले फिर बोले, नम्रता ममता भरे भाव मधुर बोले सभी जन से जिससे प्यार स्नेह बढ़ता है, इन्होंने बात लेकर के।
1: और हमारी एक सखी है, इन्होंने कहा है कि कुछ कह देना अक्सर बातचीत में गलत फहमी विवाद या सामने वाले को ठेस पहुंचाने का कारण बनता है, इसलिए इसे आमतौर पर एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती, बिना सोचे बोले गए शब्दों में अक्सर सही संदर्भ की कमी होती है जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है।
0: और हमारे एक साथी देखिए और भी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत हमारे व्यक्ति की विशेषता होती है, जहां लोग दिल की बात बिना लाग लपेट के कह देते हैं वहीं तपाक से बिना सोचे समझे बोली गई बात जिसमें उतावलापन रूखापन या दूसरों की बात काटने का उद्देश्य हो, मित्रों आपसी रिश्तों और कार्यस्थल पर मुश्किलें भी पैदा कर सकती है, लेकिन शिष्टता संयम और सम्मान के साथ तपाक से बोली गई बात आपको सम्मान के साथ आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाती है।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि जल्दबाजी अत्यधिक उत्साह या चिंता शामिल है तपाक से बोलने में, इसे एक बातूनी या वाचाल स्वभाव कहा जाता है, इस आदत को सुधारने और कम बोलने की आदत डालने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं, सुनने की आदत डालें, दूसरों की बात को ध्यान से सुने और बीच में न काटें, आज तो मंजरी जी ने हमें काटा बीच से कहा कि तपाक से बोलने के लिए, तो भाई मैं मान गई चुप हो गई और मैंने कहा कि हाँ क्या कहना चाहती हैं, तो कई बार पते की बात कहने के लिए भी काट दिया जाता है, तो अच्छी बात है कि अगर हम घड़ी की ओर देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी बातें करनी है तो इसलिए एक दूसरे को काटकर अगर बोलते हैं तो वो अपनी जगह पर सही है,
0: बिल्कुल,
1: तो इनका कहना भी सही कि कुछ कहने से पहले 3-5 सेकंड का समय लें, सोच लें और उसके बाद मन को शांत करके बोलें और चिंता में और गुस्से में ना बोलें, और भी बहुत लंबी सी टिप्पणी इन्होंने लिखी है।
0: देखिए एक बड़ा मजेदार सा संदेश मिला है मुझे ममता जी, लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत कुछ मर्दों में होती है लेकिन प्राय महिलाओं में ये आदत होती है, अच्छी तरह एक ऑटोमेटिक मशीन जैसी होती है, इन्होंने लिखा है पड़ोसी की
1: पत्नी से विश्लेषण किया है इन्होंने।
0: देखिए ना, पड़ोसी की पत्नी से लड़ती पड़ोसन के तपाक से बोलने की आदत को ताज्जुब करता हूँ, कभी कभी हमारी भी ऐसी करती है, अब नहीं तो कहकर सब मैं उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाऊं।
1: अच्छा, वैसे झगड़े के वक्त तो शब्द अपने आप फूटते हैं ना, फटाफट फटाफट तपाक से ऐसे नॉर्मल बातचीत में कई बार लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन झगड़े के वक्त जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं देखा है कि वो भी बहुत तेजी से और फास्ट बोलने लगते हैं।
0: सही बात
1: तो
0: है।
1: ये क्या वजह है, हमें लगता है कि
0: बड़े बैठे होते होंगे इसलिए बोल जाते होंगे।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि तपाक से बोलने या बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत अक्सर बातचीत में खटास डाल देती है। और भी कुछ कहना चाहती है?
0: नहीं, अब गीत सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं।

0: आज नहीं तो कल कह लेंगे, लेकिन आप हम
1: कल पे कहना पड़ेगा
0: तुरंत कहना पड़ेगा और तपाक से जी. तो तपाक से बताइए कौन सी रेसिपी तैयार की गई है आज.
1: बस हम तैयार करने वाले हैं मथुरा की आलू की खस्ता कचौड़ी, जिसे आलू की सब्जी के साथ भी खाते हैं और चटनी के साथ भी
0: तो
1: खाते
0: ये हैं. रेसिपी सिर्फ बता रहे हैं, बनाया भी है कभी, बनाती भी है?
1: नहीं, वैसे तो देखिए आलू की कचौड़ी और दाल की कचौड़ी तो सब घर में बनती है, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ की इसमें क्या खास बात है.
0: अरे आपने समझा ही नहीं, बनाने से मतलब है कि बना के खिलाया जाता है ना,
1: अभी तो
0: सिर्फ बनाया नहीं जाता है.
1: जी वो तो मैं जानती हूँ, आपके इशारे आपकी आंखों की जो चमक थी वो समझ गई थी.
0: तो कौन सा व्यंजन आप बना रही
1: हैं? आलू की खस्ता कचौड़ी बताते हैं. इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 4 बड़े चम्मच तेल या घी मोयन के लिए लेना है, 1/2 छोटा चम्मच नमक, गुनगुना पानी. आलू की ब्रावन के लिए आपको लेना है 2 या 4 उबले आलू लीजिए और हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा लीजिए, साबुत धनिया लीजिएगा उसको दरदरा कर लीजिए, और 1/2 छोटा चम्मच हींग लेना है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच अमचूर और नमक स्वाद के अनुसार, और 4 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया लेना है. तलने के लिए तेल भी आपको अलग से रखना है. और इसको बनाना है कि सबसे पहले मैदे में नमक मोयन डालकर अच्छी तरह इसको मिला लीजिए, और जब आपके हाथ से दबने लगे तो समझ लीजिए कि मोयन आपका रेडी सही लगा इसमें, और पानी डालकर थोड़ा सा इसको गूंथ लीजिए नरम नरम, और करीब 20 मिनट के लिए आप रखिए. और आप एक कढ़ाई में तेल गरम करिए, उसमें हींग सौंफ धनिया डालिए, हरी मिर्च डालिए, और उबले आलू हाथ से तोड़कर डालें, सारे मसाले नमक डाल करके आप मिला लें अच्छे से, हरी धनिया भी आप इसमें डाल दीजिए, और मिश्रण सूखा और मसालेदार जब हो जाएगा तब आप उसको किनारे रख लें. अब कचौड़ी की जो आटा साना है उससे लोइयां बनाइए, उसमें आलू का भ्रावन भरिए और इसको आप हल्के से हाथ से दबाकर बेल लें, या फिर आप हथेली से दबाएं या बेलन से बेलें, और इसको आप सुनहरा सुनहरा धीमी आंच पर आप इसको तल लें.

0: तो ये आपकी आलू की खस्ता कचौड़ियाँ तैयार हो जाएगी।
1: तो जब भी बनाना हो तो बना सकते हैं, और मंजरी जी बना के लाएंगी तो हमें जरूर खिलाएंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और अब तो हमने माइक्रोफोन पर कह दिया है ये बात,
0: बिल्कुल ये ताली भी नहीं जाएगी।
1: अब दाल की खस्ता कचौड़ी कैसे बनाएं ये भी आप जरा सुन लीजिए हमारे सारे श्रोताओं के साथ। दाल की खस्ता कचौड़ी के लिए भरावन के लिए पहले तो सामग्री बता दें, आधा कप धुली उड़द की दाल 4-5 घंटे भिगोई हो जो, एक छोटा चम्मच सौंफ, एक छोटा चम्मच धनिया दरदरा कुटा हुआ और चौथाई छोटा चम्मच हींग, या हींग तो चुटकी भर अंदाजे से डाल सकते हैं, छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला छोटे चम्मच से मतलब चुटकी भर, और एक छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब भरावन कैसे बनाएं, भीगी उड़द की दाल का पानी निकालकर दरदरा पीस लें, कढ़ाई में तेल गरम करें, हींग सौंफ और धनिया इसमें डालें। अब दाल मध्यम आंच पर भून लें, सारे मसाले नमक डालें, मिश्रण सूखा और खुशबूदार होने तक पकाएं, ठंडा होने दें। अब कचौड़ी बेलें, आटे की छोटी लोई बनाकर बीच में दाल की भरावन भरें और धीमी आंच पर तेल में तलें। इसको आलू की पतली सब्जी और चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ भी खा सकते हैं
0: जी।
1: और अब ये गाना सुनें।

0: कहीं दिन कहीं रात फिल्म का गाना था, महेंद्र कपूर की आवाज थी। और अब घड़ी की ओर जरा देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में दोस्तों, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। इनसे हम बातचीत करेंगे जिसका विषय रहेगा मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर कुणाल मेहता जी, विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार श्रोताओं, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं विविध भारती के इस माध्यम द्वारा आपसे बात करने का ये मुझे सुंदर मौका मिला है। हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जो विविध भारती सुन के ही बड़ी हुई है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, जो विविध भारती सुनते ही बड़ा हुआ हूं, और अभी मुंबई में पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परिचय दे दिया कि विविध भारती सुनते सुनते हमारी जनरेशन भी बड़ी हुई है। और देखिए, इसमें एक संयोग की बात यह है कि उसी चैनल पर जब आपको बातचीत का मौका मिलता है सुनने वालों से, तो अच्छा भी लगता है।
1: जी, बहुत खुशी हो रही है, और ये मेरे लिए एक मीडियम है जहां से मैं इंडिया की पूरी जनता से जुड़ सकता हूं और उनको मेरे विचार पहुंचा सकता हूं और थोड़ा मैं उनको गाइड कर सकता हूं आज के विषय के बारे में।
0: जी, आज का विषय हमने सुनने वालों को बता दिया है, मधुमेह, कारण और बचाव। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत ऐसे करते हैं कि मधुमेह कई बार डरावना शब्द होता जा रहा है आज के दौर में, खासतौर से आपके पास भी जो मरीज आते होंगे उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। पहले होता था कि एक बड़े होने के बाद, आयु वर्ग निकलने के बाद मधुमेह एक रोग होता था, आजकल एक कॉमन सी बात हो गई है। और भारत में तो इसका प्रभाव सबलता से बढ़ता जा रहा है। तो हम जानेंगे कि मधुमेह के प्रकार किस तरह से हैं और आप विस्तार से क्या कहना चाहेंगे।
1: जी, मधुमेह जो बीमारी है सबको पता है, डायबिटीज मेलिटस जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, ये आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। और कहने में दुख होता है कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है और यह बन गया है। मधुमेह के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस जो कि एडल्ट्स में होता है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। तो टाइप 1 जो डायबिटीज होता है उसमें ये इंसुलिन की टोटल कमी होती है, पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाते, इसके लिए ये जो मरीज होते हैं ये पूरी तरह इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं। और इनमें जो है टैबलेट्स हम नहीं दे सकते, इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है, जो कॉमनली पहले एडल्ट्स में होता था लेकिन आजकल काफी यंग लोगों में पाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंसुलिन की कमी तो है ही, लेकिन साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है, ये सब फैक्टर्स के कारण इंसुलिन जो है शरीर में उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है, जिसके कारण शुगर बढ़ने लगता है। और एक प्रकार डायबिटीज होता है जो कि हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में पाया जाता है। महिलाएं प्रेगनेंसी के पहले उनका शुगर नॉर्मल रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण उनमें डायबिटीज शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज पाया जाता है, जो कि डिलीवरी के बाद 50-60% महिलाओं में उनका शुगर बिना ट्रीटमेंट के नॉर्मल हो जाता है। कुछ महिलाओं में ये शुगर आगे कंटिन्यू रहता है, तो उनको डायबिटीज का

0: ट्रीटमेंट लेना पड़ता है।
1: देखिए ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करके आपने समझा तो दिया कि टाइप 1, टाइप 2 और अदर प्रकार के जो मधुमेह रोग होते हैं वे किस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये एक भ्रम सा पैदा हो गया, हम जी कभी देखते हैं कि बहुत ही मोटा व्यक्ति यदि हमारे समक्ष है तो हम एक एंटीसिपेशन कल्पना कर लेते हैं इसको डायबिटीज होगा या होने वाला है, ऐसा क्यों होता है?
0: डायबिटीज मोटापे से बहुत रिलेटेड है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं जिसमें है ओबेसिटी, डिसलिपिडेमिया और हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ही मतलब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है। ये सब के कारण इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उस पर असर होता है और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है मतलब जो इंसुलिन का एक्शन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण की शुगर कंट्रोल में तकलीफ होती है और शुगर बढ़ जाता है।
1: अगर डॉक्टर साहब ये पूछा जाए कि जो आपके यहाँ मरीज आते हैं और सबसे पहली नजरिए वाली बात होती है तो आप कैसे पहचान जाते हैं कि मधुमेह का टाइप 1 का रोगी बन चुका है?
0: टाइप 1 के जो रोगी होते हैं वो नॉर्मली छोटे बच्चे रहते हैं, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी पहले कहते थे। ये जैसे कि मैंने कहा इसमें इंसुलिन की पूरी डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ये बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। मधुमेह के लक्षण वही है, वजन कम होना, भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, रात में पेशाब जाना पड़ता है काफी बार, 4-5 बार, इन्फेक्शन होना या घाव नहीं भरना, ये सारे लक्षण हैं। और जब सीवियर हो जाते हैं, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो शरीर में केमिकल उथल पुथल होती है जिसके कारण की मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और जब हम शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है शुगर 500 एंड अबव है।
1: ओहो,
0: इतना ज्यादा शुगर होता है।
1: वैसे नॉर्मल जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है शुगर की?
0: नॉर्मल शुगर हम बोलते हैं फास्टिंग जो है वो 100-110 के अंदर होती है, और जो पोस्ट लंच मतलब दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद की शुगर होती है वो 130 के अंदर होनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है जिन्होंने गाइडलाइन सेट की है वो बोलते हैं कि सुबह खाली पेट 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद का जो शुगर होता है वो 126 या उससे ज्यादा हो तो उसे हम डायबिटीज लेबल कर देंगे।
1: अच्छा, यहाँ पर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है वो कि ये जो बात होती है कि भाई अचानक कोई आदमी महसूस करता है कि मुझे शुगर जैसा लग रहा है या बहुत भूख लगती है फिर भी वजन कम होता जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि उसे शुगर नहीं है लेकिन जांच के पहले या कुछ घंटों के पहले उसने मीठा कुछ ज्यादा खा लिया है तो क्या जांच प्रभावित हो जाती है?
0: नॉर्मली अगर जांच के पहले कुछ मीठा खा गया है तो उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बट जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है या जो प्री डायबिटिक्स नहीं है उनमें इसका असर नहीं होगा, बॉडी की क्षमता ऐसी है कि वो उसको हजम कर लेगी।
1: अच्छा,
0: तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट याद रखिए जब भी हम शुगर टेस्टिंग बोलते हैं फास्टिंग में तो आपको 12 घंटा फास्टिंग रखना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ भाई, देखिए चर्चा हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर चल रही है, थोड़ा सा विराम हमें देना होगा और एक संगीतमय वातावरण को गुंजायमान करना होगा। हम चाहेंगे अपनी पसंद का कोई एक गाना बताइए आप
0: श्रोताओं को। मैं ये मेरे दिल का बहुत ही करीबी गाना है, ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी प्रिय वाइफ डॉक्टर प्रीति मेहता जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट है और हमेशा मेरे साथ रही है मेरे इस जर्नी में, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत कम समय दे पाता हूँ मेरी प्रैक्टिस के कारण, इमरजेंसीज के कारण, बट शी इज ऑलवेज देयर। सो गाने का नाम है तू मिले दिल खिले, फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल।
1: हम सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म का बहुत ही रोमांटिक गाना है।

0: तू मिले दिल खिले। देखिए बहुत ही उम्दा गाना सुनवाया आपने। और अब जब मरीज आपसे मिलते हैं, टाइप वन के भी मिलते हैं, टाइप टू के भी मिलते हैं, तो ये डिफरेंट या ये भिन्नता या विविधता या ये अंतर कैसे आप परीक्षण से करते हैं? टाइप टू मरीज है ये,
1: जैसे कि मैंने पहले बताया, टाइप वन कॉमनली बच्चों में होता है, तो जल्दी जुवेनाइल डायबिटीज होता है, यंग बच्चों में होता है, और इसके सिम्टम्स जो डायबिटीज के हैं वही है, लेकिन ये बहुत बार इनको इमरजेंसी में लाया जाता है और हम चेक करते हैं तो शुगर ज़्यादा होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, या इनकी जो मदर है उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज रहा हो, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को डायबिटीज हो सकता है, या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत खा रहा है फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, रात में बार बार पेशाब उठ रहा है या पेशाब में इंफेक्शन हो रहा है यंग बच्चों को, तो डायबिटीज हम सस्पेक्ट करते हैं।
0: तो ये परीक्षण तो कुछ ब्लड से ही होता है?
1: ये ब्लड से ही होता है, जिसमें कि हम फास्टिंग और पोस्ट लंच शुगर करते हैं। एक और डायबिटीज के लिए टेस्ट होती है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। ये टेस्ट 3 मंथ्स एवरेज होता है डायबिटीज का, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 6 या 6.5 से कम होती है इसकी मात्रा। अगर इससे ज्यादा हो तो डेफिनेटली ये डायबिटीज का इंडिकेटर है, और अगर ये ज्यादा है इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज है।
0: अच्छा, सपोज पहली जो परीक्षण वाली बात होती है, टेस्ट होती है, वो ब्लड टेस्ट जाहिर कर रही है कि ये डायबिटीज का मरीज है, तो अल्टरनेट इमीडिएट ट्रायल ले लेते हैं आपकी, एक बार और टेस्ट करवा लेते हैं।
1: अगर पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट के जो सिम्टम्स है और ब्लड रिपोर्ट, हम पूरा पिक्चर देखते हैं ना कि सिर्फ रिपोर्ट, तो पेशेंट के अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है और रिपोर्ट्स भी मैच हो रही है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते हैं।
0: तो कभी कोई ऐसा मौका आपको किसी मरीज के साथ मिला कि आपने अल्टरनेट ट्रायल ली हो और बाद में पता चला होगा डायबिटीज नहीं था?
1: जी हाँ, जब हमें क्लिनिकली मैच नहीं होता है तो, या हमें क्लिनिकली डाउट होता है कि ये रिपोर्ट पेशेंट के सिम्टम से मैच नहीं कर रही, तो जैसे कि मैंने कहा HbA1c टेस्ट होता है जो 3 महीने का, पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर हमें बताता है, तो अगर ये 3 महीने का शुगर है वो खाने पीने से अल्टर नहीं होगा, क्योंकि ये पास 3 महीने के शुगर लेवल का रिकॉर्ड है, तो अगर ये HbA1c ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये डायबिटीज का संकेत है। इसके अलावा 2-3 और टेस्ट होते हैं, जो कि एक सीरम इंसुलिन लेवल होता है, जो इंसुलिन की मात्रा होती है ब्लड में उसे हम टेस्ट करते हैं, अगर वो लेवल लो है तो भी हमें डायबिटीज का इंडिकेटर मिलता है, और एक सी पेप्टाइड लेवल होता है जो भी हम टेस्ट करते हैं ऐसे स्पेशल कंडीशंस पे, जब हमें डाउट होता है कि पेशेंट को डायबिटीज है कि नहीं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परीक्षण की बात बता दी और कंफर्म कर दिया कि डायबिटीज का मरीज ये रोगी है और उसका इलाज आवश्यक है, तो वो इलाज के लिए मान लीजिए इमीडिएट आपकी रिपोर्ट बताती है कि हाईएस्ट शुगर है, तो आप उसको एडमिट करने की सलाह देते हैं या घर पर ही इलाज चलता है?
1: एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव है, अगर शुगर ज़्यादा है तो इसको इमीडिएट एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर डायबिटीज़ के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने बोला डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसमें कि सांस फूलता है, बॉडी में केमिकल उथल पुथल होके एसिड का लेवल बढ़ जाता है, देर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कंडीशन में एडमिशन मैंडेटरी है, बट अगर सिर्फ शुगर ज़्यादा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट का BP बाकी वाइटल स्टेबल है, तो हम इस OPD बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं।
0: क्या एक सामान्य आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है, मधुमेह बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक किसी कारण से कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से अगर शुगर लेवल क्षणिक रूप से, आंशिक रूप से, त्वरित रूप से उसका बढ़ गया है और उसने टेस्ट करवा लिया है, तो वो तो माना नहीं जाएगा कि वो डायबिटीज का रोगी है, क्योंकि लक्षण उसमें नहीं है, ये आप देखते हैं, पूरा हिस्ट्री मालूम पड़ रहा है। कई मरीज ऐसे भी आते होंगे कि वो शक पैदा कर लेते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है।
1: जो मरीज मेरे पास रिपोर्ट लेके आते हैं उनमें, जैसे कि मैंने कहा, पूरा डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं हम पहले, कि पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं क्या, पेशेंट्स को तकलीफें क्या है, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं हम, लाइफस्टाइल डाइट का हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही अल्कोहल स्मोकिंग कुछ आद्य उनको एडिक्शंस है इसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम रिपोर्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट पे आते हैं। तो जब हम पूरा पेशेंट एज अ होल देखते हैं और मुझे यदि डाउट होता है कि नहीं ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है या पेशेंट ने कुछ खाने पीने में परहेज नहीं किया है और तुरंत शुगर चेक किया है, इसके लिए शुगर ज़्यादा है, तो हम पेशेंट से वापस एक बार रिपोर्ट चेक करने बोलते हैं और जो HbA1c है वो टेस्ट करने को बोलते हैं, उससे हमें आइडिया होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
0: ये बहुत ही अच्छा परीक्षण आप करते हैं ताकि भ्रम भी दूर हो जाता है और खामखा एक जो टेंशन हो जाता है
1: right, वो दूर हो जाता टेंशन होती
0: है। अब देखिए यहाँ पे स्थिति ऐसी बन रही है कि हमारी जो बातचीत है वो तनावपूर्ण ना हो जाए, उसको हल्का फुल्का करना होगा और एक गाने का सिलसिला शुरू करना होगा।
1: ये गाना जो है दिल चाहता है मूवी से है, इसका टाइटल सॉन्ग है। ये मेरे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूंगा जो मेरे एमडी के बैचमेट्स हैं। मेमोरेबल टाइम हमने बिताया है, आज भी हम मिलते हैं, ये गाना मैं उनको डेडिकेट

0: दिल चाहता है, दिल तो बहुत चाहता है कि गाना लगातार चलता रहे, सुनते रहें, लेकिन गाने की भी एक अवधि है, हमारे कार्यक्रम की भी एक पाबंदी है। अब अगला सवाल जो आज का, दोस्तों हम बता दें कि आज की चर्चा का विषय ये है मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर साहब, मधुमेह की जो प्रकार वाली बात आपने बताई, परीक्षण वाली बात बताई, अब हम जानेंगे कि बच्चों में जो मधुमेह हो जाता है तो वो कितने उम्र के छोटे बच्चों से शुरुआत होती है और कहाँ तक इसकी सीमा होती है, और ये विस्तार से हम जानना चाहेंगे।
1: देखो, बच्चों में जो डायबिटीज होता है, कॉमनली हमने जैसे बोला कि ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस होता है। इसकी कोई उम्र नहीं है, 3 साल में भी हो सकता है, 6 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, इसके लक्षण

लक्षण हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर इन में से कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए, फिर वो आगे जांच करके बता सकते हैं कि मरीज को डायबिटीज है कि नहीं और उसकी सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज में हमारे पास बहुत सारी टैबलेट्स है, दवाइयां है, अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज में हमें सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। बहुत ही दुख होता है कि छोटे बच्चों को हमें सुई का प्रिक डेली लगाना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है जिससे

0: Type 1 डायबिटीज में हमें सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। बहुत ही दुख होता है कि छोटे बच्चों को हमें सुई का प्रिक डेली लगाना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है जिससे हम टैबलेट या गोली से इसको ठीक कर सके।
1: हाँ
0: तो इसमें जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं दिन में 2 बार या 3 बार, डिपेंडिंग कि पेशेंट की इंसुलिन वैल्यू क्या है। साथ ही खाने के परहेज करना पड़ता है और सेहत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बच्चा है, बढ़ती उम्र है, तो उसका सेहत भी हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ हैम्पर होगी, मेमोरी हैम्पर होगी।
1: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मेमोरी पे भी फर्क पड़ सकता है, और आपने 3 साल की जो बच्चों का उदाहरण दिया है, एक पढ़ाई की हल्की सी शुरुआत हो जाती है वहाँ पर आज के दौर में। पहले तो देर से पढ़ते थे बच्चे, तो क्या उसकी ग्रोथ रेट में कुछ ऐसा फर्क पड़ता है कि जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है तो डायबिटीज की वजह से उसमें कहीं कुछ कमी आती है?
0: देखो, डायबिटीज की वजह से शरीर में बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, ग्रोथ हैम्पर होती है। जनरली ये बच्चे थिन बिल्ड होते हैं, इनका वजन बराबर नहीं बढ़ता है क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, इनको रेगुलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, और इन्फेक्शंस ये बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं अगर इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो। डायबिटीज इटसेल्फ कैन कॉज लो इम्यूनिटी, और अगर पोषण और सही न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि डायबिटीज में खाने में काफी सारी रेस्ट्रिक्शंस आती है, मीठा नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, जूस नहीं पीना है, फ्रूट्स में भी रेस्ट्रिक्शंस है, मिठाई नहीं खानी है, तो इनकी जो ग्रोथ पे है, अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दें तो उसके कारण यस डेफिनेटली ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, जिसके कारण मेमोरी पे भी असर पड़ सकता है।
1: ये बात तो आपने बड़ी गंभीरता से इसको महसूस आया है। कई आपके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे और आपने इलाज किया होगा, जाहिर है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 3 से लेके जब शुरुआत होती है तो क्या इसकी जो नींव है या फाउंडेशन, गर्भावस्था में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे में डायबिटीज आ जाता है?
0: जरूरी नहीं है कि बच्चे को एट बर्थ डायबिटीज हो, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक, एनवायरमेंटल, बट यदि उनके पेरेंट्स या फैमिली में डायबिटीज का हिस्ट्री है तो काफी चांस है कि बच्चे में डायबिटीज आ सकता है, बट जरूरी नहीं है 100% बच्चे को डायबिटीज होगा। तो जब भी बच्चे को लक्षण आए तभी चेक किया जाए, या ऑब्वियसली अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो बच्चे का टेस्टिंग करना चाहिए।
1: अच्छा, परीक्षण के बाद यदि ये पता चलता है कि बच्चे को Type 1 नहीं है और कुछ ऐसे डायबिटीज के लक्षण हैं जो सामान्य होते हैं शुरुआत, तो क्या गोलियों से काम नहीं चल सकता है?
0: Type 1 डायबिटीज में हम गोलियां नहीं दे सकते। अगर उसके लिए मैंने जैसे बोला, हम लोग टेस्टिंग करेंगे, इंसुलिन लेवल्स देखेंगे, सी पेप्टाइड लेवल्स देखेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे बच्चे को डायबिटीज है कि नहीं। पर अगर बच्चा है, उसको Type 1 डायबिटीज है, तो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन है। हम कोई दवा टैबलेट बच्चों में नहीं दे सकते। एडल्ट्स में जो कि Type 2 डायबिटीज होता है, उसमें इंसुलिन इज द लास्ट ऑप्शन। बहुत बेहतरीन दवाइयां मार्केट में हैं, एलोपैथी ऑब्वियसली, बट जिससे हम डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर बच्चे को Type 1 डायबिटीज है और इंसुलिन एक आवश्यक स्रोत बन जाता है कि ये लेना ही है उसको, तो ये तो फिर जीवन भर के लिए उसके साथ रहेगा।
0: जी, सही बात है। इसी बात का हमें दुख होता है कि इंसुलिन जो है लाइफ लॉन्ग बच्चों को लेना पड़ेगा। बड़े होते हैं तभी भी उनको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, बिकॉज उनके शरीर में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। दैट्स व्हाई इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं।
1: लेकिन युवा अवस्था तक अगर वो बच्चा आता है, शादी ब्याह की बात होती है, मेल हो या फीमेल हो, तो उसमें कुछ डिसफंक्शन की बात रहती है, कुछ कमी सी लगती है, दुर्बलता आती है?
0: डायबिटीज में सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, बट अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल में रखें, सही न्यूट्रिशन रखें, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
1: अच्छा, ऐसे कोई मरीज आपके पास आते हैं जिसकी आयु 15 से 20 साल हो, युवावस्था कही जा सकती, किशोरावस्था, टीनेजर, उनको डायबिटीज हुआ हो अपनी लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण, तो क्या वो, और मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं है, तो वो क्योरेबल है?
0: डायबिटीज जो है इसका कोई क्योर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, प्री डायबिटिक कंडीशन होती है जिसको हम प्री डायबिटीज बोलते हैं, मतलब उनका शुगर जस्ट नॉर्मल रेंज के बाहर है, या ये वो पेशेंट्स है जिसको हम अगर सही लाइफस्टाइल दे, उनका डाइट

0: कंट्रोल करें, उनको फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करें वो पेशेंट्स, तो उनका शुगर कंट्रोल में रह सकता है, उनको कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन, ये बहुत ही भयानक बीमारी है बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चे काउच पोटैटोज बन रहे हैं, सोफा पे बैठ के टीवी देखना, घंटों मोबाइल में घुसे रहते हैं। हमारे जब हम छोटे थे तब हम बाहर खेलने जाते थे, मैदानों में आउटडोर गेम्स खेलते थे, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खोखो हो, ये सब खेलते हुए हम बड़े हुए। लेकिन आज के अगर हम यंग जनरेशन देखें तो वो कंटिन्यूअसली मोबाइल में घुसे रहते हैं, या फिर प्ले स्टेशन है, टीवी है, इंटरनेट है, तो इसके कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। आउटडोर जो गेम्स रहते हैं आजकल बहुत कम खेलते हैं, जिसके कारण ओबेसिटी इज ऑन द राइज। बहुत सारे यंग बच्चे हैं जिनको जो ओबेसिटी के शिकार है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, वजन मोटापा जिसे हम बोलते हैं वो बहुत बढ़ रहा है, और ये सब का असर डायबिटीज की तरफ उनको ले जा रहा है। उनको युवा अवस्था में 20, 25, 30 साल में डायबिटीज हो रहा है, इसके कारण डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी आगे बढ़ के उनको होने वाली है।
1: ये बहुत एक चेतावनी भरी बात आपने कही है, कॉम्प्लिकेशंस। इस बिंदु को लेकर हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे यहाँ पर।
0: ये जो गाना है ये दिल के बहुत करीब है, और ये मैं डेडिकेट करना चाहूंगा मेरे पेरेंट्स को। तो तारे जमी पर का ये बहुत ही उमदा सॉन्ग है माँ, ये मैं मेरी माँ को डेडिकेट करना चाहूंगा।
1: बहुत ही इसमें डिफाइन करने वाली बात नहीं है, सिर्फ एहसास मात्र है। आइए सुनते हैं तारे जमीन पर फिल्म का ये गाना।

0: गाना तो आपने बहुत ही इमोशनल सुनवा दिया। ये देखिए, ममत्व से बढ़कर कोई एहसास नहीं और कोई इमोशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब किसी को मधुमेह हो जाता है, वो आपके पास आता है, तो एक तारतम्य आपका जुड़ जाता है, एक सिंपैथी सी हो जाती है कि इतनी कम उम्र में बच्चों को हो गया। लेकिन जब बड़ों को डायबिटीज़ हो जाता है या वो उसके शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों के बारे में क्या कारण आप समझते हैं कि हो जाता है?
1: इसके कारण मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण है। एक है जेनेटिक, जो फैमिली से आता है। आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो आप डायबिटीज के लिए प्रोन है। जरूरी नहीं कि फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको डायबिटीज होगा, बट यस, आप नॉर्मल आदमी जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज नहीं है या जिसके जीन्स में डायबिटीज नहीं है, उससे आप रिस्क पे है, उससे ज्यादा रिस्क आपको है डायबिटीज होने की। आजकल जो उससे ज्यादा बीमारी जो है आजकल, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओबेसिटी। डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज ओबेस पेशेंट्स में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जो पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो काउच पोटैटोज है, जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, और जो अल्कोहल या स्मोकिंग के आदि है, ये पेशेंट्स में डायबिटीज का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज डायबिटीज जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज होता है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इसके कारण अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, अगर आप सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, या आप स्ट्रेस ले रहे हैं, मुंबई की लाइफ में स्ट्रेस तो होना ही है, बट आजकल गांव में भी हम देख रहे हैं जो युवा है, आज की जनरेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन आ जाता है उन्हें, तो ये सब डायबिटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे जाके ये पेशेंट्स, ये मरीज को डायबिटीज़ हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब, एक फैमिली हिस्ट्री की बात आपने की, अनुवांशिकता की बात की, जो हेरिडिटी कैरेक्टर होता है, तो ये आपके पास इस तरह के भी मरीज देखने को मिलते होंगे आपको कि पिता को था लेकिन 3 भाई या बहन हैं, उसमें से केवल एक को ही हुआ है, 2 को नहीं हुआ है।
1: डायबिटीज में फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली होती है, बट जरूरी नहीं है कि फादर या मदर को या दोनों को डायबिटीज है तो सभी बच्चों को डायबिटीज होगा। ये उस इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल और जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, रेगुलर एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट रखे और स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहे, तो चांस है कि उसको डायबिटीज नहीं हो।
0: ये बात तो आपने बड़ी सुधार की कही है कि कभी अच्छा, इसमें एक सेंटेंस आपने कहा था, स्ट्रेस या तनाव या अवसाद, इसको अलग अलग रूप में लेते हैं लोग, वो हर किसी को है, आपको है और मुझे भी है, कहीं ना कहीं हम इससे बचे नहीं हैं, लेकिन उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना गहराई से उसको महसूस करते हैं, तभी इसके शिकार बनते हैं। कितना सहमत हैं आप?
1: ये एक बिल्कुल सही बात बोली। देखो, जैसे कि मैंने कहा, अर्बनाइजेशन जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है, भागदौड़ वाली मुंबई में जो हम भागदौड़ करते हैं, यहाँ से वहाँ ऑफिस जाओ, यहाँ आओ, इधर जाना है, उधर जाना है, तो लाइफस्टाइल जो हमारी है पूरी तनावपूर्ण है। ऑफिस में वर्क है, घर पे स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कि जो युवा है गाँव में भी, जो रूरल एरियाज है वहाँ पर भी स्टडीज है जो बताती है कि गाँव में भी जो स्ट्रेस है वो लेवल काफ़ी बढ़ गया है युवाओं में। स्ट्रेस से बचना नामुमकिन है। ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना स्ट्रेस ले, कितना नहीं ले। मैं तो मेरे पेशेंट्स को हमेशा यही कहता हूं, भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं, 1 कान से सुनो, दूसरे से बाहर लो। बीच में जो दिमाग है उसको बेचारे को टेंशन मत दो, उसको छोड़ दो
0: जी।
1: क्योंकि टेंशन से ना सिर्फ डायबिटीज के और हम बढ़ावा दे सकते हैं, इससे और भी सारी काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एसिडिटी है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है।
0: ये आपने इतना गंभीर स्रोत बताया कि मुझे एक प्रश्न यहाँ करना पड़ेगा सुनने वालों की ओर से, कि आप इतना इलाज करते हैं और एक जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसका अगर मधुमेह नियंत्रण में न आया, तो न आने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए
1: जी। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और डायबिटीज

0: को कंट्रोल में नहीं रखे तो काफी सारे शरीर के जो पुर्जे हैं उन पे नुकसान हो सकता है। डायबिटीज को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट किलर
1: जी,
0: ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देता है। और जब 10 साल 15 साल आदमी को डायबिटीज होता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तब इसके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरुआत होती है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस सेट इन हो जाते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, काफ़ी इसके कारण मोर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी होती है। डायबिटीज जो कॉम्प्लिकेशंस है ये माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर बोलते हैं। सरल भाषा में कहा जाऊं तो शरीर के सभी अवयवों पे इसका असर होता है, बुरा असर। आंखों में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जिसमें जो आंख का पर्दा है जहां पे इमेज बनती है उसे डैमेज होता है, पेशेंट्स को आगे जाके दिखना बंद हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरैक्ट्स बहुत जल्दी होते हैं, जिसको हम मोतीबिंदु कहते हैं। तो ये पेशेंट्स को कम उम्र में कैटरैक्ट होता है, ऑपरेशन से ये सही हो सकता है, पर अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ गया तो इसके कारण उनको दिखना बंद हो सकता है। फिर डायबिटीज से किडनी पे प्रभाव पड़ सकता है, जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिससे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, किडनी खराब हो सकती है और आगे जाके ये पेशेंट्स डायलिसिस पे भी लैंड अप हो सकते हैं। इतना गंभीर रूप से डायबिटीज का असर होता है। तीसरा असर डायबिटीज का होता है हार्ट पे, जिसमें हार्ट अटैक जो है ये हो सकता है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में। स्पेशली हार्ट अटैक उन पेशेंट्स में होता है जिनको ओबेसिटी है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनका कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की मात्रा ज़्यादा है। तो हम पेशेंट्स को, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, साथ में ब्लड प्रेशर है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है, ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ का ब्रेन पे भी असर हो सकता है, बिकॉज डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल हैंड इन हैंड चलते हैं। तो ये पेशेंट्स को लकवा यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी होती है, जिसमें हम हाथों में पैरों में झंझनाहट होती है और आगे जाके तलियों में और हाथ के जो पंजे हैं उसमें जलन होती है। ये जलन बहुत सीवियर हो सकती है और इसके कारण पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है।
1: हमने ये भी मरीजों में देखा है, पाया है कि आपने हाथों की जो जलन बताई है, पैरों की पगतलियों में जो ऐसा होता है कि ऑपरेशन तक करना पड़ता है।
0: डायबिटीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट। जैसे कि मैंने बताया, न्यूरोपैथी में क्या होता है कि इनकी जो नर्व्स है वो कमजोर हो जाती है, इनके सेंसेशन जो है वो चले जाते हैं, इसलिए ये पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशंस नहीं होता है। काफ़ी बार ये होता है कि पैरों में जख्म हो गई, लेकिन पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशन नहीं होने के कारण ये जख्म बढ़ता जाता है। और डायबिटीज़ के जो मरीज है ये काफ़ी बार अपने फुट चेक नहीं करते हैं, इसलिए हम हमेशा मेरे पेशेंट्स को मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि डेली बेसिस पे एक बार एटलीस्ट दिन में अपना फुट इंस्पेक्ट करना चाहिए और फुट वेयर जो है वो प्रॉपर फुटवेयर होनी चाहिए और फुट इंस्पेक्शंस होना चाहिए। तो ये जो डायबिटिक फुट है इसमें कॉम्प्लिकेशंस होके इन्फेक्शन हो सकता है और ये इन्फेक्शन स्प्रेड होके हमें काफ़ी बार एम्पूटेशन भी करना पड़ता है, मतलब पैर को काटना पड़ता है। वो लेवल हम डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है, बिलो नी होता है, बिलो एंकल, अबव एंकल होता है, तो डिपेंडिंग, या कभी कभी सिर्फ एक उंगली काटनी पड़ सकती है। तो इतना भयानक ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट।
1: लेकिन यहाँ आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसमें मटेरियलिस्टिक ढंग से देखें तो प्लास्टिक का चप्पलों का उपयोग कर सकते हैं या पूरा जूता और मोजा बंद करके पहनते तो मॉइस्चराइजेशन होता है, तो उस पैर की अवस्था को कैसे रखा जाना चाहिए?
0: नहीं, डायबिटिक फुट केयर में यही है कि आप अपने फुट क्लीन और ड्राई रखें। यू कैन वेयर सॉफ्ट चप्पल्स, आजकल मार्केट में भी स्पेशल डायबिटीज फुटवेयर आती है जो आप पहन सकते हैं। जो पेशेंट्स में डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन है या डायबिटिक फुट है या कभी कभी फ्लैट फुट होता है, उनके लिए स्पेशल फुटवेयर भी आते हैं। न्यूरोपैथी पेशेंट्स के लिए भी स्पेशल फुटवेयर है। लेकिन जो आम जनता है जिनको डायबिटीज नहीं है, उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, ज़्यादा टाइट शूज नहीं पहने और घर पे आते ही पैरों को खुला रखें, उनको हमेशा डेली बेसिस पे इंस्पेक्ट करें।
1: इसका मतलब थोड़े समय के लिए जब बहुत सारी बंदिश हो जाती है तो उसको आपको थोड़ा हवा के रूप में रखना चाहिए, थोड़ा खुला रखना चाहिए, मोजे वगैरह ना पहने, उस समय के लिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारी चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो संगीत वाली बात है वो कौन सी है?
0: ये गाना है।

0: में जो गीत आपने सुनवाया, उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम जो सवाल आपसे पूछेंगे उसमें तमाम सुनने वाले भी इसमें शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि डायबिटीज़ ना हो इसके लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या बचाव के तरीके अपनाने चाहिए।
1: डायबिटीज़ ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हम डेफिनेटली इससे बच सकते हैं और इसको हम डिले कर सकते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी। हमारी लाइफस्टाइल सही रखे, हम एक बैलेंस डाइट फॉलो करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो डायबिटीज़ के भयानक बीमारी से बचा जा सकता है। तो मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि आप डेली एक्सरसाइज करें। आजकल के युवा और एडल्ट्स में फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही कम होगी। घर से निकलते हैं, बाइक है, कार है, वहाँ से ऑफिस जाते हैं या बस पकड़ के ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से घर आते हैं, घर बैठते ही टीवी के सामने बैठ जाएंगे, थके हुए टीवी के सामने ही खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है ये आजकल कॉमन पब्लिक है इनमें बहुत ही कम होती जा रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके कारण भी लोग खाना लेट खा रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं कि नहीं मैं पहले काम करूंगा, ये सर पे बैठा है, बॉस सर पे बैठा है, मैं पहले काम खत्म करता हूँ फिर खाना। मेरा ये सुझाव है और मेरे श्रोताओं से ये कहना है कि आप खाना जो है टाइम पे लीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। आजकल जंक फूड का क्रेज है। मैं ये नहीं कहता कि आपको टेस्टी फूड या जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इसको आप संडे को एंजॉय कीजिए, बट बाकी छः दिन जो है हफ्ते के उस दिन आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। डाइट के बारे में बताना चाहूँगा कि हमें जो है बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डाइट में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इंटेक और फैट इंटेक होना चाहिए। फैट का इंटेक, चर्बी का इंटेक या चर्बी युक्त पदार्थों का इंटेक कम रखना चाहिए। खाने में सलाद्स, हरी सब्जियां, फ्रूट्स और टोंड मिल्क का सेवन करें।

0: रेगुलर बेसिस पे आपको सलाड्स और फ्रूट्स लेना चाहिए, साथ ही नॉन वेजिटेरियन फूड है जो एंजॉय करते हैं वो बेशक खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट और एग योक, जो योक होता है, उसे कम लेना चाहिए, और तली हुई चीजें, फ्राइड स्टफ, इसका सेवन कम करना चाहिए। कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि मीठा खाने से डायबिटीज होता है, नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है कि आप मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट यस, अगर आप हाई कैलोरी फूड जिसमें कि घी, तेल, चर्बी ज्यादा है, ऐसा फूड का सेवन रेगुलर करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो यस, आप डायबिटीज की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं, आपको फ्यूचर में जाके डायबिटीज होने की संभावना है।
1: ये आपने सही कहा कि मीठे के बारे में जो मिथ है, खा सकते हैं लेकिन उसको पचाइए भी।
0: यस।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चलन सा निकला है, कोई भी पदार्थ हो उसमें कहा जाता है आप ले सकते हैं शुगर फ्री, तो व्हाट इज शुगर फ्री?
0: जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे शुगर नहीं बढ़ता है या कम बढ़ता है, इसके लिए हम इनको शुगर फ्री बोलते हैं, जैसे कि सैकरीन हो गया या कुछ केमिकल्स है जो स्वीट टेस्ट देते हैं बट इनसे शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। स्टीविया है जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इस ये भी शुगर फ्री होता है। तो जो पदार्थ या मिठाइयां बनाई जाती है इनमें इन केमिकल्स, शक्कर या चीनी या गुड़ का इस्तेमाल न करते हुए, ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस यूज होते हैं जिनसे कि उसका कैलोरी काउंट और शुगर काउंट लो हो या उससे शुगर नहीं पड़े। तो हम ये सलाह देते हैं पेशेंट्स को कि ये जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस है इनका सेवन आप कर सकते हैं, बिकॉज दिल तो करेगा, दिल तो अभी भी बच्चा है, मीठा खाने की जिद तो करेगा, तो आप कभी कभी इंडल्ज कर सकते हैं। बट ये जो शुगर फ्री मिठाइयाँ स्पेशली होती है उनमें मावा है, घी है, तो कोलेस्ट्रॉल इनसे बढ़ सकता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इनको रेगुलरली नहीं ले, कभी कभार खुद को खुश करने के लिए या शाबाशी देने के लिए कि अगर आपने डायबिटीज कंट्रोल रखी है, रेगुलर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वंस इन अ वाइल इट्स ओके टू इंडल्ज।
1: तो ये तो तमाम सारी जो लाइफस्टाइल से संबंधित जानकारी है आपने दे दी है, और हमें उम्मीद है कि लोग इसको स्वीकारेंगे, मानेंगे और उसका पालन करेंगे। अब चलते चलते एक गाना तो बनता है, वो आपकी पसंद का नगमा कौन सा है?
0: ये आखिरी गाना है जो मैं श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहूंगा, पूरे इंडिया के श्रोताओं को। ये AR रहमान साहब का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और हर इंडियन के करीब होना चाहिए। माँ तुझे सलाम,
1: आइए सुनते हैं।

0: साहब, आपने देखिए देशभक्ति पूर्ण जज्बे से जो लबरेज था ये गाना सुनवाया, और अब चलते चलते आखिर में एक कोई संदेश नुमा बात हमारे मधुमेह के रोगियों को कहना चाहेंगे तो वो क्या है?
1: मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा सब श्रोताओं को कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और अगर हम सही लाइफस्टाइल चुने तो हम इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहल।
0: इतने गहन विषय पर आपने सरल शब्दों में आज का हमारा जो विषय था मधुमेह कारण और बचाव, इस पर अपनी चर्चा की और लोगों को समझाया, हमारे सुनने वालों से मुखातिब हुए। इसके लिए विविध भारती में आने के लिए और इस तरह की चर्चा करने के लिए विविध भारती की ओर से, तमाम सुनने वालों की ओर से आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: एक बार फिर से सब श्रोताओं का और विविध भारती का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और जाने माने फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो मेल करके, खत लिख के हमें अपनी राय से अवगत अवश्य कराइए। चलते चलते आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर थी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सुमन जी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है।
2: श्रोता अभी सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM बैंड 102.9 MHz पर। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक

रेडियो स्टेशन नहीं हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, आकाशवाणी ने सदैव ही लोक संगीत, सुगम संगीत के कलाकारों को अवसर प्रदान किया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय कलाकारों को अवसर दिया जा रहा है। आज पहली बार लोकगीतों के विशेष कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देंगे लोक गायक डॉक्टर जगदीश चंद्र चौधरी और उनके सहयोगी कलाकार ढोलक पर रणजीत गंधर्व, मंजीरा सोहनलाल चौधरी और हारमोनियम पर मनीष गर्ग, आप है संगत कलाकार। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम में उनकी पहली प्रस्तुति।

बिन जारी रे इस लोकगीत को अभी आपने सुना आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ की मीरा चैनल से डॉक्टर जगदीश चंद्र चौधरी की आवाज़ में। श्रोताओं आपको बता दें आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत पर आधारित विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में और आज के हमारे कलाकार हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र चौधरी। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में ये लोक संगीत।

0: डॉक्टर जगदीश चंद्र चौधरी की आवाज में श्रोताओं अभी आपने सुना इस गीत को। आपको बता दें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लोक गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से। श्रोताओं जो भी लोक कलाकार आकाशवाणी से ग्रेडेड नहीं है लेकिन फिर भी लोक गायन भजन गीत या संगीत से जुड़े हैं और इस कार्यक्रम में आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से जुड़े कलाकार अपनी कला के माध्यम से आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से जुड़ सकते हैं। आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ आप सभी को सादर आमंत्रित करता है। आइए हमसे जुड़िए अपने मीरा चैनल से FM बैंड 102.9 MHz पर। आइए श्रोताओं इसी कार्यक्रम में अब सुनते हैं अगली प्रस्तुति डॉक्टर जगदीश चंद्र चौधरी की आवाज में।
1: हाँ।

0: बोलिए सतगुरुदेव।
1: लोक गायक डॉक्टर जगदीश चंद्र चौधरी की आवाज़ में अभी आपने सुना इस गीत को। इस गीत के साथ ही श्रोताओं, लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अभी आपने सुना लोक गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में भजन प्रस्तुति थी लोक गायक

0: और हारमोनियम पर आपके साथ थे मनीष गर्ग। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको बता दें, जो भी स्थानीय कलाकार आकाशवाणी से ग्रेडेड नहीं है लेकिन फिर भी लोक गायन, भजन गीत या संगीत से जुड़े हैं, इस सुविधा के क्षेत्र में आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, आसपास के क्षेत्रों से जुड़े कलाकार आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ में अपनी कला के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ आप सभी को इसके लिए आमंत्रित करता है आपके अपने मीरा चैनल FM बैंड 102.9 MHz पर। इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं जीमेल, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: मेरे सभी प्रिय साथियों को आज की शाम का प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो साथी भाविका और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी, एक ऐसा मंच जहां हम करते हैं बात उन चीज़ों पर जो हमारी लाइफ से जुड़ी होती हैं। दोस्तों, आज के दौर में तकनीक हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी है। मोबाइल, इंटरनेट और मीडिया ने हमारे काम को आसान बनाया है। पढ़ाई हो, व्यापार हो या एंटरटेनमेंट, हर जगह तकनीक दिखाई देती है। लेकिन हर चीज़ की तरह तकनीक का सही इस्तेमाल भी बेहद ज़रूरी है। अगर इसका उपयोग समझदारी से किया जाए तो ये हमें विकास की ओर ले जाती है, और गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर समय की बर्बादी और कई समस्याओं का कारण भी बन सकती है। आज बच्चे घंटों मोबाइल पर गेम खेलते हैं, लोग सोशल मीडिया में इतना खो जाते हैं कि परिवार और समाज से दूर होने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर तकनीक का सही उपयोग हमें नई जानकारी देता है, ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ता है और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सिखाता है। दोस्तों, तकनीक हमारी मदद के लिए है, ना कि हम उसके गुलाम हैं। इसलिए ज़रूरत है संतुलन की। जितनी ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करें, सही जानकारी लें और अपने समय का सही प्रबंधन करें। और याद रखें, तकनीक तभी वफादार होती है जब उसका इस्तेमाल समझदारी और जिम्मेदारी के साथ किया जाए।

दोस्तों, आजकल जब भी कोई रॉयल डिज़ाइन, लग्जरी और हैंडमेड कारीगरी की बात करता है तो लोग उसे ट्रेंड मानते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हमारे राजस्थान की मिट्टी में ऐसी कलाएं सदियों से मौजूद है जिनकी बराबरी आज भी कोई मॉडर्न डिज़ाइन नहीं कर सकती। उन्हीं में से एक है कोफ्तगिरी। ये सिर्फ एक कला नहीं बल्कि धैर्य, मेहनत और शाही विरासत का एक मेल है जो साधारण लोहे को भी सोने चांदी की चमक से खास बना देता है। पुराने समय में राजा महाराजाओं की तलवारों, ढालों और शाही सामानों पर की जाने वाली ये बारीक कारीगरी उनकी शान मानी जाती थी। सोचिए, बिना किसी मशीन और टेक्नोलॉजी के, सिर्फ हाथों के हुनर से इतनी परफेक्ट डिज़ाइन तैयार करना कितना अद्भुत रहा होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज की नई पीढ़ी विदेशी ट्रेंड को तो जल्दी अपना लेती है पर अपनी लोक कलाओं को जानने और समझने में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाती। जबकि कोफ्तगिरी जैसी कलाएं सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की असली पहचान भी है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी लोक कलाओं को सिर्फ पुरानी चीज़ समझकर ना भूलें बल्कि उन्हें सम्मान दें, उनके बारे में बात करें और आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाएँ, क्योंकि अपनी जड़ों से जुड़कर ही कोई संस्कृति सच में मजबूत बनती है।

दोस्तों धरती का लगभग 3/4 हिस्सा महासागरों से घिरा हुआ है और यही महासागर जीवन की सबसे बड़े आधारों में से एक है। स्वच्छ हवा, संतुलित मौसम और वर्षा का चक्र, इन सब के पीछे महासागरों की अहम भूमिका होती है। इन्हीं के महत्व को समझाने के लिए हर साल 8 जून को यानी आज के दिन विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। महासागर केवल जल का विशाल स्रोत नहीं बल्कि करोड़ों जीवों का संसार भी है। नीले विस्तार में फैले ये अथाह सागर प्रकृति की खूबसूरत अद्भुत सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन से लेकर मौसम के संतुलन तक महासागर हर पल धरती को जीवन देने का काम करते हैं और यही कारण है कि समुद्र पृथ्वी की धड़कन माने जाते हैं। लेकिन आज का बढ़ता प्लास्टिक कचरा, समुद्री प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन महासागरों की सुंदरता और संतुलन को प्रभावित कर रहे हैं। समुद्रों में फेंका गया कचरा समुद्री जीवों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है और इसका असर धीरे धीरे पूरे पर्यावरण पर दिखाई देने लगा है। ऐसे में ज़रूरत है कि हम प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और छोटे छोटे प्रयासों से महासागरों को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दें। दोस्तों, प्रकृति की रक्षा केवल एक जिम्मेदारी नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए महासागरों को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखें, क्योंकि यही महासागर हमारे जीवन को संतुलित और धरती को सुंदर बनाए रखते हैं।

दोस्तों, आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, एक एहसास है, एक ऐसी आवाज़ का उत्सव जिसने पीढ़ियों को जोड़ा है। जी हाँ, आज आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 90 साल, यानी वो सफ़र जहाँ किसी ने पहली बार रेडियो घुमाकर आवाज़ खोजी थी, जहाँ सुबह की शुरुआत ये आकाशवाणी है से होती थी, जहाँ खेतों में काम करते किसान, रात में पढ़ते बच्चे, सफ़र करते मुसाफिर और अकेले बैठे बुजुर्ग सबके साथी थे आकाशवाणी। कभी गीतों ने दिल बहलाया, कभी समाचारों ने देश को जोड़े रखा, तो कभी एक अनजानी आरजे की मुस्कान भरी आवाज़ ने दिन खूबसूरत बना दिया। FM सुनने वालों के लिए रेडियो सिर्फ मशीन नहीं, एक आदत है, एक ऐसा दोस्त जो बिना देखे भी हमेशा साथ रहता है। आज मोबाइल का दौर है, वीडियो और सोशल मीडिया का शोर है, लेकिन फिर भी जब रेडियो पर कोई पुराना गीत बजता है तो दिल आज भी वहीं ठहर जाता है। आकाशवाणी ने सिर्फ कार्यक्रम नहीं दिए, उन्होंने यादें दी हैं, भावनाएं दी हैं और सबसे बड़ी बात, हर आवाज़ को अपनापन दिया है। तो आइए इन 90 सुनहरे वर्षों को सलाम करें, उन तमाम आवाज़ों को धन्यवाद कहें जिन्होंने हमारी सुबहों को जगाया, हमारी शामों को सजाया और हमारे जीवन में संगीत घोला है। ये आकाशवाणी है, ये सिर्फ वाक्य नहीं, भारत की धड़कन है। आप सभी को आकाशवाणी के 90 वर्षों पर हार्दिक शुभकामनाएं। यूं ही हर दिल तक पहुंचती रहे आकाशवाणी की आवाज़, यूं ही हर सफ़र का साथी बना रहे अपना रेडियो।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, आज के बदलते दौर में हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सम्मानजनक रोजगार मिले और वो आत्मनिर्भर बन सके। इसलिए सरकार समय समय पर ऐसी योजनाएं लागू करती रहती हैं जो लोगों को रोजगार और बेहतर जीवन देने में मदद करें। इसी उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री द्वारा नए 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबों के लिए स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार योजना शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब बेरोजगार और जरूरतमंद लोगों को रोजगार के अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अंतर्गत लोगों को स्वरोजगार के लिए आसान ऋण, कौशल विकास प्रशिक्षण और छोटे व्यवसाय शुरू करने में सहायता दी जाती है ताकि वे अपनी मेहनत और हुनर के बल पर आगे बढ़ सके। साथ ही मजदूरी रोजगार योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को काम देकर उनकी आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं से गाँवों और छोटे शहरों में रोजगार के नए अवसर बढ़ रहे हैं और लोग का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। ये योजना केवल रोजगार ही नहीं बल्कि लोगों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना भी विकसित करती है जो देश के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इस योजना की अधिक जानकारी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के फेसबुक पेज पर युववाणी पोस्ट रेडियो विद सेल्फी के माध्यम से हमारे एक श्रोता का कमेंट प्राप्त हुआ है। इनका नाम वेद प्रकाश मिड्ढा है जो गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं। लीजिए सुनिए उनकी पसंद का गीत।

दोस्तों, हमारा आज का सफर बस यहीं तक का था। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई बात, नई जानकारी के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्ती करते रहिए। दोस्तों, आपको नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के ठीक 6 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। सबरस की पहली प्रस्तुति शुभा मुद्गल की आवाज़ में।

सबरस के इस कार्यक्रम में शुभा मुद्गल की आवाज़ में अभी आपने सुना इस एल्बम सॉन्ग को। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, सुनवाते हैं अगली प्रस्तुति जगजीत सिंह के स्वर में।

जगजीत सिंह के स्वर में अभी आपने सुना इस गजल को। आइए श्रोताओं, सबरस के इस कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति आपको सुनवाते हैं भंवरलाल राव और साथियों की आवाजों में।

भंवरलाल राव और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना इस गीत को। इसके साथ ही श्रोताओं, सबरस का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 102.9 MHz पर हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:15 में है अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का भाग 212।

चित्रकूट पहुंचकर श्री राम को देखते ही भरत हे नाथ रक्षा कीजिए कहकर रूखे सूखे बांस की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत और राम का इस प्रकार का हृदय स्पर्शी मिलन देखकर उपस्थित लोगों को अपनी सुधि न रही। कैसे वर्णन किया जाए इस प्रेम मिलन का, जो कवि के कर्म मन और वाणी तीनों की पहुंच से परे है। भरत श्री राम का प्रेम ऐसा अगम्य है जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का मन भी नहीं पहुंच सकता। संभवतः इसी कारण दोनों भाइयों का मिलन देख

देवता इस आशंका से भयभीत हो गए कि श्री राम को अयोध्या लिवा ले जाने में भरत सफल न हो जाएं। किंतु देवगुरु बृहस्पति के समझाने पर उनका भय जाता रहा और उन्होंने भ्रातृप्रेम के इस अभूतपूर्व दृश्य पर पुष्प वर्षा की। श्री राम सहज प्रेम से शत्रुघ्न से मिले और फिर केवट निषाद राज से भरत और लक्ष्मण और फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का मिलन हुआ। भरत और लक्ष्मण ने सीता के चरणों की रज अपने माथे पर धारण की। स्नेह और शील का ये अद्भुत दृश्य है जहां उपस्थित सभी लोग प्रेम और आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। कोई न कुछ कहता है न ही कुछ पूछता है। तब निषादराज बोले, हे नाथ, कुलगुरु वशिष्ठ जी के साथ सभी माताएं, नगर निवासी, सेवकगण, सेनापति, मंत्री सभी आपके वियोग में व्याकुल यहां आए हैं।

श्रोताओं, अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस गान का भाग 212। गायन स्वर रहा श्रीकांत पारगांवकर का और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ की मीरा चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.9 MHz पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। हमारे मीरा चैनल से प्रसारित कार्यक्रमों के अंतर्गत शाम 7 बजे आप सुनेंगे वसुधा वाणी एपिसोड 4 और आज का विषय रहेगा जैव विविधता। 7:45 पर श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में काव्य गोष्ठी का प्रसारण किया जाएगा। हमारे दिल्ली केंद्र से श्रोता सुनेंगे शाम 7:10 पर केंद्रीय सरकार की 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का भाग 8। हमारा आज का विषय रहेगा किसान

सशक्तिकरण कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव से बातचीत। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष विशेष वार्तालाप का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। इसी के साथ श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.9 MHz पर।

होता है। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ की मीरा चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:27 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में 6:30 पर श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनवाए जाएंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
2: अच्छा हाँ, और सुनो एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
2: तुम्हारी वो दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: हम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
4: आगे सैलरी? नहीं झुमके
5: ना, पहले बचत,
4: पहले झुमके।
5: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
4: लेकिन झुमकों का क्या?
5: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: RBI कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।
9: हर घर

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हितों की विकास यात्रा बताया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में अब तक 4 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया पूरी, 3 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। और आकाशवाणी की गौरवशाली सेवा के 90 वर्ष पूरे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ 98% आबादी तक पहुंच।

0: कार्यकाल को गरीबों के हित की विकास यात्रा बताया है। आज श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना, किंतु इस विकास यात्रा के केंद्र में गरीब और वंचित वर्ग का कल्याण रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। श्री मोदी ने कहा कि गरीबों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने अहम भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि डबल इंजन सरकार प्रदेश में जनहित योजनाओं के जरिए सेवा कर रही है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में विधायक दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंतिम व्यक्ति के विकास का काम सुनिश्चित किया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य में 5 जून से 21 जून तक 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह के प्रथम चरण में सशस्त्र बलों और सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित कर रही हैं। राष्ट्रपति भवन में हो रहे इस समारोह में अदम्य साहस और समर्पण का प्रदर्शन करने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए जा रहे हैं। समारोह में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करने जा रहा है। ये बैठक कल से 13 जून तक इंदौर में होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की ये बैठक भारत की अध्यक्षता में हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि इसमें मुख्य रूप से किसानों की आमदनी, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन आवासों में नल से जल, रसोई गैस और शौचालय की आवश्यक बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। उन्होंने इसे लाखों गरीब परिवारों के लिए बड़ा बदलाव बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 12 साल में देश में समावेशी विकास को नई गति मिली है। इंडिया गठबंधन की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। इसमें विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और NCP शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले बैठक में शामिल हुई। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आज शहर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत करीब 125 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में 3,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। वहीं कई क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद की गईं। जयपुर के संभागीय आयुक्त वी सरवन कुमार के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं जल्द बहाल होने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो

समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के

0: देख सकते हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया की समय सीमा आज समाप्त हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि 3 प्रत्याशियों ने 9 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं। नाम वापसी की आखिरी तारीख 11 जून है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर सतीश पूनिया और डॉक्टर अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा प्रत्याशियों ने आज अपने नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण के समक्ष दाखिल किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में श्री पूनिया ने उन पर भरोसा करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया।
1: लोकतंत्र के उच्च सदन में जाने का अवसर मिलेगा। जितनी भी बार पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी, पार्टी ने मुझे भरोसा देके युवा मोर्चे के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते उस कालखंड में जो अवसर दिया वो पार्टी ने दिया, जिससे मुझे प्रतिष्ठा मिली, नाम मिला और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते, एक बार विधायक के नाते पार्टी ने मुझे भरपूर अवसर दिया।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि इस साल 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए नंबरों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की विंडो 2 से 7 जून तक पूरी तरह कार्यरत थी। इस दौरान 1,60,000 से अधिक उम्मीदवारों ने 3,08,000 से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं के लिए आवेदन किया। CBSE ने मीडिया पर इस पोर्टल के काम नहीं करने को लेकर चल रही कुछ खबरों पर भी स्थिति स्पष्ट की है। बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों का भ्रम दूर करते हुए बताया कि जिन छात्रों के स्क्रीन पर रोल नंबर नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है, इसका कारण ये है कि उन्होंने इस प्रक्रिया के पहले चरण यानी आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए आवेदन नहीं किया था। बोर्ड ने कहा कि नियम के मुताबिक केवल वही छात्र अगले चरण के लिए पात्र होते हैं जिन्होंने पहले चरण में अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई किया था। राज्य में सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 28 जून तक रहेंगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ग्रीष्मावकाश की अवधि बढ़ाकर 43 दिन कर दी गई है। पहले ये 17 मई से 20 जून तक 35 दिनों की थी। शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव आलोक जैन ने आज इस बारे में एक आदेश जारी किया। इसके अनुसार संस्था प्रधान की ओर से एक अवकाश के स्थान पर अब 2 दिन की छुट्टी दी जा सकेगी। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज के ही दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। पेश है न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी डॉक्टर सालेहा गाजी की रिपोर्ट।
2: 8 जून का दिन देश की सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। साल 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्रों के माध्यम से 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए दुनिया के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
0: राज्य के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियों में आज कमी देखने को मिली और मौसम का मिजाज मिला जुला रहा। एक ओर जहां श्रीगंगानगर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं पुष्कर में करीब 5 सेंटीमीटर बरसात हुई। इसके अलावा बीते 24 घंटों में अजमेर, बूंदी, कोटा, टोंक, झुंझुनू और भरतपुर में पानी बरसा। जैसलमेर में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज से 11 जून तक आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार जताए हैं। इस दौरान पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान में पारे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का उछाल आने की संभावना है। 11 जून से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आंधी बारिश की गतिविधियां एक बार फिर जोर पकड़ सकती हैं। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में काउंटडाउन कार्यक्रम जारी हैं। इसके तहत लोगों में स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित

0: करने के लिए रोजाना सामूहिक योग और प्राणायाम सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में युवा कार्य और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने लोगों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है।
1: जीवन के अंदर अपने आप को फिट रखना ये खुद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जब हम खुद स्वस्थ रखते हैं शरीर से और मन से मजबूत होते हैं तो परिवार मजबूत होता है, उससे समाज और राष्ट्र मजबूत होता है। चाहे हम पैदल चलें, चाहे हम सीढ़ियां चढ़ें, चाहे हम नियमित रूप से खाना खाएं, ऑयल कम करें अपने खाने के अंदर, ये सारी चीजें एक फिट इंडिया बनाता है, एक मजबूत भारत बनाता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को गरीबों के हितों की विकास यात्रा बताया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में अब तक 4 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों की नामांकन प्रक्रिया पूरी, 3 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। और आकाशवाणी की गौरवशाली सेवा के 90 वर्ष पूरे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ 98% आबादी तक पहुंच। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की गईं। 25 मई से शुरू हुआ ये अभियान 5 जून को पर्यावरण दिवस तक चलाया गया। इस दौरान जल संरचनाओं की साफ सफाई, जल संरक्षण के कार्य, मरम्मत और पुनरुद्धार संबंधी कामों के साथ ही श्रमदान और जागरूकता गतिविधियां रखी गईं। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने भी पौधरोपण कर पक्षियों के लिए परिंडे बांधे। उन्होंने जाखम और भंवर सेमला बांध का निरीक्षण कर जल संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान जिला मुख्यालय पर मीडिया राउंड टेबल आयोजित की गई। जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों ने परिंडे बांधे और पौधरोपण किया। जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर जिला प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से मीडिया एक्सपोजर विजिट का भी आयोजन रखा गया। अभियान का समापन समारोह पूर्व मंत्री और निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी की उपस्थिति में रखा गया। माही बजाज सागर बांध से पीपल खूट अपर हाई लेवल बहुउद्देशीय कैनाल परियोजना का निर्माण कार्य इन दिनों अंतिम चरण में है। 1565 करोड़ रुपए की लागत की इस अनूठी परियोजना में बिना भूमि अधिग्रहित किए पाइपलाइन डाली गई है। इसके जरिए जमीन से 3 से 4 मीटर की गहराई पर पानी बहेगा और ऊपर किसान खेती करेंगे। परियोजना के पूरा होने से प्रतापगढ़ सहित उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिलों के किसान लाभान्वित होंगे। लक्ष्य हासिल होने से अगली रबी फसल के लिए 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। वहीं जल जीवन मिशन के लिए जाखम बांध तक पानी पहुंचने से प्रतापगढ़ शहर और उसके 554 गांवों के अलावा उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के 1899 गांवों को पानी मिलेगा। जिले के करजू और रावतपुरा गांव में इन दिनों किसानों ने आधुनिक मल्चिंग तकनीक अपनाकर नकदी फसलों की खेती शुरू की है। इस तकनीक से टमाटर और मिर्च सहित अन्य नकदी फसलों के पौधे लगाए जा रहे हैं। इससे किसानों को गर्मी के मौसम में बोई जा रही फसलों से अच्छी आमदनी की उम्मीद है। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने बीते दिनों बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 70 लाख रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया। इस साल अब तक जिले में ये 7वीं बड़ी कार्रवाई है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि इससे पहले भी एक अन्य तस्कर की करीब 3.25 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां फ्रीज की जा चुकी हैं। पुलिस ने अभियान के तहत नौगांव के देवलदी गांव स्थित चारागाह से भी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाए। जिला कलेक्टर ने बीते दिनों ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और जल संरक्षण तथा पौधरोपण कार्यों का निरीक्षण किया। इधर जिला स्तरीय बैंकिंग समीक्षा समिति की आयोजित हुई बैठक में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के उन्होंने निर्देश दिए। सांसद सीपी जोशी ने दिशा समिति की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा भी मौजूद रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने पात्र लोगों को सरकारी

0: योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस बार अधिक मास के चलते जिले भर में धार्मिक गतिविधियां चरम पर रहीं। मंदिरों और आश्रमों में अनुष्ठान हुए, अक्षय तृतीया पर धार्मिक स्नान और दान पुण्य किए गए। आदिवासी बाहुल्य प्रतापगढ़ में आखा तीज के अबूझ सावे पर संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। वहीं मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद उल अजहा का त्यौहार पारंपरिक रूप से मनाया। ईद की नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की गई। जिले में बीते दिनों मौसम ने कई रंग दिखाए, कभी आंधी तो कभी बारिश की गतिविधियों ने जिलेवासियों को परेशान किया। वहीं बढ़ते तापमान और तपन ने भी लोगों को व्याकुल किए रखा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आई बारिश ने गर्मी का असर कम किया। इसके साथ ही प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लारला 12 साल रा कामकाज न गरीबां रा भलारी विकास यात्रा बतायो। देश में प्रधानमंत्री आवास योजना रा तहत हाल ताई 4 करोड़ बत्ता मकान बनाई चिया। प्रदेश हूँ राज्यसभा री 3 सीटा माथ चुनाव सारू पर्चा दाखिल करन रो काम पूरो थयो। 3 उम्मीदवार नाम पाना दाखिल कीना। अर आकाशवाणी री गौरवशाली सेवा रा 90 साल पूरा भया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय रा आदर्श सागे 98% आबादी ताई पहुंच। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लारला 12 साल रा कामकाज ने गरीबा रा भलारी विकास यात्रा बतायो है। श्री मोदी कहो के इन दौरान देश कई बदलावां रो गवाह बन्यो। प्रधानमंत्री कहो के जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत सरीखा हर जतन रो मकसद जनता सारू पूरा मानू जीवनू तय करनो है। श्री मोदी कहो के गरीब तबकारी जनता री जिंदगी बेहतर बनावण माए प्रौद्योगिकी की खास काम कीनो है।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ये कहो के वानी डबल इंजन सरकार प्रदेश में जनता रा भलारी योजनावां रे जरिए सेवा कर रही है। वे आज विधानसभा परिसर में राखी जी विधायक दल री मीटिंग में बोल रहा हा। श्री शर्मा कहो के प्रदेश में आखिरी छोर ताई रा हर एक जनारो विकास तय करियो चाहियो है। ध्यान जोग है के राज्य में 5-21 जून ताई 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के अभियान चलायो जा रियो है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह रा पहला दौर में सशस्त्र बलां रा और सुरक्षा कर्मचारियों रो मान कर रही है। जबरदस्त हिम्मत और समर्पण रो दर्शाव करण वाला जवाना ने इन कार्यक्रम में वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण नवाजा जा रहा है। जलसा में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई हस्तियां शामिल है। ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स रा सदस्य देशां रा कृषि मंत्रियां री मीटिंग काल मध्य प्रदेश रा इंदौर में शुरू फैला। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका आ जानकारी दीनी। वे कहो के 13 जून ताई भेवन वाली मीटिंग री सदारत भारत करेला। श्री चौहान कहो के मीटिंग में किसाना री आमदनी, काम धंधा, खेतीबाड़ी सारू कर्ज और बाजार ताई पहुंच बधावन रा जतन रे बारा में चर्चा करी जावेला।
3: खाद्य सुरक्षा पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे

0: पूरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: देश में प्रधानमंत्री आवास योजना रा तहत हाल तक 4 करोड़ बत्ता मकान बनाई चुका है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आ जानकारी दीनी। वे बतायो के आम मकाना में नल, पानी, रसोई गैस और शौचालय रा बुनियादी सुविधा मुहैया कराई चिया है। वे इनने गरीब परिवारों सारू मोटा बदलाव बतायो। केंद्रीय मंत्री कहो के लाडला 12 साल में देश में सगला रो विकास और तेजी उम्फियो है। विपक्षी पार्टियां रा इंडिया गठबंधन री आज नई दिल्ली में मीटिंग हुई। इनमाय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस रा आला नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी रा अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस री अध्यक्ष ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रा नेता उमर अब्दुल्ला और एनसीपी शरद पवार गुट री सुप्रिया सुले शामिल थिया। जयपुर विकास प्राधिकरण री ओर आज जयपुर शहर में गैर कानूनी कब्जा हटावन री मोटी कार्रवाई करी जी। नंदपुरी अंडरपास रेलवे लेन रे बराबर री सड़क ने 80 फीट चौड़ी करण सारू चलाई जिया। ई अभियान रा तहत 125 बत्ता गैर कानूनी तौर करी जिया बनाई चुनाई रा काम हटाई जिया। ई दौरान एहतियातन 3000 बत्ता पुलिस वाला तैनात करी जिया, जबकि कई हल्का माए मोबाइल और इंटरनेट जुड़ी सेवाएं बंद रखी जी। जयपुर रा संभागीय आयुक्त वी सरवन कुमार का नियम जारी हुकम रे मुजब बेगोई आ हल्का माए इंटरनेट पाछो चालन दी संभावना है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव सारू प्रदेश 3 सीटा माथे चुनाव बाबत पर्चा दाखिल करण री मियाद आज पूरी फेगी। राज्य रा मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन बतायो के प्रदेश 3 उम्मीदवार 9 पर्चा दाखिल कीना। भारतीय जनता पार्टी री ओर डॉक्टर सतीश पूनिया और डॉक्टर अलका गुर्जर आज नाम पाना, रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण सामी पेश कीना। ये मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, अर्जनता रा और कई नुमाइंदा मौजूद हा। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था कांशी पूनिया वा माथे भरोसो करण सारू भाजपा रा केंद्रीय नेतृत्व रो आभार जतायो।
2: लोकतंत्र के उच्च सदन में जाने का अवसर मिलेगा, जितनी भी बार पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी, पार्टी ने मुझे भरोसा दे के युवा मोर्चे के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते उस कालखंड में जो अवसर दिया वो पार्टी ने दिया, जिससे मुझे प्रतिष्ठा मिली, नाम मिला, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते, एक बार विधायक के नाते, पार्टी ने मुझे भरपूर अवसर दिया।
1: कांग्रेस पार्टी री ओर नीरज डांगी पहले पर्चो दाखिल कर चुका है। नाम 11 जून तक पाछा लिया जा सके है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ई साल 12वीं कक्षा री परीक्षा सारू नंबरन रो सत्यापन करण और कॉपियां ओजू जंचावन सारू अर्जी देवन री विंडो 2-7 जून ताई लगातार चालते रहवन रो दावो कीनो है। बोर्ड रे मुजब इन दौरान 160,000 बत्ता विद्यार्थी 308,000 बत्ती कॉपियां सारू अर्जी दीनी। CBSE भ्रम दूर करता थका बतायो के रोल नंबर नॉट फाउंड री जानकारी रो कारण ई प्रक्रिया रा पहला दौर माए कॉपी री फोटोकॉपी लेवन री अर्जी नी देवनु हो। बोर्ड रे मुजब नियमा रे मुताबिक कॉपी री स्कैन कॉपी हासिल करण सारू अर्जी देवन वाला ही अगला दौर सारू पात्र वे है। राज्य री सरकारी स्कूलां माए गर्मी री छुट्टियां 28 जून ताई रहवेला। शिक्षा विभाग रा शासन उप सचिव आलोक जैन री ओर जारी हुकम रे मुजब गर्मी री छुट्टियां 17 मई 20 जून ताई 35 दिन री करी जी ही, जो अब बधार 43 दिन री कर दी री जी है। हुकम रे मुजब संस्था प्रधान री ओर एक री बजाय अब 2 दिन री छुट्टी दी जा सकेला। आज आकाशवाणी रा गौरवशाली 90 साल पूरा फेंक्या। साल 1936 में आज ही रा दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने ऑल इंडिया रेडियो नाम दियो चियो हो। पेश है समाचार कक्ष डॉक्टर सालेहा गाजी री रपट।
3: साल 1956 माए इनरो आकाशवाणी नाम दियो जियो आज देश भर माए आकाशवाणी रा 551

0: वनवा केंद्रा रे जरिए 23 भाषावा और 146 बोलियां माए कार्यक्रम प्रसारित करिया जावे है जो देश री 98% आबादी ताई पूगे है। इस आगे ही आकाशवाणी रो विदेश सेवा विभाग दुनिया रा 100 देशा माए भारत री आवाज पुगारियो है। आकाशवाणी रो समाचार सेवा प्रभाग बहुजन हिताए बहुजन सुखाए रा आदर्श सागे रेडिया प्रसारण रा सब ऊंचा मानकारी पालना करता थका 2400 घंटा सगली भाषावा और बोलिया माए समाचार और समाचारों जुड़िया कार्यक्रम प्रसारित करे है।
1: अरबे मौसम राज्य रो कई हलका माए आंधी बारिश री हलचल आज थोड़ी कम रही। इन कारण श्री गंगानगर माए पारो 44 डिग्री सेल्सियस ताई पूग गयो। जैसलमेर माए जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। दूजी कानी अजमेर कन्ने पुष्कर माए करीब 5 सेंटीमीटर बरसात हुई। लाडला 24 घंटा माए अजमेर बूंदी कोटा टोंक झुंझुनू और भरतपुर माए में बरसियो। मौसम विभाग 11 जून ताई आंधी बारिश जुड़ी हलचल माए कमी रा आसार जताया है। इन दौरान उगनी और उत्तराद उगनी हलका रे अलावा मौसम सुखो रेवन री संभावना है। राज्य रा आतुनी हलका माए पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चटबारा आसार है। 21 जून न मनाया जावन वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए प्रदेश भर माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम चल रहा है। इन तेत जीवन रा स्वस्थ तरीका न बधाओ देवन रा मकसद रोजिना योग और प्राणायाम रा सत्र रखा जा रहा है। युवा कार्य और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जनताओं आ कार्यक्रम माए भागीदारी करण री अरज कीनी है।
2: जीवन के अंदर अपने आप को फिट रखना ये खुद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जब हम खुद स्वस्थ रखते हैं शरीर से और मन से मजबूत होते हैं तो परिवार मजबूत होता है, उससे समाज और राष्ट्र मजबूत होता है।
1: आखिर माए खास समाचार एक फेरु सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार रा लाडला 12 साल रा कामकाज न गरीबा रा भलारी विकास यात्रा बतायो। देश माए प्रधानमंत्री आवास योजना रा तेत हाल ताई 4 करोड़ 32 मकान बनाई चिया। प्रदेश हूँ राज्य सभा री 3 सीटा माथा चुनाव सारू पर्चा दाखिल करण रो काम पूरो भियो। 3 उम्मीदवार नाम पाना दाखिल कीना। और आकाशवाणी री गौरवशाली सेवा रा 90 साल पूरा भिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय रा आदर्श सागे 98% आबादी ताई पहुंच। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है वसुधा वाणी एपिसोड 4।
4: आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ प्रस्तुत करता है पर्यावरण से जुड़ा कार्यक्रम वसुधा वाणी।
5: अयम निजम परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधेव कुटुंबकम।
4: ये तेरा है ये मेरा है ऐसा वे लोग सोचते हैं जिनका मन छोटा होता है। जिनका मन बड़ा होता है उनके लिए तो सारा विश्व ही परिवार है। वसुधा वाणी की कड़ी में आज जानते हैं जैव विविधता क्या है और इसका होना क्यों जरूरी है।
6: जैव विविधता का अर्थ है जीवों की विविधता। इसके अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त पादप और जंतु शामिल किए जाते हैं। पृथ्वी पर पादप व जंतुओं की विभिन्न एवं विविध जातियां पाई जाती हैं। यह कह सकते हैं कि इनकी संख्या एवं वितरण जितना अधिक होगा जैव विविधता उतनी ही अच्छी और समृद्ध होगी। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध हैं। इसी विविधता के कारण हम तरह तरह के अनाज फल सब्जियां, कपड़े ईंधन लकड़ी औषधियां और कई तरह के पादप एवं जंतु उत्पाद प्राप्त करते हैं। बायोडाइवर्सिटी को 3 भागों में बांटा गया है, आनुवांशिकी विविधता, प्रजातीय विविधता एवं परितंत्र विविधता। हमारे देश भारत में अकेले चावल की ही 50,000 से अधिक किस्में पाई जाती है जो आनुवांशिक रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं। ऐसी ही कई विविधताओं से भरे हुए भारत में संपूर्ण

0: विश्व की 10% से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। कहा गया है जीवो जीवस्य जीवनम, अर्थात जीव ही जीव के लिए जीवन है। किसी भी परितंत्र में पादप व जंतु परस्पर एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला द्वारा जुड़े रहते हैं। पादपों और जंतुओं की जितनी अधिक विविधता होगी, परितंत्र उतना ही स्थायी और दीर्घकालिक होगा। वनों की कटाई जैव विविधता को कम करने का सबसे मुख्य कारण है। वर्तमान में जो हम पृथ्वी को देख रहे हैं, उसका जैविक धन करोड़ों वर्षों के विकास का ही परिणाम है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, विदेशी मूल की वनस्पतियों का आक्रमण, जैसे कि गाजर घास, कुर्री, काबुली कीकर, जलकुंभी आदि के अत्यधिक फैलाव ने जैव विविधता का क्षरण किया है। दुर्भाग्य से जलवायु परिवर्तन के साथ साथ नीतियों के क्रियान्वयन के कारण भी कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। कुछ पादप और जंतु तो वातावरण में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। इसी कारण विश्व में पौधों की लगभग 60,000 और जंतुओं की 2,000 प्रजातियां विलुप्ति की ओर बढ़ रही है। साथ ही प्लास्टिक अपशिष्ट के कुप्रबंधन से जलीय जीवन भी खतरे में पड़ गया है। मानवीय गतिविधियों से विशेषकर द्वीपों पर 50% से अधिक प्राकृतिक आवास नष्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ खनन, पशुपालन, अतिचारण, कृषि, रेलवे लाइन के विस्तार, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की स्थापना एवं रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग ने भी जैव विविधता को प्रभावित किया है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए हमारी वैदिक संस्कृति कहती है सर्वो वैय तत्र जीवति गौरश्वः पुरुषः पशुः, अर्थात ईश्वर सभी जीवों को जीने का समान अधिकार प्रदान करता है। हमारे क्रियाकलाप और जीवन शैली ऐसी हो जो पर्यावरण के अनुकूल हो। संतुलित पर्यावरण के लिए वन्य जीवों का संरक्षण अति आवश्यक हो गया है। यह दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला, स्वस्थानीय संरक्षण। इसके अंतर्गत उनके प्राकृतिक स्थानों पर ही उनका संरक्षण किया जाता है। दूसरा है बहिर्स्थानीय संरक्षण। इसमें मूल स्थान से दूर, जैसे कि चिड़ियाघर या कृत्रिम स्थान पर संरक्षण दिया जाता है। हमें चाहिए कि हम जैव विविधता संरक्षण की गौरवशाली एवं समृद्ध परंपरा का निर्वहन करें। आइए संकल्प लें कि अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं और विविधताओं से भरी इस धरती को बचाएं, क्योंकि एक बड़ा पेड़ लंगूरों, मोरों, पशु पक्षियों और न जाने कितने कीड़े मकोड़ों का आश्रय स्थल होता है।
1: वसुधा वाणी की कड़ी में आज हमने जाना जैव विविधता क्या है और इसका होना क्यों जरूरी है। जानकारी दे रही थी निधि शर्मा। आज की वसुधा वाणी में इतना ही। आज्ञा दें, नमस्कार।
2: अयम निजम परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधेव कुटुंबकम।
1: ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसा वे लोग सोचते हैं जिनका मन छोटा होता है। जिनका मन बड़ा होता है उनके लिए तो सारा विश्व ही परिवार है।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना वसुधा वाणी का एपिसोड 4। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ की मीरा चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.9 MHz पर।

0: at 90.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे केंद्रीय सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का भाग 8। हमारा आज का विषय है किसान सशक्तिकरण, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव से बातचीत। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: This is Akashvani. In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants are Vinod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, KV Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator is Sonu Sood.
1: Ye Akashvani hai. Prastut hai vishesh shrinkhala. इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत सरकार में एमएसपी और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद व प्रभुदत्त मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: Over the past 12 years, empowering India's Andatas, agricultural policy has widened its scope beyond welfare support to focus on structural and sustainable reforms which have strengthened productivity, income security, market access, modern infrastructure and institutional resilience. Record agricultural output, smart irrigation, easier credit, stronger insurance.

0: hard through the ages to make India food secure. In fact, just recently I was talking to High Commissioner of African Nation, South Africa. He was mentioning in the context of the India-Africa Forum Summit, which of course could not help place, that the entire India, the kind of food basket India has, that not only produces for its own 1.4 billion, but also exports. So he said it's much more what the population of Africa. I mean, so they said we're looking to countries like India, which have. So this tells you the long journey our farmers have made in this country, and in the last decade, how much of extra effort is being put in by the government or across the pillars Mr. Anand mentioned in particular, because they are multi-pronged. As far as you said, what are the three takeaways? I mean, there could be many for different people, but I think some of the logistical issues that have been problematic for this country is to ensure irrigation. We are largely still rain-fed irrigation, so the government has been addressing this in multiple, including micro-irrigation, and one of the things is per drop more crop, which is talking about micro-irrigation drip. And this has been, again, going on for almost a little over two decades, because I remember way back in the year 2000, when Mr. Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister, he sent a mission under then, I think, Mr. Chandrababu Naidu to work on this. So it has been a constant work in progress back there. I think that one of the technological-driven aspect is the Namo Drone DV, which is now using modern technology, as Mr. Anand mentioned about ENAM, using the technology for market access. Now you're using the drone technology by training women to operate as a pesticides, help them in modern farming.
1: Yes.
0: Lowering the cost, because agriculture, we know, remains a labor-intensive sector. Yes. And increasingly, the hands get costly, because when you employ more people, obviously the farm cost goes. So government is mix and match kind of a thing, how to use technology and how to bring a better thing. So I think these are a couple of issues, but I also believe the larger aspect is the Agriculture Infrastructure Fund, which has a massive outlay to catalyze the creation of post-harvest management infrastructure, cold chains, community farming. So these are still progresses, but these are sectoral reforms, I mean, reforms within the sector that the government is looking at the large, the problems that have been affecting of this particular sector.
1: ओके मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं. जो मैंने अभी मिस्टर आनंद, मिस्टर प्रसाद से पूछा, वही प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से किसानों का सशक्तिकरण हुआ है, हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसका मजबूतीकरण हुआ है, जो हम देख रहे हैं प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी फिगर्स में, आप हमें बता सकते हैं कि कौन से आप ऐसे प्रमुख 2-3 इनिशिएटिव्स जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण आंकते हैं, जो उठाए गए हैं इस दौरान एग्रीकल्चरल पॉलिसी के डायरेक्शन?
2: एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो 12 साल में सरकार ने उठाया था, वो है एमएसपी का फिक्सेशन. पहले एमएसपी का फिक्सेशन सारे फैक्टर्स को आधार करके लिया जाता था, जिसमें इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है, डोमेस्टिक प्राइसेस क्या है, उसमें इन्फ्लेशन कितना है, उसका डिमांड सप्लाई सब कुछ देखा जाता था. आज भी वही फैक्टर जरूर है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया 2018 में कि एमएसपी जो होगा वो मिनिमम 50% प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा. और 2018 से पहले आप देख लीजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो लोग बताते थे कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा गवर्नमेंट फिक्स कर ही नहीं सकता
1: जी,
2: क्योंकि पूरा बोझ सरकार के ऊपर आएगा, सरकार को खरीदना पड़ेगा. लेकिन 2018 में जब लिया, आज देख लीजिए पॉसिबल है सबके सामने. 8 साल हो गया, सरकार हर साल मिनिमम 50% एंश्योर करके एमएसपी डिक्लेयर कर रही है. शुरुआत में जरूर जो मार्केट प्राइस था थोड़ा सा ज्यादा एमएसपी से नीचे बिका, लेकिन आज जो देखिएगा, ये खरीफ और रबी सीजन गया है, इसमें जो एमएसपी से नीचे बिक भी रहा है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है. पहले तो 30% तक शुरुआत में थी, क्योंकि मार्केट प्राइस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन आज मार्केट प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है, फार्मर को बेटर प्राइस मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है. कुछ कुछ चीजों में एमएसपी नहीं मिल रहा है, ज्यादातर इस साल की बात करूं तो कई सारे फसल में एमएसपी से ऊपर मिला है. और मस्टर्ड का देख लीजिए, अभी मस्टर्ड का सीजन है, एमएसपी से ऊपर है. चना का देख लीजिए, चना ऊपर है. व्हीट का तो सरकार खुद ही 40-45% प्रोक्योरमेंट कर रही है एमएसपी पे, तो मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर रहता है. इस साल कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा, मतलब 50-100 रुपए नीचे बिकने की रिपोर्ट आई थी, लेकिन आज वहां पे भी ऊपर आ गया है प्राइस, मार्केट प्राइस. तो लगभग सारे जो रवि क्रॉप्स है वो एमएसपी से ऊपर है या एमएसपी के बराबर के पोजीशन में है.
1: तो एक फेयर प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को.
2: बिल्कुल, बढ़ोतरी हुई है, काफी अच्छी बढ़ोतरी, क्योंकि

0: 50% जब A2 प्लस FL के आधार पे दिए हैं, वो एक बहुत बड़ा कदम था उस समय की देखा जाएगा तो। और उसके अलावा जो मैं गिनाऊंगा तो इन्होंने फसल बीमा योजना शुरू किए, इन्होंने अभी 2 साल पहले एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया, पल्सेस मिशन लॉन्च किए और बहुत सारे चीजें इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश किए। एक रिफॉर्म जरूर है कि इन्होंने कोशिश किए थे जो 3 फार्म लॉज लेके आए थे कृषि कानून, जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है, फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, नहीं माने तो फार्मर को जबरदस्ती थोप नहीं दिया। जो भी चीजें हैं फार्मर जो चीज यस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस तभी होगा जब आप फार्मर को साथ लेके चलेंगे कोई भी स्कीम हो।
1: मिस्टर विनोद आनंद, कमिंग टू यू, आप जिस कमेटी के मेंबर हैं सरकार की, उसमें MSP पर फैसले होते हैं, उस पर बातचीत होती है, तो आप हमें बता सकते हैं कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो टूल है सरकार के पास, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को MSP के माध्यम से, और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू हैं उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे।
2: जी देखिए, 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल MSP वैल्यू में, अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में जो 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, वो 26.3 यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने MSP के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेज हैं उसको हम मीट कर पाए। इसलिए जैसे मैं आप मोटा अनाज जो है, जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा 163% यानी 163% 1530 रुपए जो ज्वार की MSP थी, अब वो 4023 रुपए हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि MSP को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही, बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है
1: जी।
2: क्रेडिट की व्यवस्था में KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास किसानों के पास KCC अकाउंट है। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ है। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में, खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में, इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को DBT कर देते हैं, हमारे पास DBT का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है इससे यह दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए, खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने के बाद, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कभी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना और वेयर हाउस वो नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं हो करके स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हो जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसका मैं भी सदस्य हूं, जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है, और आप आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ना सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्योरमेंट में और एमएसपी में एक गुणोत्तर वृद्धि में, बल्कि जो सबसे ज्यादा

0: हैं लोगों को मिल रही है, वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब में एक आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। और खास करके हम बड़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे दुनिया के तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था,
1: जी
0: बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी, उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहाँ खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो, प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में ऐसी
1: हाँ
0: नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
1: मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो

0: की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरुआत होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है, 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2 लाख करोड़ रुपीज से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
1: सुनील जी, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहे हैं और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान और कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है, तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए एक मदद के लिए कि जैसे आपने साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के डीबीटी यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसके खाते में पैसे हैं, अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं, तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको। और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं, जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका, तो ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
0: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे, तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है, ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
1: जी सुनिए, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाड़ लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखी होंगी, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल में नुकसान हुआ है, तो ऐसे में एक किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से हुए तो करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने 25 दिसंबर तक इसमें फायदा उठाया है। सोनू जी
0: जी बिल्कुल, एंड मिस्टर आनंद कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन 2.5 times इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी द क्वालिटी आल्सो, द फिशरीज द एलाइड सेक्टर्स दे हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल मिनिस्ट्री एंड देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सो यू थिंक दैट एनहांसिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स दीज एलाइड सेक्टर्स आर प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल?
2: देखिए, जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नीयत के बारे में। नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहां हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें

0: कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स का अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा, ये
1: तो पैक्स
0: पैक्स
1: जो
0: से
1: आप कह रहे हैं कि
0: अपेक्स का
1: प्राइमरी
0: अप्रोच,
1: एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी,
0: क्रेडिट सोसाइटीज। जी
1: जी
0: बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया। यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में, अब ये कंप्यूटराइज हो गई, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो
1: जी
0: एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे यहाँ अब है वन नेशन वन राशन कार्ड, और वो भी डिजिटाइज्ड है, यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूं तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथेन किए गए, वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए,
1: जी
0: यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं, बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर हैं इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया, एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से ये सारी चीजें हो रही है। मेगा फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी, सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आप आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और वो
1: जी
0: फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
1: तो उनकी
0: आप कुछ
1: जरूरत के
0: ऐसे
1: अनुसार
0: चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे, जैसे मान के चलिए 100 जिले थे, तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में x/8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। तो उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं, और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है ये सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में और जो डेयरी में, आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है, तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में। तो एक बड़ा बदलाव लाइफ स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है।
1: जी
0: चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है, कंप्रेस बायोगैस में,
1: जी
0: और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टर्बाइन फ्यूल, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टर्बाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं,
1: जी
0: और एक तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टर्बाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही हैं। तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात यह है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए, ये फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम।

0: जो डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए, हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
1: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, इस मंत्रालय के महत्व के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं, ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके लिए इनका क्या महत्व है?
2: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए, पहले भी एफपीओ बनते थे, लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले ही बन गए 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहां पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है। कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
1: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओ होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
2: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओ को, जो चाहे वो कर सकते हैं एज ए बिजनेस एंटिटी। उनको बिजनेस बढ़ाना है और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं, सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है, किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
1: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
2: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं और अपने फार्मर को, कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं। तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
1: So that collective power is there. And Mr. Mishra, we would also like your views, and if you could tell us that how government is really empowering the farmers by protecting them from increase in the prices of fertilizers. So this is a very important input, the fertilizers. So this aspect, how it has been taken care of at the policy level in these 12 years, can you tell us about this empowerment aspect for farmers?
2: See, fertilizer in India is considered the cheapest in the world when you talk about urea particularly. Why? Because government has not raised the price for past two decades or so, and urea currently is available at 267 rupees per bag of 45 kg. Last international price at which India bought urea was $954 per ton.

0: So roughly, if you take $1,000, it comes to around 95,000 per ton. 95,000 means 9500 per quintal. It is a big amount. So when farmers are sold at 267 rupees, just imagine how much money the government is subsidizing. The result is farmers are getting the product fertilizer at the very cheap rate, so that their cost of production is also limited within certain range.
1: Right.
0: And it is also reflected in the end price which they are selling their produce. If you raise the input cost, the product will also be costlier for the consumers. So it is based on this theory that you subsidize the input to some extent,
1: okay,
0: so that the end product also becomes cheaper for the consumers, and our inflation is also remain under control.
1: Mr. Anand, Mr. Prasad, Mr. Mishra, thank you so much for this insightful discussion on the various aspects of how the farmers and the agriculture sector has been empowered in the last 12 years.
2: Thank you.
3: Thank you very much.
0: Thank you very much.
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants were Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashwani.
5: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार में एमएसपी और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद व प्रभु दत्त मिश्रा. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.
6: हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ की मीरा चैनल से बोल रहे हैं. एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7:45 हुए हैं. अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत.

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। श्रोताओं, आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसी आवाज़ का उत्सव है जिसने पीढ़ियों को जोड़ा है। जी हाँ श्रोताओं, आज आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। आपकी वाणी, हमारी वाणी, हम सब की वाणी आकाशवाणी। 90 वर्ष यानी वो सफ़र जहाँ सुबह की शुरुआत होती है, ये आकाशवाणी है से, जहाँ बचपन, प्यार, संस्कार, अपनापन, त्यौहार, बड़े बुजुर्गों से लेकर सफ़र करते मुसाफिरों का साथी होता है आकाशवाणी। कभी गीतों ने दिल बहलाया, कभी समाचारों ने देश को जोड़े रखा, कभी एक अनजानी जानी पहचानी आरजे की आवाज़ ने दिन खूबसूरत बना दिया। रेडियो सुनने वालों के लिए यह सिर्फ एक मशीन नहीं, यह एक एहसास है, एक जज्बात है, एक आदत है, एक दोस्त और एक ऐसा हम सफ़र जो बिना दिखे हमेशा आपके साथ रहता है। सोशल मीडिया और इंटरनेट मोबाइल के इस शोर में आज भी दिल ठहर जाता है जब सुनाई देता है ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी ने सिर्फ कार्यक्रम नहीं दिए, यादें दी हैं, भावनाएं दी हैं और

सबसे खास हर आवाज़ को अपनापन दिया है। तो श्रोताओं, आइए इन 90 वर्षों के सुनहरे सफ़र का अभिनंदन करें, धन्यवाद करें उन तमाम आवाज़ों का जिन्होंने कभी सुबह के साथ तो कभी शाम को सुनहरा बनाया, अपना बनाया। और संगीत गोल हम सभी के जीवन में आकाशवाणी ने गोला है, प्यार का सफ़र।

कुछ बातें कुछ गीत इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी रेडियो साथी वृतिका। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और आज कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत। इसमें हमारे श्रोताओं ने हमें ढेर सारे मैसेज भेजे हैं, तो कार्यक्रम में लेते हैं आज का पहला मैसेज। हमारे श्रोता हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा। आप लिखते हैं, सच कड़वा होता है लेकिन वही इंसान को सही राह दिखाता है। इसी के साथ रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने हमें लिखा है, इंसानियत ही सच्चा धर्म है इंसान का। एक सच्चे इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसका धर्म व ईमान होता है, और फिर सच्चाई के साथ जीने वाले ही इंसानियत के प्रतीक होते हैं, और इंसानियत इंसानों से ही सीखी जा सकती है।

कुछ बातें कुछ गीत इस कार्यक्रम में सादुल शहर जिला श्री गंगानगर से राम कुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ लिखते हैं। समय बड़ा निर्मोही होता है, वो न किसी की जीत पर रुकता है और न किसी की हार पर ठहरता है। आज जो अपने लगते हैं कल परिस्थितियों के साथ बदल भी सकते हैं, इसलिए जीवन को लोगों के भरोसे मत रखो, अपने साहस से जियो। इसी के साथ एक और संदेश है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खट से और विनोद खट से लिखते हैं कि अकड़ और अभिमान मानसिक बीमारी है जिसका इलाज समय और कुदरत करती है।

कुछ बातें कुछ गीत इस कार्यक्रम में। हमारे अगले श्रोता लिखते हैं कि गर्मी की छुट्टियां छात्रों और परिवार वालों के लिए पढ़ाई के तनाव से राहत पाने, आराम करने और नई यादें बनाने का बेहतरीन समय होता है। यह समय बच्चों के समग्र विकास और परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस

हाल ही समय का उपयोग नई भाषा सीखने, कोडिंग, कुकिंग या गार्डनिंग जैसी रचनात्मक कौशल सीखने के लिए किया जा सकता है। घर पर रहकर फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, चचेरे भाई बहनों के साथ खेलना और ठंडी आइसक्रीम और आम का आनंद लेना भी छुट्टियों का एक बड़ा हिस्सा है। जी हाँ, आपने बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है। गर्मी की छुट्टियाँ हमारे लिए, हमारी यादों के लिए, दादी नानी का घर, अपनों का प्यार और वो एहसास था जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, जिंदगी की उलझनों में ही तो मुस्कुराना है, हर एक दर्द को सीने से लगाकर भुलाना है। ख्वाहिशों के परिंदे उड़ाकर तो देखो जरा, आसमां भी झुक जाएगा अगर दिल में ठिकाना है। जी हाँ श्रोताओं, आपका ठिकाना भी हमारे दिल में है। बस आज के कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए अनुमति आपकी रेडियो साथी वृतिका को। नमस्कार।

हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष विशेष वार्तालाप का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लीजिए सुनिए आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष एक विशेष वार्तालाप। आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना।
1: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम अत्यंत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की शुरुआत एक सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ यह विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं, और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, थैंक यू।
1: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। आप लंदन पीटीआई के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखन

0: लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो टीवी से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिल्म जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी, और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूँ।
1: नमस्कार। यहाँ आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है, और मुझे इस बात की खुशी यह भी है कि जहां आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहां मुझे इसके साथ काम करते हुए 45 बरस हो चुके हैं। यानी आकाशवाणी का जो एक सफर है, इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूं, जब मैं यहाँ पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया, हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा, और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है, लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने बरसों से चल रहा है, 90 साल से हम आकाशवाणी की बात कर रहे हैं और अभी तक चलता आ रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीजें, आप कहीं कुछ देखिए, कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं। आप देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप कल्पना कीजिए जो ये फिल्म संगीत है, क्या इतना लोकप्रिय होता? कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे। इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत, द्विअर्थी गीत नहीं आए। तो खैर, ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले युवाणी से हुई थी, इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी, और मेरी पहली कमाई भी युवाणी से हुई थी। मुझे याद है शायद 25-30 रुपए पहली बार मिले थे जब मैंने युवाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रुपए मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बनी। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी, यहाँ पर थी, तब इन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IIMC में चली गई चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था, मुझे याद है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं, और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा, प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में भी, और उसके बाद और भी विभिन्न रूपों में भी, और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी, तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
2: देखिए, 90 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना, संचार, शिक्षा, इन तीनों ही अपने उद्देश्यों में, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसे आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना, और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उसमें हमारे यहाँ हर 3 कोस पे एक बोली बदल जाती है, और आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गाँव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सूचना देने का काम किया है, वो आकाशवाणी से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत सारे ऐसी घटनाएं याद हैं, चाहे कोई साइक्लोन आए, आपके जो आधुनिक संचार के साधन है वो सब फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के माध्यम से यदि अभी सूचना देनी है, मछुआरों को देनी है, सुनामी का हम लोगों को सबको याद है, या जो उड़ीसा में इतने चक्रवात आते हैं अलग अलग देश के अलग हिस्सों में, उसमें हम लोगों ने देखा कि आकाशवाणी को ही एक क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख लें तो वो आकाशवाणी की है। और क्यों ये अपने आप बना के रख पाए, अपना ये कारण क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड

0: ट्रांसमिशन में अलग अलग तरह से, पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहां आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार या वहां क्या घटनाएं हो रही है या उस भाषा के गीत भी कहीं भी बैठ के, तो ये जो एक लोगों को जोड़ने का काम किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया और तकनीकी के साथ साथ बदलाव किया है, इसीलिए आज भी आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी। और ऐसे संगठन में काम करने के लिए आना अपने आप में एक गौरव की बात है जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया आकाशवाणी ने, एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है और आकाशवाणी की भी जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर, भारत सरकार राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को, कैसे पहुंचेगी अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है और बड़े पॉपुलर कार्यक्रम है। अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल्स बहुत लोकप्रिय हैं, तो FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी, आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप ये सब सुन सकते हो। इसी के क्रम में बोले सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स हैं दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर टीवी चैनल्स, विजुअल माध्यम जो है उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी जो फॉलोअर्स है वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने, यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना, आज भी हम लोग ध्यान करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे, क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है वो आकाशवाणी से सुनता है, यदि आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है। इसलिए ये आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की, या नंबर ऑफ TRP की रेस में नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का तो आपने स्वयं ही बताया कि यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
1: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आकाशवाणी TRP की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से, इतनी गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरपल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र है और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र है जहाँ पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ, जब ये PTI के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी, माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ाया भी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब, आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि आप भी इतने वर्षों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, आप संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं?
2: मैं उस पीढ़ी का हूं जिस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आए ही नहीं थे, तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूं तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाया करते थे क्योंकि वहां रेडियो होता था। तो पहला जो आकाशवाणी के साथ संबंध जुड़ा वो जुड़ा क्रिकेट की कमेंट्री के माध्यम से, और इतने धुरंधर क्रिकेटर क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले थे जो हाउस होल्ड नेम बन गए थे, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो सुशील दोषी, मेलविल डिमेलो, जसदेव सिंह, ये वो नाम थे जिनको बच्चा बच्चा जानता था क्योंकि उनकी कमेंट्री ऐसी होती थी। तो ये पहला प्रभाव मेरे पर तो आकाशवाणी का जो पड़ा वो तो पड़ा कमेंट्री से। दूसरा, विविध भारती के साथ साथ जिस तरह के भोले बिसरे गीत, संगीत सरिता, चित्रलोक और फौजी भाइयों के कार्यक्रम, ये एक दूसरा प्रभाव था जो हमारे समय की युवा पीढ़ी पर पड़ा। मनोरंजन का साथ, महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं तो गाने रेडियो पर चल रहे हैं, फिर जब ट्रांजिस्टर आता है तो खेत खलिहान मजदूर हर व्यक्ति ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा है, गाने सुन रहा है, समाचार सुन रहा है और अपना काम कर रहा है। तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था समाचार।

0: जो हिंदी के समाचार हम लोग सुनते थे उसमें देवकीनंदन पांडे,
1: रामानुज प्रसाद सिंह,
0: रोशन मेनन, सुरजीत सेन, लोतिका रत्नम, लोतिका सिंह, पमेला सिंह, इंदु वाही, ये वो नाम थे जिनको घर घर में बच्चा जानता, बाद में पत्रकार बना। जब लड़ाई हुई 1965 की और 1971 की, और उस दिनों जो कार्यक्रम बनाए गए वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और लोग रेडियो पर कान लगाए रहते थे कि कब समाचार से हमको जानकारी मिले। तो समाचार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है और आज भी है। और अभी भी मैं एक बात बीच में कह दूं कि जब सरकार ने FM रेडियो के लाइसेंस देने शुरू किए, लेकिन समाचार अपने बनाने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है। वेव्स हैं रेडियो की, ये किसी और के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझते हैं। आकाशवाणी की वो इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी दुश्मन ने आपकी आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया तो समझिए वो देश आधा पस्त हो गया। इतना महत्वपूर्ण काम है आकाशवाणी का, और उसी लिए ये आकाशवाणी को इतना महत्व दिया गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है आकाशवाणी के समाचार की जो विश्वसनीयता के बारे में। एक बार क्या हुआ कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंदोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी, और उनको ये लगा कि मैं अपने पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तो डमी शूटिंग होनी थी, और उसमें वो खबर जानी थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उस जमाने में न्यूज एजेंसी फ्लैश फ्लैश फ्लैश करती थी, फ्लैश फ्लैश फ्लैश गोवा CM डेड। अब ये हो गया शूटिंग, लेकिन जो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर था वो स्विच को ऑफ करना भूल गया।
1: अच्छा।
0: उसके चलते वो गोवा से समाचार मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने दिल्ली को दे दिया, दिल्ली ने उसको प्रसारित कर दिया। अब आकाशवाणी को ये इंस्ट्रक्शन थी और आज भी है कि अगर ऐसा कोई समाचार एक न्यूज एजेंसी से आता है आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दूसरी न्यूज एजेंसी से आप उसको कन्फर्म करेंगे। तो उसके चलते वो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन से फोन आ रहे हैं कि आप आकाशवाणी से क्यों प्रसारित नहीं कर रहे, गोवा के मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। आकाशवाणी के डीजे ने कहा साहब हमने दूसरी एजेंसी से कन्फर्म किया है, उसका कहना है साहब ऐसा कोई समाचार नहीं है। मैं ये प्रत्यक्ष बता रहा हूँ आपको कि फिर राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय ने सैटेलाइट से नेवल हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न कमांड का है उससे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अब उस जमाने में क्या हुआ कि संपर्क टूट गया गोवा और मुंबई के बीच में उस एजेंसी का। जब संपर्क जुड़ा तो उसने कहा कि वेयर इज द फॉलो अप, उसने कहा क्या फॉलो अप, आपने कहा था गोवा CM डेड, उसका फॉलो अप क्या है। तब रियलाइज हुआ कि शूटिंग करते समय एक स्विच ऑफ ना करने से कितना बड़ा देश, लेकिन आकाशवाणी अपने उस पर डटी रही और इसके कारण दुनिया को गलत समाचार नहीं मिल पाया। आज भी लोग कहते हैं कि जरा रेडियो की खबर सुन ली जाए, आकाशवाणी जो बात कहेगी वो सत्य है, उसमें कोई ना तो गॉसिप है और ना ही कोई बढ़ा चढ़ाकर है, और ना ही इसमें किसी प्रकार का देश के अंदर जो एक सद्भावना है उसको खत्म करने की कोशिश है। तो आकाशवाणी ने 90 साल में ये जो एक अपनी इमेज बनाई है, बल्कि शांति स्थापित करवाने में सहयोग दिया।
1: देखिए जिस तरह आपने बताया कि आकाशवाणी पर भरोसा करते हैं, मुझे 1971 के वो दिन याद है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था। उस समय भी ऐसा होता था, पाकिस्तान हर बार अपने रेडियो से प्रसारित करता था हमने भारत की सेना को पीछे खिसका दिया, इसको ये कर दिया, जबकि हमारी सेना सीधी लाहौर तक पहुंच गई थी। तो तब आकाशवाणी ने कार्यक्रम शुरू किया था ढोल की पोल। ढोल की पोल इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरा व्यंगात्मक तरीके से ये बताया जाता था कि पाकिस्तान किस तरह झूठ बोल रहा है, और पाकिस्तान उस कार्यक्रम से इतना परेशान हुआ था कि उसने झूठ बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन आप ये देखिए आकाशवाणी के सामने इन 90 सालों में कितनी चुनौतियां आई हैं, कितनी बार ऐसे लगा कि बस आकाशवाणी अब जाने को है, इसका जमाना चला गया। तो तभी 85 के समय भी ऐसा लगा, लेकिन आप देखिए फिर किस तरह धीरे धीरे जो है आकाशवाणी ने FM चैनल शुरू किए, कम्युनिटी चैनल शुरू किए, और उसके बाद फिर ऐसे लगने लगा शायद फिर पीछे हो रहा है। तो लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ आकाशवाणी पर, और आप देखिए उस एक कार्यक्रम ने आकाशवाणी को इतना लोकप्रिय बना दिया है, आकाशवाणी को राजस्व भी मिल रहा है, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, उसको आज सभी लोग सामूहिक रूप से सुनते हैं, और आकाशवाणी के उसी कार्यक्रम को सारे तमाम चैनल्स, रेडियो के चैनल्स हैं चाहे वो TV के चैनल्स हैं, उसी को आगे प्रसारित करते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा वर्तिका नंदा से। वर्तिका नंदा एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और इतने सालों से मैं इनको देख रहा हूं और कई बार हम टीवी के कार्यक्रम में, कई बार रेडियो के कार्यक्रम में भी साथ होते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में तो किया, अध्यापक के रूप में जो कर रही है वो भी है, साथ ही इन्होंने जेल के ऊपर जो काम किए हैं वो इतने अनुपम है उसका कोई मुकाबला नहीं है, और आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप

0: इतने साल से आकाशवाणी का कार्यक्रम भी कर रही हैं, तो आपको आकाशवाणी के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके दिलों में अभी घर की हो?
1: देखिए, 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी में आए, उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें कहा कि गांधी जी आप आइए, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में मेरा आना उचित नहीं है, मैं तो तब आऊंगा जब भारत आजाद होगा। और भारत के आजाद होने के बाद ही वे यहाँ पर आए। वो ऐतिहासिक घटना थी जिसे जन सेवा प्रसारक दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
0: हमारे आकाशवाणी में आज भी वो स्टूडियो है
1: और आज वो बापू धाम बन गया है। और उस बापू स्टूडियो में अब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वही बापू स्टूडियो जहां महात्मा गांधी आए थे।
0: जी।
1: इन सालों में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन एक बात जो और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई वो थी मन की बात। मन की बात ने ये साबित कर दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माइक को चुनता है पूरे हिंदुस्तान से बात करने के लिए, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर आकाशवाणी में कोई ऐसा जादू है जो बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हों। आकाशवाणी ने एक और काम किया, उसने इतने सालों में हमें सुकून भी दिया, हमें संवेदना दी, हमें संस्कार दिया और हमें सहूलियत भी दी। आकाशवाणी ने शिक्षा की जो मुहिम चलाई, शिक्षा से जुड़े बहुत से कार्यक्रम इग्नू के साथ जोड़कर आज भी आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे हैं। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा से जोड़ रहा है आकाशवाणी, और जो शिक्षित है उसके अंदर भाषा की बेहतर संस्कार को जगा रहा है। एक और बड़ी रोचक बात लगती है, सैनिक भाइयों का कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय रहा, खासतौर पर इसलिए कि जो सरहद पर है अपने परिवार से दूर उदासी से घिरा हुआ, उनको थामने का काम भी आकाशवाणी ने किया। किसानों की चिंता भी आकाशवाणी ने कही। असल में ऐसा लगता है कि जो जिंदगी की मूलभूत जरूरतें थीं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, रोजगार, ऐसे तमाम बड़ी चीजें जिसके बिना हम जिंदगी जीने की कल्पना नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों वो जन सेवा प्रसारक माध्यमों के हिस्से में डाल दी गई और कमर्शियल मीडिया के पास आ गया तिजोरी भरने का काम। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा। तीन तरह के ब्रॉडकास्टर्स से हमारा परिचय रहा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया। इन सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली। उसने ये बताया कि हम जब बात करते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उस बात को चरितार्थ किया आकाशवाणी ने। हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो, किसानों का कार्यक्रम हो या फिर शिक्षा की अलख जगाने का कार्यक्रम हो, और खास तौर पर संगीत हो, जिंदगी में संगीत खोलने का काम भी आकाशवाणी ने किया। और उसने ये भी बताया कि संगीत के साथ साथ भी आप कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। इस बात की जिक्र मैंने खास तौर पर इसलिए भी किया कि जब कोई आकाशवाणी को सुनता है तो वो ये भी जानता है कि हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में, थिएटर ऑफ द माइंड, आकाशवाणी हमारी कल्पनाओं के संसार को बड़ा उर्वर करता है। आपके सामने वो कलाकार नहीं है, आपके सामने वो अभिनेता भी नहीं है और वो संगीतकार भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत उन तस्वीरों को बुनने लगता है। चाहे प्रधानमंत्री के निधन की खबर हो और चाहे सुनामी हो, आकाशवाणी ने अपनी धुन को, अपने तरीके को, अपने स्वर को भी कभी नहीं बदला। आप जिस कमर्शियल मीडिया की तरफ बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो शोर आकाशवाणी के कानों तक भी पहुंचा, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती है कि उसने अपने आप को कभी भी एक नकलची बंदर नहीं बनाया। वो कभी भी इस डर में नहीं आया कि बाकी लोग हमसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तिजोरी की खनक को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आकाशवाणी उस तिजोरी की चमक दमक से परे बड़ी शालीनता से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता रहा। अभी भी हर बार हम देखते हैं जब भी कोई विशेष तिथि होती है तो यहाँ विशेष कार्यक्रमों को बनाया जाता है। और अब मैं देखती हूँ कि तकनीक में इतने बदलाव के बावजूद, आकाशवाणी ने उन तकनीकों को अपनाने के बावजूद अपने उस पुराने गौरव को और अपने उस संस्कार को, अपनी उस गति को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में महफूज हैं, महात्मा गांधी की आवाज से लेकर पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक, कितनी आवाजों को आकाशवाणी ने सहेज कर रखा। एक शिक्षक, एक छात्र और किसी भी एक नागरिक के लिए आकाशवाणी एक कमाल का उड़न का टोला है। सारे रस हैं इसमें, वियोगी के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है, किसी ऊर्जावान व्यक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो या फिर संगीत का विशाल पटल हो, वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने। एक कार्यक्रम हवा महल, जो बचपन से हमारे दिलों

0: में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की भी बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ, नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे, तो दत्त साहब बताते थे कि जब भारत चीन के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली फहरा के नरगिस जी और सुनील दत्त साहब पैसे बटोरते थे, लोगों से भीख मांगते थे, एक तरह से हमें दीजिए इनकी सहायता के लिए। तभी आकाशवाणी ने सोचा इतनी दूर दराज के लोग सैनिक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कैसे उन तक संगीत पहुंचे, कैसे उनके संदेश पहुंचे, कैसा उनका परिवार के साथ वार्तालाप हो। तब जाके ये जयमाला कार्यक्रम शुरू किया जो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसमें सैनिकों के संदेश सुनाए जाते थे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती थी, और नरगिस ने उसको पेश किया, देवानंद साहब ने पेश किया, अमिताभ बच्चन जी ने पेश किया, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत से लोगों ने पेश किया। वो कार्यक्रम इतना अच्छा था, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है अपने अलग रूप में, और आज भी उसकी पुरानी यादें जो है आती है उसके अंदर। तो प्रज्ञा जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपनी युवावस्था में थी तब आपको कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे कि इनको मिस ना करूं, जरूर सुनूं?
1: कार्यक्रम गीत संगीत के अतिरिक्त जब बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आकाशवाणी का एक है न्यूज सर्विसेज डिवीजन, उसके जो अनेक कार्यक्रम, यदि आप बात करें करंट अफेयर्स से जितने संबंधित प्रोग्राम है, चाहे आप सुर्खियों में ले लें, स्पॉटलाइट ले लें, या करंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ले लें, ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहे हैं। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आजकल जो कोचिंग एकेडमीज हैं, जो यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशंस या दूसरे एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती हैं, वो पूरा पूरा उस कार्यक्रम का ट्रांसक्राइब करा के उसको अपनी वेबसाइट्स पे डाल देती हैं। कॉपीराइट है या नहीं वो उस बात में नहीं, लेकिन अनेकों ऐसी एकेडमीज हैं, और इन कार्यक्रमों को हर छात्र युवा जो है वो जरूर सुनता है। साथ में पॉलिटिकल, एजुकेशनल स्फीयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, या पार्लियामेंट से रिलेटेड बजट हुआ, विशेष मौके आते हैं उन पे आधारित जो विशेष कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और ज्ञान परक होते हैं। तो हर बच्चा उसको सुनना चाहता है। और जब हम लोग देखा करते थे हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं कमेंट्रीज, और हॉकी की कमेंट्री का तो अलग ही लेवल होता था, हॉकी बहुत फास्ट गेम है, उसी हिसाब से होती थी जसदेव सिंह की या मेलविन डी मेलो वाली जो कमेंट्री होती थी उसकी खासियत सुनते थे। एक चीज और जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में आते थे और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स भी सुना करते थे, और फिर वो दूरदर्शन में आया जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते थे, वो सारे जितने वरिष्ठ कवि उस समय के, चाहे नीरज जी हो, कवियों
0: को, पंत जी हो, सबने, महादेवी वर्मा,
1: सबने, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, तो वो सब इस माध्यम पे आते थे। तो वो जो विशेष श्रृंखलाएं आकाशवाणी की हैं उनको बहुत पसंद। और मुझे याद है पढ़ते समय हम लोग समाचार सुनते थे, जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे, ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं। गीत संगीत तो सुनते ही थे, और आज भी आप देखिए जो किसानों की सलाह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन बड़े शहरों में उनकी प्रासंगिकता नहीं है इसीलिए नहीं सुन रहा, लेकिन गाँव में आज भी उन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य वाले, हम लोगों को यहाँ पे तो सारी मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी जैसे मैंने पहले भी कहा था। और फिर जिस प्रकार के इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, मार्केट मंत्रा, उसको मैं शाम को सुनती थी, तो आर्थिक जगत में क्या हो रहा है वो पूरे दिन का एक समरी आ जाती थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है, भारत की क्या स्थिति है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये आकाशवाणी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है।
0: बिल्कुल, स्वास्थ्य और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए उसमें सबैकी प्रोग्राम बहुत एक प्रसिद्ध रहा, और मैं भी उसको 1980-82-83 के दशक से उसको करता आ रहा हूँ। और मुझे आज याद आ रहा है कि आज 2 जून है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो आज के दिन जो राज कपूर है उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को, और मेरा एक बड़ा एक शायद पता नहीं कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था या मेरा सौभाग्य था कि उनके अंतिम समय में मैं ही उनके साथ था एम्स के अंदर, मैंने ही उनसे आखिरी बात, इतने बड़े फिल्मकार ने इतने संवाद लिखे, लेकिन उसने जीवन का आखिरी संवाद मेरे साथ किया। तो वो कार्यक्रम भी सवाईकी में 2 जून 1988 को गया था, जो आज ये रिकॉर्डिंग का दिन है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी वो देता है कि किस तरह आप देखिए कि ये सब हुआ। और जिस तरह स्वास्थ्य की बात की तो मैं खुद आकाशवाणी के लिए बहुत समय तक स्वास्थ्य पत्रिका का कार्यक्रम करता रहा। मैं विश्वविद्यालयों में जाता था, अलग अलग कॉलेज में जाता था, उस समय बड़ा मुश्किल था। आज के समय के हिसाब से अपना जो छात्राएं हैं उनसे खासतौर से परिवार नियोजन की बात करें, शादी की बात करें, आज तो बहुत एडवांस हो गए, लेकिन 40 साल पहले 35 साल पहले बहुत मुश्किल होता था। लेकिन मैं तब भी अपना वो पुराना मेटल रिकॉर्ड हो जाता था वो ले जाता था और जाके यूनिवर्सिटी में

0: अड़ जाता था, लॉन के अंदर से बुलाता था बाहर से किसी को, फिर उनसे बातों बातों में बात करता था। लेकिन उसके बाद वो इतने अच्छे कार्यक्रम बनते थे कि बहुत ही शिक्षा उनको मिलती थी। हम डॉक्टर से भी बात करते थे, लोगों से भी बात करते। कोरोना के दिनों में स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुए, वो भी इसके अंदर चल रहे हैं। तो टंडन साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपका एक इतना एक अलग अनुभव, आप क्या देखते हैं आकाशवाणी के भविष्य को किस रूप में देखते हैं आप आज?
1: मैं उससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था, जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित

0: मिशन के बारे में बात करना
1: जी कीजिए।
0: क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था, जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित करते थे और उनके समाचारों को हम इकट्ठा करके फिर यहाँ पर बुलेटिन में डालते थे, तो मैं समझता हूँ कि वो सर्विस भी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी चलती है। पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नजदीक से आकाशवाणी के संवाददाताओं के साथ काम किया, विदेश में चाहे प्रधानमंत्री की विजिट हो, राष्ट्रपति की हो या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी रहता था जिसमें उनको वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती थी, बाइट्स जिसको आज कहते हैं वो लेने पड़ते थे, और हम लोग तो अपनी कॉपी जितनी लंबी मर्जी लिख लें, उनको छोटे में न्यूज बुलेटिन के हिसाब से वो बनानी पड़ती थी खबर। हम देखते थे कितना मुश्किल काम करते थे, और मैंने लगभग 20 साल तक तो आकाशवाणी के करस्पॉन्डेंट के साथ काम किया, देश में भी विदेश में भी, और उन पर जितना दबाव रहता था क्योंकि उनका समाचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और ये जो दबाव में काम करने में आकाशवाणी के संवाददाताओं ने योगदान दिया, जिसके चलते आकाशवाणी के समाचारों की विश्वसनीयता बनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कार्यक्रम की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जब 1971 की लड़ाई में सरेंडर कर दिया पाकिस्तान की सेना, तो यहां से एक स्पेशल वॉर करस्पॉन्डेंट बन के सुरजीत सेन गए थे और उन्होंने वहां पर बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो से लाइव ढाका से किस प्रकार से जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, इसका लाइव उन्होंने, आप सोचिए टेलीविजन में लाइव दिखाना आसान है, लेकिन आकाशवाणी के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि सरेंडर कैसे हुआ, तो ये इतने महत्वपूर्ण एक ऐसे आयाम हैं जिसको आकाशवाणी के संवाददाताओं ने कवर किया, और कितनी कठिनाई में दुर्गम स्थानों पर जाकर और फॉरवर्ड एरिया में जाकर, सियाचिन जैसी जगहों पर जाकर, तो इन लोगों ने जो काम किया। देखिए, अब अगर आप भविष्य की बात करें तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, समय के साथ आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई है, आज डिजिटल मीडिया में आकाशवाणी की रीच सबसे ज्यादा है, और जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग सुनते थे एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ में एक फोन होगा, उस पर आप आकाशवाणी के समाचार भी सुनेंगे, आप उसमें टीवी की खबरें भी सुनेंगे, आप उसमें संगीत भी सुनेंगे, आज वो हमारे सामने है, हमारे हाथ में है, तो उस युग को आज आकाशवाणी जी रहा है, और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है, चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा, उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं, अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर, श्रोता भी चल रहे हैं, आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है। आकाशवाणी में इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है, पहले जरा सी गलती जाती थी बहुत मुश्किल हो जाता था, हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेके बड़ा एक मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे, इतना भारी होता था, तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी, आज सब कितना आसान हो गया है। तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं मुझे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप किस तरह देख रही हैं आकाशवाणी को बदलते स्वरूप में, इसकी पहुंच को लोगों तक, और आज के जो आप कॉलेज में पढ़ाती हैं तो वहाँ किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
2: देखिए, आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परंपरा का भी और आधुनिकता का भी। इस भवन के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं पुराने सेट, और बहुत सुंदर है वो तस्वीर, और वो भी तस्वीर जहाँ महात्मा गांधी का जिक्र है।
1: बिल्कुल।
2: उसके बाद अंदर आने पर अभी देखिए हम जिस स्टूडियो में है, पंडित रविशंकर, उनके नाम पर इस स्टूडियो का गठन किया गया है, और तमाम स्टूडियोज ऐसे ही नामों के साथ जुड़े हैं। जो यहाँ का जो गलियारा है वो भी इतिहास की बड़ी सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो इसका मतलब ये है कि आकाशवाणी ने हमेशा से ये समझा कि इतिहास को सहेजना, उसका सम्मान करना, वर्तमान पर पूरी नजर रखना और भविष्य की तरफ उन दरवाजों को खुला रखना, जो इन तीनों को एक साथ सहेज लेता है वही आगे बढ़ पाता है। आकाशवाणी इसका बहुत सुंदर प्रतीक है। एक और बात जो लगती है कि आकाशवाणी ने आर्काइव्स पर बहुत जोरदार काम किया, उसने किसी भी तरह से इतिहास को मिटने नहीं दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी की जिस परेड को और जिस भव्य समारोह को दूरदर्शन के आने इससे पहले या फिर आने के बाद भी लोग तन्मयता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा, वो झांकियां क्या होगी, उसे आंखों देखा बताने वाला

0: आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन है, रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य, आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत सुनहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजोकर रख रहा है, वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है और आने वाले समय में जिस तरह की आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से वो अपने आप को रोज बदल रहा है। आकाशवाणी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो बुजुर्ग हैं उनका भी आकाशवाणी था, जो आज बच्चा है उसका भी आकाशवाणी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी आकाशवाणी की मौजूदगी हमेशा रहेगी। ये बात अलग है कि जब सिलेबस डिजाइन होता है हर बार इस बात की बहस होती है कि जो तिजोरी भर रहा है कहीं वो ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन वो बहस हर बार इस दबाव के आगे हार जाती है कि आकाशवाणी की जगह कोई नहीं ले सकता। असल में आकाशवाणी हमारा नींव है, उस नींव के आगे ही बाकी संसार है।
1: तो इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं चाहूंगा कोई भी श्रोता जो यहाँ बैठे हुए हैं कोई सवाल पूछना चाहे हम किसी से तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, आप बताइए अपने नाम के साथ।
2: मैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक, मैं स्वयं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ, रेडियो पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ लिखा है और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं, मैं विद्यालय स्तर पर 11वीं-12वीं को पढ़ाता हूँ। मैं माननीय टंडन जी से एक सवाल करूँगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के हम क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए आज के युग में।
1: जी टंडन साहब,
3: धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे उद्गार रखे, लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर उसको पहुंचना था और किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर न और व्यवहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी हैं ही हैं। आज आकाशवाणी और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ हो रहा है और मैं ये कहना बिल्कुल उचित समझता हूँ कि कई विकासशील देशों के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के लोग हमारे यहाँ भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं कि वो कैसे अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को सुधार सकते हैं। हम अग्रणी हैं और अग्रणी ही रहेंगे। अभी भी बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि यहाँ का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऐसे कैसे इतनी सक्षमता के साथ चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पर विशेष तौर पर आकाशवाणी के समाचार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि ये केवल और केवल सरकार की खबरें देता है और उसमें संतुलन नहीं बनाता और ना ही कभी किसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है, सरकार के पक्ष का भी नहीं है और लोकतंत्र के नाते भारत में क्योंकि एक फ्री प्रेस है तो उसमें हम कभी ऐसा भी नहीं है। मैंने स्वयं देखा है कि बुलेटिन के बारे में पूरा लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने मिनट सत्ता पक्ष को दिए गए, कितने मिनट विपक्ष को दिए गए, कितने मिनट किस नेता को दिए गए। तो अभी तक आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन के बारे में कभी किसी विरोधी दल ने शिकायत भी नहीं की कि आप बायस्ड हैं। ये जो एक आकाशवाणी ने अपनी एक साख बनाई है उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है और कोई कारण नहीं है कि जो आप चाहते हैं कि आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए। वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम जाएगा दुनिया में स्टैंडर्ड जाएंगे। भारत न तो बीबीसी से पीछे है, न वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, न चाहे डॉइच वेले है। ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
4: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए, भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है।
1: बिल्कुल।
4: और अभी हम लोग ने सुना कैसे जापान सबसे एजड कंट्रीज में से है, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन यदि आकाशवाणी को युवाओं में लोकप्रिय होना है, क्योंकि हमारी आपकी जनरेशन, टंडन साहब की जनरेशन, तो हम लोग तो अभी भी आकाशवाणी पे जाएंगे, लेकिन यदि युवाओं में आकाशवाणी को उतना ही पॉपुलर रखना है जितना पहले रहा है, उसके लिए युवाओं पर केंद्रित विशेष प्रोग्रामिंग वो करनी होगी। और अभी मैंने ये देखा है कैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए रील्स, आकाशवाणी ने जो रील्स का अपनाया, आज युवाओं में रील्स बहुत पॉपुलर है।
1: बिल्कुल।
4: तो वो रील्स को भी आकाशवाणी ने अपना लिया है और जो रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं वो रील्स के माध्यम से ही आकाशवाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की मन की बात की अलग अलग विषयों की छोटी छोटी

0: स्टोरीज बनी हो या फिर कोई घटनाएं हो रही हैं या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, चाहे अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको जो रील्स के रूप में आकाशवाणी दे रहा है, तो यदि यंगस्टर्स में पॉपुलर होंगे तो भविष्य भी उज्जवल होगा।
1: बिल्कुल। और कोई सवाल पूछा चाहे जरा बताएं। जी आप बताएं।
2: मेरा सवाल प्रज्ञा मैम से ही है। खुश हुई इस बात की जानकर के सर की पहली कमाई मैम की भी युवाणी से, आपके भी और मेरी भी सर वहीं से हुई। मैम मेरा नाम मनीष आजाद रेडियो वाला ही है और मैं पिछले 26 वर्षों से यहाँ जुड़ा हूँ और कई सारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मैं रेडियो पढ़ाने के लिए जाता हूँ।
1: इसीलिए रेडियो वाला आपका नाम है
2: सर। ये लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है क्योंकि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूँ, तो मैं आकाशवाणी को हर समय आगे रखता हूँ। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं आप और प्राइवेट चैनल्स को और बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके आरजेस के बारे में बताएं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तो वहां पर मैं कैसे मैम तालमेल किया जाए?
0: आपने सही कहा कि जो मैंने पहले बात कही थी कि आज जो यंगस्टर्स में कौन पॉपुलर है, हम आकाशवाणी को रेस में नहीं पढ़ना है पॉपुलैरिटी की, लेकिन जो तरीका है एंटरटेनमेंट का ही देने का वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे और ज्यादा पुराना एक आकाशवाणी का पैटर्न होता था उस हिसाब से हम कैसे बदलें आज के समय के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग लाएं, गंभीरता भी मनोरंजक तरीके से, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गंभीरता भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारा काम है एंटरटेन करना, सूचना देना, दोनों को कैसे एक अच्छा बैलेंस बनाया जाए वो आकाशवाणी को करना बहुत ही जरूरी है।
1: जी आप पूछिए सवाल।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: मैं डॉक्टर पारुल राज, वैसे मैं बनारस से हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, तो मेरा एक रहता है स्त्री विषय मेरा है मेन। तो जो कहते हैं ना कि एक कोना जो खाली है, वो अगर हम उस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको हम प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाए, और तो वो मेरे मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
1: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्रित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कवियों को लेकर भी चल रहे हैं और यहाँ भी बहुत सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष कार्यक्रम,
0: एक विविध भारती पे एक सखी सहेली बहुत पॉपुलर
1: सखी संगीत चल रहा है। महिलाओं को अचार बनाना, ऐसी घर की चीजों को बनाना, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो। कई बार वो जो व्यंग के कार्यक्रम उसमें जोड़ देते थे कि आप जो अचार बनाना सिखा रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसमें डुबो दीजिए, तो कई पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो इस तरह कह रहे हैं। वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा, तो इसलिए ये बहुत कार्यक्रम ऐसे है जो लोकप्रिय। जी मैं एक बार आपसे और जानना चाहूंगा टंडन साहब कि आप वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार भी रहे, तो वाजपेयी जी कोई बहुत कवि तो थे ही और दिग्गज राजनेता थे, वो रेडियो को लेकर कैसे सुनते थे आकाशवाणी को और क्या उनका रहता था?
4: अटल जी की बहुत सारी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई हैं, तो देखिए वो भी जिस युग में पढ़े भले, तो रेडियो तो जीवन का एक अंग था ही। और मेरा ऐसा मानना है कि समाचार सुनने में, सामयिकी या और ऐसे कार्यक्रमों को सुनने में सभी राजनेताओं का बहुत विशेष एक ध्यान रहता था आकाशवाणी की तरफ। इंतजार करते थे लोग कि कब समाचार बुलेटिन आए, कब शाम के जो इनका चर्चा आए। वो सारी जनरेशन तो आकाशवाणी के साथ ही आगे बढ़ी है और उसमें राजनेता कहीं कोई अलग नहीं है।
1: जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जाहिर इतने सारे अखबार आते थे, मीडिया क्लिपिंग्स आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति, खासतौर समाचारों के प्रति।
4: जैसे जैसे समय बदलता गया तो आकाशवाणी के जो समाचार हैं वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं और आज भी वही है। आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा। हाँ। और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है।
1: बिल्कुल।
4: और जितने लोग भी कार से सफर
1: करते, 8 बजे शुरुआत होती है वो रेडियो,
4: इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वो देश दुनिया के साथ उनका जुड़ाव है, क्योंकि चलते हुए भी उनको पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पत्रकार होने के नाते भी कि जो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन है या जो उनके विशेष कार्यक्रम है, स्पॉटलाइट है, ये आज भी बहुत आवश्यक है, हिस्सा है जीवन का। तो इससे लोग अलग नहीं हो सकते। अपने मोबाइल पर भी हम समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के सुन सकते हैं। तो ये जो सुविधा आई है, इसमें मेरा ऐसा मानना है कि समाचार बुलेटिन और ये जो कार्यक्रम है सामयिकी, इसमें कोई प्राइवेट चैनल इसका मुकाबला नहीं।
1: बिल्कुल।
5: नमस्कार। मैं एज इंजीनियर, यहाँ मेरी पहली नौकरी यहाँ लगी थी।
1: अच्छा।
5: और मेल्ट्रॉन का जो ये रखा है टेप रिकॉर्डर, इसको हम ही मेंटेन किया करते थे। सरदार जी होते थे, लेकिन मैं इंजीनियर से साहित्यकार बन गया। मैं आज मैं पोएट हूँ, वो सब इसी की देन है। आकाशवाणी में जो आर्टिस्ट लोग आते हैं, तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजिकली भी आकाशवाणी को सुने लोग बाग ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें आर्ट कहीं खुलती जा रही है। बस इतना ही।
1: ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है। और आप भी आइए।
6: मैम मेरा नाम कीर्ति बैद है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि

0: पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, रेडियो को 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि हमारी जो इतनी लंबी यात्रा रही है उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए। क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है?
1: बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और पीएचडी रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स थे उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए। किसी को कोई क्लिप पुराना भाषण सुनना है विशेष रूप से, आकाशवाणी के पास जो रिकॉर्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेषण करना है, रिसर्च करनी है,
2: बड़े बड़े संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है,
1: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं।
2: बिल्कुल, आपकी बात सही है। ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे, और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाशवाणी पे अभी मैंने कुछ दो तीन पंक्तियां लिखी हैं अपने मेरे कवि बन ने कि आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90 वर्षों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगों युगों तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
3: बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
4: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना। कार्यक्रम का नियमन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक, प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा, और कार्यक्रम का संयोजन किया था राम अवतार बैरवा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
5: हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:45 हुए हैं और प्रस्तुत है समाचार संध्या।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
7: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के

0: 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
1: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
2: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के हृतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हृतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जलजनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

0: के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
1: To develop the industrial ecosystem.
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: R&D and innovation oriented businesses.
0: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
4: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
6: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
4: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे

0: बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
2: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I'm Sahira Mujtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu presents gallantry awards to armed forces and police personnel at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana achieves nationwide coverage with West Bengal joining the scheme. A major fire at Vishakhapatnam steel plant in Andhra Pradesh claims 8 lives. India secures continued market access to export aquaculture products, honey and eggs to European Union beyond September this year. New Delhi calls for immediate de-escalation of tensions as Israel and Iran exchange fresh strikes. And India records biggest ever victory in Test cricket, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs in New Chandigarh. And now the news in detail. President Draupadi Murmu presented the gallantry awards to the personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and State and Union Territory Police at the Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of the Armed Forces were also present on the occasion. More from our correspondent.
4: The President conferred 7 Kirti Chakras, 15 Beer Chakras and 29 Shaurya Chakras during the ceremony. Inspector Lakshman Kewat and Inspector Rameshwar Prasad Deshmukh of Chhattisgarh Police were honored with Shaurya Chakra for their exceptional courage during anti-naxal operations in the state. Major Aditya Pratap Singh was given Shaurya Chakra for exceptional bravery in foiling a major attack by insurgents in Arunachal Pradesh. Lance Nayak Minachi Sundaram A was awarded Kirti Chakra for his indomitable spirit and exceptional bravery despite being severely injured, he neutralized one hardcore terrorist in Jammu and Kashmir. One of the four Gaganyatris chosen for India's maiden human space flight mission, Gaganyaan, Group Captain Prashant Balakrishnan Nair, was awarded Kirti Chakra Sub-Inspector Mohammed Imtiaz along with Constable Deepak Chingakham of BSF, who laid down life in the line of duty at international border in Jammu, were awarded Veer Chakra posthumously. Anupamish,

0: Prasar Bharati chairman Prasoon Joshi said, Akashvani has served as the backbone of the society for generations.
1: Since the establishment of All India Radio 90 years ago, Akashvani has remained the heartbeat of its listener and of the nation every day and every moment. Though every medium, Akashvani has continued to provide news, information and entertainment in the voices of people living in every corner of the country.
2: Samachar, Suchnaye aur Manoranjan Akashvani deti rahi.
0: India recorded the biggest ever victory in Test cricket, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs on the third day of the one-off test in New Chandigarh today. The win surpassed India's previous record test victory by an innings and 272 runs. It also displayed India's dominant bowling performance that saw them take 15 Afghanistan wickets on the third day. India ended their campaign at the inaugural World Yogasan Championships with 114 medals, including 102 gold today. Japan came second with 11 medals, including 3 golds, while Argentina took third, led by Nabila Baraza's 2 golds and 3 silvers. Benchmark domestic equity indices ended around 1% lower today amid weak global cues. Sensex shed 719 points to close at 73,524. NSE Nifty slipped 244 points to settle at 23,123. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu presents gallantry awards to armed forces and police personnel at defense investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana achieves nationwide coverage with West Bengal joining the scheme. A major fire at Vishakhapatnam steel plant in Andhra Pradesh claims 8 lives. India secures continued market access to export aquaculture products, honey and eggs to EU beyond September this year. New Delhi calls for immediate de-escalation of tensions as Israel and Iran exchange fresh strikes. And India records biggest ever victory at Test cricket, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs in New Chandigarh. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. That's all in the news at 9. Good night.
3: ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:15 हुए हैं। श्रोता, आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में काव्य गोष्ठी। संचालन करता है डॉक्टर प्रहलाद शर्मा, प्रतिभागी कवि हैं शिव मृदुल, नंद किशोर निर्जर और सुनील बाटू।
4: नमस्कार, आकाशवाणी केंद्र चित्तौड़गढ़ से हम साहित्यकार, हमारे मध्य में शिव मृदुल जी, नंद किशोर निर्जर जी, सुनील बाटू जी का मैं आकाशवाणी केंद्र चित्तौड़गढ़ की तरफ से डॉक्टर प्रहलाद शर्मा स्वागत सम्मान करता हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष आज पूर्ण हो चुके हैं और उस उपलक्ष्य में आज साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। श्रोता के रूप में और वक्ता के रूप में माननीय साहित्यकारों का क्या अनुभव रहा है, उस बारे में सबसे पहले मैं शिव मृदुल जी आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने अनुभव साझा करें। आदरणीय सर,
5: जब मैं 1957 में 9th क्लास में पढ़ता था, हमारे शिक्षक जी ने हमें क्लास में बताया कि उस समय जो ऑल इंडिया रेडियो के नाम से संस्था चल रही थी उसे आकाशवाणी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। जब मैं अपने विद्यार्थी जीवन में था तो हमारे लिए तो बड़ी कल्पना थी, लेकिन आकाशवाणी का इम्पोर्टेंस पब्लिक लाइफ में किस तरह से है, ये मैंने 1961 और 62 में जब भारतीय सीमा पर संघर्ष प्रारंभ हुए उस समय समझा। चित्तौड़गढ़ में उस समय केवल इन्हें गिने रेडियो थे, पान वाले की दुकान पर रेडियो होता था और सभी 9:15 बजे जब आकाशवाणी से प्रसारित होती थी न्यूज उस संकट काल में, तो सब पिन ड्रॉप साइलेंस होकर के भीड़ की भीड़ आकाशवाणी के समाचार सुनने के लिए इकट्ठी हो जाती थी। बीच में अगर कोई बोल देता तो लड़ पड़ते थे। उस समय के प्रख्यात जो प्रसारण करता थे विनोद कश्यप और देवकी नंदन जी, उनको पिन ड्रॉप साइलेंस होकर के हम सुनते थे। 70 के दशक में मेरा आकाशवाणी से जुड़ाव रहा। उस समय से मैं विभिन्न कविता में, हिंदी में, राजस्थानी में और वार्ताओं में भाग लेता रहा हूँ। जब चित्तौड़गढ़ में आकाशवाणी प्रारंभ हुई तो पहली गोष्ठी में मैं यहाँ इसी हॉल में बैठा था और हमारे कई साथी चित्तौड़गढ़ के थे। उसके बाद जब एक आयोजन के अंतर्गत एक वार्ता के लिए मुझे

0: आमंत्रित किया गया था तुर्रा कलगी पर। वो वार्ता दिल्ली से प्रसारित हुई। मैं इस आकाशवाणी से जुड़ने के बाद मैंने एक शौर्य का शिलालेख कर एक 30 मिनट का रूपक चित्तौड़गढ़ के किले पर लिखा, जो कई बार चित्तौड़गढ़ के आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित हुआ। श्रोता के रूप में जो आकाशवाणी के विविध कार्यक्रम में हम नियमित रूप से वार्ताएं तो सुनते ही थे, लेकिन चूंकि हम कृषि जगत से जुड़े हुए लोग हैं तो किसान भाइयों के कार्यक्रम भी हम समय समय पर सुनते थे और न्यूज सुनना तो हमारा दैनिक कर्तव्य था।
1: बिल्कुल, मृदुल साहब का प्रारंभिक तौर जब ऑल इंडिया रेडियो के रूप में आकाशवाणी सामने आई थी, तकनीक युग का आरंभ हो रहा था, उसी दौरान से आपका बहुत लंबा दीर्घकालीन अनुभव है निसंदेह। और इसी क्रम में हमारे मध्य नंद किशोर जी निर्झर साहित्यकार विराजे हुए हैं। आप सर श्रोता के रूप में और वक्ता के रूप में आपके क्या अनुभव हैं और उनको आप हमें अवगत कराएं, हमारे श्रोताओं को। आदरणीय निर्झर साहब,
2: ग्रामीण अंचल से मैं आता हूँ। मेरा अनुभव ये रहा है कि आकाशवाणी ने अनेक साहित्यकारों को जन्म दिया, उनको सजाया संवारा और एक तरह से प्रकाश में लाने का बहुत बड़ा काम लेखकों साहित्यकारों कवियों को आकाशवाणी ने मंच देकर के किया। मुझे याद है जब मेरे राजस्थानी गीत हिंदी गीत कविताएं जब प्रसारित होती थी तो यहाँ से दूर अंचल में मेरे गांव में मेरे अनेक मित्र बैठ करके उन गीत कविताओं को सुनते और सराहते, मुझे फ़ोन पे बताते कि मुझे हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमें भी बड़ी प्रसन्नता होती। 90 दशक के आसपास मैं आकाशवाणी से जुड़ा। आकाशवाणी ने जो सम्मान जो स्नेह साहित्यकारों को दिया वो अभूतपूर्व है। आकाशवाणी सिर्फ काव्य या लेखकीय क्षेत्र में ही काम नहीं करती है, अनेक क्षेत्र है। जैसा मृदुल जी ने बताया, कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा काम आकाशवाणी करती है और गांवों में किसान बैठ करके उन सारी वार्ताओं को सुनते हैं और उसके अनुसार उन्होंने कृषि में परिवर्तन किए हैं। तो एक तरह से आकाशवाणी का जो ये बहुउद्देश्यीय एक स्वरूप है उसको मैंने श्रोता के रूप में भी और वक्ता के रूप में भी आकाशवाणी की महती भूमिका को समझा है, बहुत निकट से देखा है। मैं आकाशवाणी के लिए क्या कहूँ, ऐसी सेवाएं सदैव जिस तरह से प्रसारित हो रही है, आज जब दूरदर्शन आ गया अन्य माध्यम आ गए तब भी आकाशवाणी की जो महत्ता है वो ज्यों की त्यों बरकरार है। आज भी लोग रेडियो सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये आकाशवाणी की सफलता का एक द्योतक है। मैं अपनी ओर से अपने मित्रों की ओर से आकाशवाणी के प्रति अपनी शुभकामनाएं अभिव्यक्त करता हूँ।
1: ये थे हमारे मध्य में नंद किशोर जी निर्जर साहब, जिनके चिरकालीन आकाशवाणी के साथ में श्रोता और वक्ता के रूप में अनुभव थे। और हमारे मध्य में अगले साहित्यकार विराजे हैं सुनील बाटू जी। आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने अनुभव वक्ता और श्रोता के रूप में साझा करें हमारे श्रोताओं के लिए।
3: धन्यवाद प्रहलाद जी। सबसे पहले आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मैं सभी को बधाई और आकाशवाणी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुझे आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने का बचपन से शौक रहा है। बचपन से आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम में नियमित तौर पर श्रोता के रूप में सुनता आया हूं और पसंद भी करता आया हूं। और चित्तौड़गढ़ आकाशवाणी की स्थापना के शुरुआती दौर में मैंने आकाशवाणी के युवाणी कार्यक्रम का अनाउंसमेंट भी किया था कुछ सालों तक। इसी के साथ मैं पुनः सभी को बधाई आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर। धन्यवाद।
2: हमारी इस गोष्ठी का संचालन कर रहे श्री प्रहलाद शर्मा जी को मैं निवेदन करूंगा कि वे श्रोता और वक्ता के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करें।
1: धन्यवाद निर्जर साहब। आकाशवाणी विद्यार्थी जीवन के समय में युवाणी में अवसर मिला 1997 में उदयपुर आकाशवाणी केंद्र युवाणी जिसे, और वहां के माध्यम से कि विद्यार्थी जीवन के मन में जो रहते हैं एक उत्सुकता रहती है और नियमित श्रोता के रूप में आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े हुए हैं और उसी समय से अवसर मिला है और विद्यार्थी जीवन और बाल मन के द्वारा यह यात्रा 2026 तक आ चुकी और आज 90 वर्ष वर्ष पूरे हो चुके हैं और हमें आकाशवाणी के सफर के साथ में 29 वर्ष हो चुके हैं। निसंदेह बहुत ही अच्छा अनुभव है, आकाशवाणी ने हमें सम्मान दिया, अनुभव दिया, सीखने को दिया। धन्यवाद और जय आकाशवाणी, यही निवेदन करता।

0: और थैंक यू ज्ञापित करता हूँ। आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ से आज कवि गोष्ठी का आयोजन हो रहा है, क्योंकि आकाशवाणी के 90 वर्ष आज ही पूर्ण हो रहे हैं। और कवि गोष्ठी के शुभारंभ में मैं शिव मृदुल जी से आग्रह करता हूं कि आप अपना काव्य पाठ श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करें। आदरणीय शिव मृदुल जी,
1: हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हमारे संविधान ने हमें कुछ अधिकार और कर्तव्य दिए हैं। मैं इस भावना से जुड़ी एक रचना कर्तव्यों की बात करें शीर्षक से प्रस्तुत कर रहा हूँ। संकट जीवन मूल्यों पर है, आओ कुछ शुरुआत करें। संकट जीवन मूल्यों पर है, आओ कुछ शुरुआत करें। अधिकारों की भाषा छोड़ें, कर्तव्यों की बात करें। अधिकारों की भाषा छोड़ें, कर्तव्यों की बात करें।
0: बहुत शानदार।
1: जोड़ तोड़ के सरल नियम में मैंने कुछ गणितीय संप्रत्ययों के साथ प्रतीकात्मक रूप से कुछ बात कहने का प्रयास किया है।
0: जी,
1: जोड़ तोड़ के सरल नियम में हरदम गलती करता हूँ, धोखे का भय हरदम रहता, साजे से मैं डरता हूँ।
0: जी जी,
1: जोड़ तोड़ के सरल नियम में हरदम गलती करता हूँ, धोखे का भय हरदम रहता, साजे से मैं डरता हूँ। समय काम की कठिन गणित,
0: समय काम की कठिन गणित को
1: समझ नहीं मैं पाता हूँ। प्रश्न न आते मुझे ब्याज के, प्रतिशत से घबराता।
0: अरे वाह वाह वाह।
1: समय काम की कठिन गणित को समझ नहीं मैं पाता हूँ। प्रश्न न आते मुझे ब्याज के, प्रतिशत से मैं घबराता हूँ। समीकरण में बिठा न पाया,
0: जी
1: समीकरण में बिठा न पाया, चलो सही अनुपात करें, श्रम से अपना नाता जोड़ें, कर्तव्यों की बात करें। समीकरण में बिठा न पाया, चलो सही अनुपात करें, श्रम से अपना नाता जोड़ें,
0: कर्तव्यों की बात करें। वाह वाह, बहुत खूब।
1: स्वार्थ खड़ा हर चौराहे पर, जीवन दर्शन है।
0: जी जी, स्वार्थ खड़ा है हर चौराहे पर,
1: हर व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है। स्वार्थ खड़ा हर चौराहे पर, गलत लाभ की आशा में।
0: जी अरे वाह।
1: स्वार्थ खड़ा हर चौराहे पर, गलत लाभ की आशा में, हार हाशिए पर सज्जनता बैठी हुई हताशा में। सोने से भी अधिक चमकता नकली जो आभूषण है।
0: वाह वाह,
1: सोने से भी अधिक चमकता नकली जो आभूषण है। तमके हाथों बिका उजाला, चारों ओर प्रदूषण है। तमके हाथों बिका उजाला, चारों ओर प्रदूषण है। गुप्त अंधेरे के आंगन में आओ स्वर्ण प्रभात करें। गुप्त अंधेरे के आंगन में आओ स्वर्ण प्रभात करें। श्रम निष्ठा की अलख जगाएं, कर्तव्यों की बात करें।
0: यथार्थ पेश किया है।
1: स्वार्थ खड़ा हर चौराहे पर, गलत लाभ की आशा में, हार हाशिए पर सज्जनता बैठी हुई हताशा में। सोने से भी अधिक चमकता नकली जो आभूषण है। तमके हाथों बिका उजाला, चारों ओर प्रदूषण है। गुप्त अंधेरे के आंगन में आओ स्वर्ण प्रभात करें। श्रम निष्ठा की अलख जगाएं, कर्तव्यों की बात करें, कर्तव्यों की बात करें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ये थे हमारे शिव मृदुल साहब, और इन्होंने यथार्थ को प्रस्तुत किया है कि वर्तमान समय के इस मशीनी और सदाचार विचार का जो चल रहा है दौर। और इसी क्रम में हमारे मध्य विराजे हैं प्रख्यात नंद किशोर जी निर्जर, और आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी रचना प्रस्तुत करके हमारे श्रोताओं को, आदरणीय निर्जर साहब,
2: एक गीत आपकी सेवा में प्रस्तुत करूं। उससे पहले चार पंक्तियां देखें। मैंने सब कुछ सहा आपके वास्ते,
0: वाह जी वाह,
2: उसने क्या क्या कहा आपके वास्ते। राह में तो हजारों मिले थे, मगर मैं खड़ा ही रहा आपके
0: वास्ते। वाह वाह वाह, स्वागत है।
3: क्या बात।
2: मित्रों, कुछ जीवन में शर्तें हैं, थोड़ा हम चलें, थोड़ा सामने वाला चले तो शायद मंजिल मिल सकती है। एक गीत प्रस्तुत है।
0: स्वागत स्वागत सर, निर्जर सर।
2: गर

0: चलो कुछ कदम हम चलें, अगर चाहो हो अपना भी मधुमय मिलन, कुछ कदम तुम चलो कुछ कदम हम चलें। निवेदन किया है
1: जी,
0: प्रेम में पीर हो तो वह वरदान है,
1: हाँ,
0: आदमी सिर्फ आदमी सिर्फ दो

0: ले वाह कदम स्वागत है
1: तुम चलो
0: बहुत अच्छे निर्जर साहब
1: कदम हम चले। एक दृश्य देखिए आप, प्रश्न है मछलियों से पानी का क्या नाता है।
0: हाँ।

0: तपन कुछ कदम तुम
1: चलो
0: चलो
1: कुछ
0: कुछ
1: कुछ कदम हम
0: कदम
1: चलो।
0: हम
1: वाह वाह
0: जले
1: वाह,
0: घर चाहो हो अपना भी मधुमेह मिलन कुछ कदम तुम चलो कुछ
1: कुछ
0: कदम
1: कदम तुम
0: हम
1: चलो। वाह
0: चले
1: वाह,
0: कुछ कदम तुम चलो कुछ कदम हम चले।
1: वाह वाह, बहुत बढ़िया।
2: ये थे हमारे नंद किशोर जी निर्जर, और निसंदेह आपने प्रेरणादायी और घाघर में सागर के रूप में शब्द कवि और शब्द छंदों के ख्यातनाम आपने रचना प्रस्तुत करी। और इसी क्रम में हमारे मध्य में आज की गोष्ठी में सुनील बाटू जी विराजे हुए हैं, और आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। सुनील जी बाटू।
3: धन्यवाद साहब, मैं गजल का मतलब और कुछ शेर
4: स्वागत है।
3: पढ़ना चाहता हूँ।
4: स्वागत है भैया, स्वागत।
3: घोंसलों से उड़े नहीं होते, घोंसलों से उड़े
4: उड़े
3: नहीं
4: नहीं
3: होते,
4: होते।
3: काश बच्चे बड़े नहीं होते।
4: वाह।
3: घोंसलों से उड़े नहीं होते,
2: होते
3: काश
4: बच्चे
3: बड़े
4: नहीं,
3: होते।
2: नहीं होते।
3: और शेर देखेगा कि घर सलीके से बात हो जाती, घर
4: घर
3: सलीके से बात हो जाती, घाव दिल पर पड़े नहीं होते।
2: जी
3: घर
4: जी,
3: सलीके से बात हो जाती, घाव दिल पर पड़े नहीं होते, घोंसलों से उड़े नहीं होते, काश बच्चे बड़े नहीं
2: बड़े
3: होते।
2: नहीं।

0: देखेगा कि मंजिलें खुद हमें बुलाती हैं, मंजिलें
1: खुद हमें बुलाती हैं,
0: हम ही उठकर खड़े नहीं होते,
1: खड़े नहीं होते हैं।
0: मंजिलें खुद हमें बुलाती हैं, हम ही उठकर खड़े नहीं होते।
2: बहुत अच्छा।
0: और कामयाबी कभी नहीं मिलती, कामयाबी कभी नहीं मिलती, फैसले घर कड़े नहीं होते। कामयाबी कभी नहीं मिलती, फैसले घर कड़े नहीं होते। और ये शेर भी देखेगा कि बात बंटवारे की नहीं होती, बात बंटवारे की नहीं होती, भाई भाई लड़े नहीं होते। बात बंटवारे की नहीं होती, भाई भाई लड़े नहीं होते, अपना रिश्ता सुनील निभ जाता। आखिरी शेर, अपना रिश्ता सुनील निभ जाता, हम जो जिद पर अड़े नहीं होते।
3: हम जो जिद पर अड़े,
0: अपना रिश्ता सुनील निभ जाता, हम जो जिद पर अड़े नहीं होते,
1: होते।
0: घोंसलों से उड़े नहीं होते, काश बच्चे बड़े नहीं होते।
1: वाह जी वाह, बहुत ही शानदार। और ये थे हमारे सुनील बाटू जी, इन्होंने श्रेष्ठ और वर्तमान समय की प्रासंगिकता का एक काव्य पाठ किया है।
3: मैं कार्यक्रम के संचालक प्रहलाद जी शर्मा को इन शब्दों से बुलाता हूँ कि वक्त को जिसने न समझा उसको तो मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों कितनी ही कठिन हो, क्यों कितनी ही बड़ी, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। श्री प्रहलाद जी शर्मा,
1: धन्यवाद। निर्जर साहब की पंक्तियों में बड़ा ही अलग रस रहता है हर शब्दावली में, आपका आभार प्रकट करता हूँ। और मेरी रचना जीवन का आधार ही नैतिकता को मैं बेस मानता हुआ, जब जब अंधकार बढ़ेगा, जब जब अंधकार बढ़ेगा नैतिकता प्रकाश बनेगी, जब जब अंधकार बढ़ेगा नैतिकता प्रकाश बनेगी, स्वार्थ और अन्याय के आगे सत्य की आवाज बनेगी। ईमान दया और सदाचार जीवन की सच्ची पूंजी है, ईमान दया और सदाचार जीवन की सच्ची पूंजी है, इनके बल पर ही मानव की सारी सफलताएं सजी है। नैतिक मूल्यों को अपनाओ, जीवन को आदर्श बनाओ, सत्य प्रेम और सेवा से नया समाज बनाओ। न धन से, न ऊंचे पद से मानव की पहचान बने, न धन से, न ऊंचे पद से मानव की पहचान बने, सत्य दया और सदाचार से जीवन का सम्मान बने, सत्य दया और सदाचार से जीवन का सम्मान बने। आगे वर्तमान के जीवन को यथार्थ सार्थक कैसे किया जाए, उस विषय पे आगे लिखा हूं। ईमानदारी दीपक बनकर हर अंधियारा दूर करे, ईमानदारी दीपक बनकर हर अंधियारा दूर करे, नैतिकता की मधुर सुगंध सारे जग को भरपूर करे, लोह मोह के बंधन तोड़ो, मानवता का हाथ थामो, लोह मोह के बंधन तोड़ो, मानवता के हाथ थामो, सच्चे कर्मों की राह चुनो और जीवन को उज्जवल बनाओ। और इसी क्रम में थोड़ा सा प्रेम के संबंध में बात कही गई है कि जिसके मन में प्रेम बसा हो, जिसके मन में प्रेम बसा हो, वह सबसे धनवान बने, नैतिक मूल्यों के बल पर ही राष्ट्र महान और शक्तिमान बने। जिसके मन में प्रेम बसा हो, वह सबसे धनवान बने, नैतिक मूल्यों के बल पर ही राष्ट्र महान और शक्तिमान बने। हम नई सदी के बच्चे हैं, हम नई सदी के बच्चे हैं, नई सोच लेकर आए हैं, सत्य सेवा और सद्भावना के दीप हृदय में जलाए हैं, सत्य सेवा और सद्भावना के दीप हृदय में जलाए हैं। इन्हीं बातचीत के साथ में पहले दौर की रचनाएं समाप्त होती हैं और 90 वर्ष आज ही पूर्ण होने पर चित्तौड़गढ़ आकाशवाणी केंद्र से साहित्य गोष्ठी के आयोजन का दूसरा दौर में सबसे पहले में सुनील बाटू जी प्रख्यात साहित्यकार हमारे मध्य विराजे हुए हैं। बाटू जी, आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। आदरणीय सर,
0: धन्यवाद। एक गजल और मैं पढ़ना चाहता हूं।
1: जी, स्वागत है।
3: स्वागत।
0: ये इसमें हमारे सामाजिक परिवेश को शब्दों में ढालने का प्रयास किया है।
1: जी।
0: मेरे सर पे जो मेरे बाप का साया होता, मेरे सर पे जो मेरे बाप का साया होता।
1: जी वाह।

0: दुखते सर को भी किसी रोज दबाया होता,
1: वाह जी वाह, बहुत अच्छे,
0: सर को भी किसी रोज दबाया होता,
1: होता।
0: शेर सर को हर दर पे झुकाने की न नौबत आती, सर को हर

0: काश खेतों में कभी धान उगाया होता, काश खेतों में कभी धान उगाया होता। और ये आखिरी शेर, सिर्फ दौलत ही कमाने में लगा है तू सुनील,
1: सिर्फ
0: सिर्फ दौलत

0: धन्यवाद।
1: वाह जी वाह, ये थे हमारे सुनील कुमार जी बाटू, और इन्होंने पिता की महत्ता के विषय पर अपनी रचना रखी। और अगले क्रम में प्रख्यात नाम है नंद किशोर जी निर्झर, और आपसे आग्रह करूंगा कि आपकी रचना पेश करें और हमारे श्रोताओं को लाभान्वित करें।
2: मित्रों, दो छोटी छोटी रचनाएं लेकर के मैं प्रस्तुत
1: जी हूं। स्वागत है।
2: पहली रचना का शीर्षक है जीवन और सड़क।
1: जी।
2: उबड़ खाबड़, ऊंची नीची घाटियां
1: जी,
2: खतरनाक मोड़
1: जी,
2: उतार चढ़ाव, सर्पाकार टेढ़ी मेढ़ी सड़कें
1: जी,
2: सड़कों पर आग है, पानी है, कंकर है, पत्थर है। सड़क और जीवन बड़ा साम्य है इन दो शब्दों में
1: जी।
2: सड़क और जीवन बड़ा साम्य है इन दो शब्दों में। सपाट होते जिंदगी के रास्ते
1: जी,
2: काश सपाट होते जिंदगी के रास्ते, रपटीली न होती जीवन की पगडंडियां
1: जी।
2: सड़कों पर चली जा रही है भीड़, सबको कहां नसीब होती है मंजिल
1: जी। स्वागत है।
2: सड़कों पर चली जा रही है भीड़, सबको कहां नसीब होती है मंजिल
1: जी।
2: कुछ बदनसीब तोड़ देते हैं दम बीच सड़क पर
1: जी।
3: क्या बात है।
2: सदा नीरा सरिता की मानिंद, टूट जाने को है तटबंध। पहली पहली सभ्यता नदी तट पर जन्मी थी, पर आज नदी तट पर नहीं, सड़कों पर उतर आए हैं लोग
1: जी।
2: आज नदी तट पर नहीं,
1: सड़कों पर उतर आए हैं लोग।
2: सड़कों पर उतर आए हैं लोग। क्या सड़क

0: नरकों की तरह नहीं है जिंदगी।
1: वाह वाह।
0: मैं दूसरी रचना, बहुत जल्दी प्रताप जयंती आने वाली है।
2: जी जी, स्वागत है।
0: मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़ में हम लोग बैठे हैं।
2: जी,
0: मैं प्रताप और मेवाड़ के बारे में कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ।
2: स्वागत।
0: हे मेवाड़ धरा के नर नाहर, हे आजादी के परवाने, तलवे जब चाट रहे थे कुछ, तू खड़ा रहा सीना ताने।
3: बहुत अच्छा।
2: अरे वाह।
0: पुनः सुने कि हे मेवाड़ धरा के नर नाहर, हे आजादी के परवाने, तलवे जब चाट रहे थे कुछ, तू खड़ा रहा सीना ताने। खाकर घास की रोटी भी नमक का कर्ज चुका डाला।
2: वाह।
0: खाकर घास की रोटी भी नमक का कर्ज चुका डाला, और माँ के चरणों में बिछा दिए अरिमस्तक, हाथ उठा भाला। बामा शाह को कोई क्या भूले, धन्य हो गया धन उनका।
2: जी, बहुत ही।
0: बामा शाह को कोई क्या भूले, धन्य हो गया धन उनका। राणा में नया जोश जागा।
2: जी,
0: जुड़ गया टूटता मन उनका।
2: अरे वाह।
0: राणा में नया जोश जागा, जुड़ गया टूटता मन उनका। और एक पात्र को और याद किया है कि राश स्वामी भक्ति जाला मन्ना की युग युग में गाई जाएगी, बलिदानी परिपाटी सबको निज राष्ट्र धर्म सिखलाएगी। और अंतिम पंक्तियां है कि चेतक की टापे गूंज रही अब तक मेवाड़ी माटी में, हर हर महादेव अनुगुंजित वन वन में घाटी घाटी में।
2: वाह वाह।
0: चेतक की टापे गूंज रही अब तक मेवाड़ी माटी में, हर हर महादेव अनुगुंजित वन वन में घाटी घाटी में।
3: बहुत अच्छा।
2: ये थे नंद किशोर जी निर्झर, और इन्होंने मनुष्यत्व पे और मेवाड़ के लिए प्रख्यात विश्वविख्यात नाम महाराणा प्रताप और चेतक के बारे में इन्होंने अपने छंद रचना के माध्यम से प्रस्तुत की, और बहुत ही धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं।
1: काव्य गोष्ठी के इस क्रम में मैं अब प्रहलाद जी शर्मा साहब को आमंत्रित करना चाहता हूँ वसीम बरेली साहब के एक शेर के साथ, कि कौन सी बात कहाँ और कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है।
2: धन्यवाद सुनील जी बाटू साहब। मेरी रचना पर्यावरण स्वच्छता में ही हम हैं, और यह एक ज्वलंत विषय है, उसमें रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। धरती माँ का यही संदेश, हरा भरा हो अपना देश। धरती माँ का यही संदेश, हरा भरा हो अपना देश। पेड़ों से ही जीवन महके, पेड़ों से ही जीवन महके, इनसे सजता हर परिवेश। धरती माँ का यही संदेश, हरा भरा हो अपना देश। कटते वन और बढ़ता धुआं, दे रहे संकट का पैगाम। कटते वन और बढ़ता धुआं, दे रहे संकट का पैगाम। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, यही प्रकृति का सच्चा काम। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, यही प्रकृति का सच्चा काम। पेड़ हमारे सच्चे प्रहरी, पेड़ हमारे सच्चे प्रहरी, जीवन के रखवाले हैं, इनके छाया में ही बसते खुशियों के उजाले हैं। इनको काटोगे तो समझो, इनको काटोगे तो समझो, अपना भविष्य खो दोगे। इनको बचाकर रखोगे तो जीवन का नवरूप दोगे। धरती माँ का यही संदेश, हरा भरा हो अपना देश। धरती पर हरियाली हो तब मौसम भी मतवाला हो, धरती पर हरियाली हो तब मौसम भी मतवाला हो। पक्षी गाए मधुर तराने, जीवन कितना निराला हो। हर आंगन में पेड़ लगाओ, पर्यावरण का मान बढ़ाओ। हर आंगन में पेड़ लगाओ, पर्यावरण का मान बढ़ाओ। हरा भरा जब देश बनेगा, सुख का नया विहान आएगा। एक पौधा जब लग जाता है, एक पौधा जब लग जाता है, जीवन में नव रंग लाता है। शीतल छाया स्वच्छंद हवाएं, धरती का श्रृंगार कहलाता है। आओ मिलकर बीज बोएं, आओ मिलकर बीज बोएं, हरियाली का गीत संजोए। आने वाली पीढ़ी को हम सुंदर कल का उपहार दें। नदियां रोती नदियां गाती, अपनी पीड़ा हमें सुनाती। मत फैलाओ विष का जाल, हमें जीवन की राह दिखाती। धरती माँ का यही संदेश, हरा

0: भरा हो अपना देश, पेड़ों से ही जीवन महके, इनसे सजता हर परिवेश।
1: वाह वाह,
2: बहुत
1: बहुत
2: बहुत
1: बहुत
2: अच्छा,
1: बहुत सुंदर।
0: काव्य गोष्ठी के इस क्रम के अंतिम हमारे वरिष्ठ, जिनके मार्गदर्शन में और अनेक साहित्यिक सेवाएं प्राप्त हुई हैं, हमारे शिव मृदुल जी से आग्रह करता हूं कि आप अपनी रचना प्रस्तुत करके हमारे श्रोताओं को लाभान्वित करें। मृदुल साहब,
1: धन्यवाद। मैं दो पंक्तियों से बात शुरू करना चाहूंगा। कुछ गीत हर जगह गाए नहीं जाते, कुछ गीत हर जगह गाए नहीं जाते, कुछ दर्द लबों पर लाए नहीं जाते, चोट खाए जिगर ही जानते हैं हकीकत की, कुछ राज पूछने पर भी बताए नहीं जाते।
0: अरे वाह,
1: कुछ
0: वाह जी
1: राज
0: वाह,
1: पूछने पर भी बताए
0: बताए
1: नहीं
0: नहीं
1: जाते।
0: जाते।
1: पर मैं एक राज बताना चाहता हूँ। वृद्धावस्था में अगर व्यक्ति सक्रिय रहता है तो हर किसी की भी ये स्वाभाविक इच्छा होती है कि उस सक्रियता के आयाम को जाने, कारणों को जाने। मैं अपने जीवन के 8 दशक पार कर चुका हूँ। इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है इस रचना के माध्यम से। रचना है, ईश्वर जाने नहीं हुआ क्यों असर उम्र की चाल का, ईश्वर जाने नहीं हुआ क्यों असर उम्र की चाल का, मेरे मन में बैठा अब तक बालक 16 साल का, मेरे मन में बैठा अब तक बालक
0: सोलह
1: 16 साल
0: साल
1: का।
0: का। वाह जी वाह, स्वागत है।
1: दादी जी ने मेरा जीवन जिन किस्सों से ढाला है, उन जीवन मूल्यों के कारण आंगन में उजियाला है, उन जीवन मूल्यों के कारण आंगन में
0: ये
1: उजियाला
0: उजियाला
1: है।
0: है।
1: नानी ने हुलराया मुझको, नानी ने हुलराया मुझको, मौसी ने दुलराया है, मात पिता के सद्भावों की मुझ पर पूरी छाया है। नानी ने हुलराया मुझको, मौसी ने दुलराया है, मात पिता के सद्भावों की मुझ पर पूरी छाया है। ऋणी आज तक मान रहा हूँ, ऋणी आज
0: आज
1: तक
0: तक
1: मान
0: मान रहा
1: रहा हूँ,
0: हूं।
1: अच्छी सार संभाल को, मेरे मन में अब तक बैठा बालक 16 साल का। ऋणी आज तक मान रहा हूँ, अच्छी सार संभाल का, मेरे मन में अब तक बैठा बालक 16 साल का। गुरुजन के आशीष से मैं बीता, गुरुजन के आशीष में बीता बचपन शिक्षा दीक्षा में, गुरुजन के आशीष में बीता बचपन शिक्षा दीक्षा में, उत्तीर्ण किया श्रम निष्ठा से नित प्रत्येक परीक्षा में।
0: वाह वाह जी
1: गुरुजन
0: वाह,
1: के आशीष में बीता बचपन शिक्षा दीक्षा में, उत्तीर्ण किया श्रम निष्ठा ने नित प्रत्येक परीक्षा में, चिंतन और मनन सिखलाया।
0: जी
1: चिंतन रचना धर्मिता का परिदृश्य है
3: हाँ,
1: कि चिंतन और मनन सिखलाया शब्द ब्रह्म की गहराई।
0: जी
3: अरे वाह, अरे वाह।
1: चिंतन और मनन
3: मनन
1: सिखलाया शब्द ब्रह्म की गहराई, जीवन के हर रण में मैंने विजय पताका फहराई, जीवन के हर
3: हर
1: रण
3: रण
1: में मैंने विजय पताका फहराई। डाला है व्यक्तित्व उन्होंने, डाला है व्यक्तित्व उन्होंने सिक्का ज्यों टकसाल का, मेरे
3: वाह
1: मन में अब तक बैठा बालक 16 साल
0: साल
1: का।
0: का। वाह जी वाह,
1: गुरुजन के आशीष में बीता बचपन शिक्षा दीक्षा में, उत्तीर्ण किया श्रम निष्ठान में नित प्रत्येक परीक्षा में, चिंतन और मनन सिखलाया शब्द ब्रह्म की गहराई, जीवन के हर रण में मैंने विजय पताका फहराई। और डाला है व्यक्तित्व उन्होंने, गुरुजनों के लिए कहा है कि डाला है व्यक्तित्व उन्होंने सिक्का ज्यों टकसाल का,
0: टकसाल
1: मेरे
0: का।
1: मन में अब तक बैठा बालक 16 साल
0: का।
1: नित्य 4 पुरुषार्थ ध्येय, जीवन दर्शन भारतीय संदर्भ में, नित्य 4 पुरुषार्थ ध्येय ले मैंने यौवन जिया है।
0: जी जी
1: नित्य
0: जी
1: 4 पुरुषार्थ ध्येय ले मैंने यौवन जिया है, वैचारिक मंथन से निकला वह हर अमृत पिया है,
0: जी
1: वैचारिक मंथन से निकला वह हर अमृत पिया है। शाश्वत तीन ऋणों को मैंने नित्य चुकाया निष्ठा से, कार्य क्षेत्र को देव ऊंचाई शोभित किया प्रतिष्ठा से, कार्य क्षेत्र को देव ऊंचाई शोभित किया प्रतिष्ठा से, इसी देय से नित करता हूँ सुमिरन दीन दयाल का,
0: दयाल
1: इसी देय से नित करता हूँ सुमिरन दीन दयाल का, मेरे मन में बैठा अब तक बालक 16 साल का, नित्य चार

0: पुरुषार्थ देय ले, नित्य चार पुरुषार्थ देय ले, मैंने यौवन जिया है, वैचारिक मंथन से निकला वह हर अमृत पिया है, शाश्वत तीन ऋणों को मैंने नित्य चुकाया निष्ठा से, कार्य क्षेत्र को दे ऊंचाई शोभित किया प्रतिष्ठा से, इसी देय से नित करता हूँ सुमिरन दीन दयाल का, मेरे मन में बैठा अब तक बालक 16 साल का, ईश्वर जाने नहीं हुआ क्यों असर उम्र की चाल का, मेरे मन में बैठा अब तक बालक 16 साल का।
1: अरे ये थे हमारे शिव मृदुल जी, और आज आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हुए हैं, और आज की साहित्य गोष्ठी का जो समापन होने जा रहा है, और मैं पधारे हुए शिव मृदुल जी, नंद किशोर निर्जर जी, सुनील बाटू जी, सभी का आकाशवाणी केंद्र चित्तौड़गढ़ की तरफ से धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं। आप पधारे और आज 90 वर्ष पूर्ण हुए हैं आकाशवाणी के, और आपका धन्यवाद आभार प्रकट करने के साथ श्रोताओं के लिए आपकी रचनाएं बहुत ही सिद्ध फलदायी साबित होगी, इसी क्रम में हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और 90 वर्ष का जो आज पूर्ण हुए हैं उसको उत्साह उल्लास और इस ये पूरी जो यात्रा हुई है आकाशवाणी की उसके लिए हम अभिनंदन भी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में काव्य गोष्ठी की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से। संचालनकर्ता थे डॉक्टर प्रहलाद शर्मा, प्रतिभागी कवि शिव मृदुल, नंद किशोर निर्जर और सुनील बाटू। हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.9 MHz पर।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।

0: आकाशवाणी 890 भारत की जीवंत आवाज।
1: एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है। इस समय रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 8:52 पर हमारी आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान कीजिए। जय हिंद।